मीडियम वेव 188.39 अर्थात 1513 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 24 जून सन 2026 सुबह के 5:56 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है। जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए

0: ये अग्रिम तैयारियां कर रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: लखनऊ में हाल ही में हुई आग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट जल्द से जल्द कराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक ईरान समर्थित गुट आतंकी गतिविधियों में लिप्त है और हमले जारी रखे हुए हैं, तब तक पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल नहीं हो सकती। अबुधाबी में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लेबनान में संघर्ष विराम को लेकर चर्चा ईरान के साथ चल रही वार्ता से अलग है। श्री रूबियो ने कहा कि उन्होंने अमरीका के उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन से बात की है और अमरीकी अधिकारी लेबनान में पहल कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि कोई भी कूटनीतिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान समर्थित गुटों की गतिविधियों के मुद्दे पर कितनी प्रगति हो पाती है। पश्चिम एशिया में शांति बहाली को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड में हाल ही में वार्ता हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में भी तेज हवा के साथ आज बारिश की संभावना जताई है। फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। प्रातः बेला की आराधना वंदना।

सुबह सवेरे जब किसी पहाड़ी की ओट से सूरज की किरणें झांकती हैं धरती पर, तो जैसे सातों रंग उतर आते हैं जमीन पर। जीवन ये सारे रंग समेट लाता है अपने आंगन। समय की नदी से टपकी हुई एक बूंद की तरह है नया दिन। अनंत संभावनाओं से भरा ये दिन शुभ हो, सार्थक हो, इसी कामना के साथ आइए वंदना करें। वंदना का प्रथम पुष्प मां भारती के चरणों में अर्पित करते हैं। निर्भय, निर्द्वंद्व जय करते हैं अपने भारत की।

शब्दों से उलझकर हम सत्य तक नहीं पहुंच सकते। शब्दों को समझ लेना बहुत सरल है, लेकिन सत्य का अपना ही व्याकरण है। सत्य तक पहुंचना हो तो जीवन का व्याकरण बदलना होगा। भाषा की शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन अनुभूति की क्या शिक्षा हो? अपने भीतर गहरे और गहरे उतरते जाना और अनुभव के उस सागर में डूबते जाना ही

जीवन का व्याकरण बदलना होगा। भाषा की शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन अनुभूति की क्या शिक्षा हो? अपने भीतर गहरे और गहरे उतरते जाना और अनुभव के उस सागर में डूबते जाना ही परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग है।

जीवन एक अनवरत यात्रा है। अनंत आकांक्षाओं का पीछा करते हुए दिन, महीने, साल कब और कैसे बीतते जाते हैं मालूम ही नहीं होता। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। जितना हम भरने की कोशिश करते हैं, भीतर से खाली होते जाते हैं। और एक खाली सा मन जब सब कुछ छोड़कर ईश्वर के चरणों में झुक जाता है, तो अपने आप सब कुछ भर जाता है। उसकी शरण में आते ही जीवन के सारे संताप मिट जाते हैं।

जिस तरह सूर्य एक है और समभाव से इस धरती को प्रकाशित करता रहता है, जो भी अपना द्वार खुला रखता है प्रकाश उसके हिस्से आ जाता है। ठीक इसी तरह ईश्वर भी सब पर समान कृपा बरसाता है। वही एक दाता, वही देने वाला है। जो भी उसके द्वार आता है कभी खाली हाथ नहीं जाता।

अगर हमारा भाव जगत शुद्ध और समृद्ध है तो साधारण वर्णमाला भी मंत्र बन जाती है, और अगर भीतर भाव ही न हो तो महामंत्र भी राख हो जाता है, उसमें कोई जीवन नहीं। हमारे

मस्तिष्क में कितने विचार, कितने तर्क, कितनी समझ है, उस जगत में इस बात का कोई मोल नहीं। मूल्य केवल इस बात का है कि हमारे हृदय में कितनी प्यास है, कितनी प्रार्थना, कितना प्रेम है।

इसके साथ ही संपन्न होती है आज सुबह की भजन यात्रा वंदना। गायक कलाकार थे जगजीत सिंह, अनूप जलोटा, हरिओम शरण और अनुराधा पौडवाल।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान।

श्री रामचरित रूपी पवित्र मानस सरोवर के जल में अपने मन को स्नान करा और भवानी तथा शंकर का स्मरण करके गोस्वामी तुलसीदास ने रामकथा का प्रारंभ किया है। सर्वप्रथम पुण्यभूमि प्रयाग में दो श्रेष्ठ मुनियों भरद्वाज तथा परम ज्ञानी याज्ञवल्क का मिलन और संवाद वर्णित है। भरद्वाज मुनि प्रयागवासी हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब सब लोग श्रद्धा तथा आदरपूर्वक तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी स्नान के लिए आते हैं। एक बार जब पूरे मकर भर स्नान करके ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम लौट गए तो भरद्वाज मुनि ने महर्षि याज्ञवल्क के चरण पकड़कर उन्हें अपने आश्रम में रोक लिया। परम ज्ञानी याज्ञवल्क से उन्होंने अपने अज्ञान प्रकट करते हुए अपनी शंका उनके सम्मुख रखी। हे मुनिवर, भगवान शिव समेत सभी देव मुनि जिन राम की उपासना करते हैं वो राम कौन हैं?

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है चिंतन। इस कार्यक्रम में विषय है अनुकरण। आलेख वीरेन गोहिल का है।

0: बड़े लोगों, महापुरुषों, सज्जनों का अनुकरण आमतौर पर लोग करते हैं और कहते हैं कि ऐसा काम बड़े लोग करते रहे हैं, जिसका मतलब होता है काम अच्छा है, रास्ता ठीक है। इसे करने में, रास्ते पर चलने में कोई अंगुली नहीं उठाएगा। विद्वानों द्वारा बताए रास्ते को सद्मार्ग, सन्मार्ग कहा जाता है। और जो काम या जो रास्ता ऐसा होता है जिसे करने या जिस पर चलने से बदनामी होती है, बुराई मिलती है, अपयश के भागीदार बनते हैं, उसे कुमार्ग कहा गया है। कुमार्गों को त्यागने की सलाह सभी विद्वान देते हैं। बदनामी किसे अच्छी लगती है? बुराई कौन पसंद करता है? कोई भी नहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि सज्जन जो करते हैं वही आम आदमी प्रमाण समझता है, उसे अपने जीवन में अपनाने में झिझकता नहीं है। लेकिन कई बार बड़ी दुविधा की स्थिति आ जाती है जब हम जिन्हें सज्जन मानते हैं, महापुरुष मानते हैं, वे ही ऐसा रास्ता अपना लेते हैं जो सामान्य मनुष्य की बुद्धि के परे होता है। वो समझ नहीं पाता कि इस रास्ते पर चलने से ठीक होगा या नहीं। अगर सभी वैसा करते हैं तो पूरा समाज गलत हो जाएगा, मान्यता बदल जाएगी। जैसे समझी कि किसी किताब में कोई बात गलत छप गई है, लेकिन जितने लोगों के हाथों में वो किताब पहुंच गई है वे उसे सही मानकर चल रहे हैं, तो उन तक गलत, झूठा, अधूरा ज्ञान पहुंच रहा है। इस तरह सबक मिलता है कि हमें कहने और लिखने में बहुत सावधानी बरतना चाहिए। जैसे जैसे मनुष्य समाज में प्रतिष्ठित होता जाता है, उसका चरित्र निर्मल होता जाता है, और होना भी चाहिए। उसका कथन, उसके शब्द, उसका व्यवहार, सब कुछ इतना संतुलित और मर्यादित होना चाहिए कि कहीं दूसरों पर उसका गलत असर न पड़ जाए। और अगर बड़े होकर भी, अगुआ बनकर भी, अधूरा सच कहकर भी संतोष कर लेते हैं और अपने को ठीक नहीं करते, तो समाज में भ्रम की स्थिति बने बगैर नहीं रहती। क्योंकि समाज के बड़े लोगों को सब देखते हैं, उनके हर काम को तरह तरह से परखते हैं और मानकर चलते हैं कि जो कुछ भी वे कर रहे हैं वैसा करना हितकर है। तब बड़े लोगों पर आए दायित्व उनके चरित्र प्रमाण बन जाते हैं। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में इसीलिए पूजा जाता है कि उन्होंने कठिन से कठिन दिनों में भी कथनी और करने में कोई अंतर नहीं रखा। बड़ा बनना बहुत आसान काम नहीं माना जाता। हर पल, हर क्षण अग्नि परीक्षा के लिए मनुष्य को तैयार रहना होता है। तब कहीं जाकर मनुष्य को वो स्थान मिलता है जिन्हें देखकर अन्य लोग सिर झुकाते हैं। मर्यादाओं का पालन न केवल दूसरों के लिए उपदेश की वस्तु है, बल्कि हर एक के जीवन की पहली आवश्यकता है। इसीलिए पहली शर्त है दोहरे चेहरों को उतार कर फेंकने की।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, विषय था अनुकरण, आलेख वीरेन गोहिल का था। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है कृषि चर्चा। इस कार्यक्रम में आज का विषय है कंपोस्ट खाद तैयार करने की विधि। वार्ताकार हैं डॉक्टर यशवंत गहलोत।
1: किसान भाइयों बहनों, आज की कृषि चर्चा में हम बात करेंगे कंपोस्ट खाद तैयार करने की विधि एवं उससे होने वाले फायदे के बारे में। कंपोस्ट खाद बनाने की अनेक

0: विधियाँ प्रचलित है। इनमें से अगर बात करें मुख्य विधियों की तो वो है गड्ढा विधि एवं ढेर लगाकर कंपोस्ट बनाने वाली विधि। कंपोस्ट खाद बनाने के लिए गड्ढे का निर्माण ऊंचे स्थान पर करना चाहिए ताकि गड्ढे में आवश्यकता से अधिक पानी रोक न पाए। सबसे पहले 3 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा एवं 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर तैयार करते हैं। अब गड्ढे में नमी बनाए रखने के लिए गड्ढे के चारों तरफ पानी का छिड़काव करते हैं। फिर उसमें पौधे की पत्तियाँ, घास फूस, घर का कचरा, गौशाला की बिछावन, फसलों के अवशेष आदि को 30 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर देते हैं। अब उसके ऊपर गोबर की एक तह बिछा देते हैं, फिर ऊपर से पानी का फुहारा कर देना चाहिए। अब फिर से कूड़ा करकट भरकर फसल अवशेषों, मलमूत्र, राख, भूसा, चारे आदि की बिछावन फैलाते हैं और उसको पैरों से कस कर दबा देते हैं। फिर उसके ऊपर गोबर की तह को बिछाते हैं, फिर से पानी का छिड़काव कर देते हैं। यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक गड्ढा भर नहीं जाता। जब गड्ढा भर जाए तो उसके ऊपर मिट्टी की पतली परत चढ़ा देनी चाहिए। इस तरह सड़ी हुई कंपोस्ट खाद 3 से 4 महीनों में बनकर तैयार हो जाती है। अब बात करें अगली विधि ढेर लगाकर कंपोस्ट या जैविक खाद बनाना। इसके लिए सबसे पहले समतल भूमि का चयन करना है। उस पर 3 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी एवं 1 मीटर ऊंची कोठी बनाते हैं। कोठी बनाने के लिए लकड़ी या ईंटों का उपयोग किया जा सकता है। अब नीचे 2 सेंटीमीटर ईंटों की तह बिछा देनी चाहिए, उसके ऊपर ढेर लगाने में सुविधा होती है। इस विधि में भी किसान भाइयों कंपोस्ट बनाने के लिए गोबर के घोल की अत्यधिक आवश्यकता होती है। ढेर लगाते समय इस बात का ध्यान दें कि ऊपर का हिस्सा ढालयुक्त भरे, मिट्टी भूसे का मिश्रण, चारा, गौशाला की बिछावन बिछाकर उसके ऊपर 5 सेंटीमीटर गोबर का प्लास्टर करके लीप देना चाहिए। फिर ऊपर से समय समय पर पानी का छिड़काव करते रहें और हर 4 से 6 सप्ताह में खाद को पलटते रहें और ढेर में पर्याप्त नमी बनाए रखें। ढेर पलटने के बाद पुनः गोबर से लिप कर उसके मुंह को बंद कर देवे। इस विधि द्वारा 3 से 4 महीनों में कंपोस्ट खाद बनकर तैयार हो जाती है। वेस्ट डीकंपोजर का उपयोग करके किस प्रकार कंपोस्ट खाद को अच्छी तरह सड़ा सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आपने गोबर की खाद तैयार की है लेकिन अभी पूर्ण रूप से गोबर की खाद सड़ी नहीं है, तो आप वेस्ट डीकंपोजर का उपयोग करके अध सड़ी गोबर की खाद को सड़ा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले गोबर की खाद को निकालकर किसी छांवदार स्थान पर फैला दें। फैलाने के पश्चात उसके नीचे जूट के बोरों को बिछा देवें। अब हम 1 एकड़ में अगर आप 2 टन गोबर की खाद को दे रहे हैं तो इसके लिए 1 लीटर फास्ट डीकंपोजर एवं 2 किलो गुड़, तो आवश्यकता अनुसार पानी का मिश्रण तैयार करें और इसे गोबर की खाद पर छिड़काव करें और छिड़काव के बाद खाद को जूट के बोरों से ढक दें। फिर उसको समय समय पर पानी का फुहारा करते रहें। इस तरह 30 से 45 दिनों के भीतर अच्छी जीवाश्मयुक्त भुरभुरी खाद बनकर तैयार हो जाती है। फिर इसे हम खेतों में उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक हमने कंपोस्ट बनाने की विधियों के बारे में जाना। अब हम कंपोस्ट खाद के उपयोग से होने वाले फायदे पर चर्चा करेंगे। किसान लगातार विगत कई वर्षों से रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहा है। इसका दुष्परिणाम यह हुआ है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्षीण हो गई है तथा इसमें जैविक कार्बन का स्तर निरंतर कम हो रहा है। अतः साथियों, यदि आप अपने खेतों में कंपोस्ट खाद का उपयोग करके मिट्टी की उर्वरा शक्ति एवं जैविक कार्बन दोनों को बढ़ा सकते हैं। कंपोस्ट खाद रासायनिक उर्वरक की तुलना में सस्ता विकल्प है, जो कि फसलों के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। कंपोस्ट खाद उपयोग से न केवल फसल उत्पादन बढ़ेगा, साथ ही मिट्टी की भौतिक, जैविक एवं रासायनिक गुणों में भी सुधार होगा, जैसे कि मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि, मिट्टी के सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि एवं जैविक कार्बन का स्तर बढ़ेगा। किसान भाइयों, कृषि चर्चा संपन्न हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा। इसमें विषय था कंपोस्ट खाद तैयार करने की विधि। वार्ताकार थे डॉक्टर यशवंत गहलोत। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: घटना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में संस्कृत में समाचार लिए होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक डॉक्टर गणेश हेगड़े। अथ वार्ता।

0: सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर जोर दिया।
1: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद किया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक और निराधार हैं। सरकार ने कहा है कि E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में तकनीकी खराबी की कोई भी व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। अमेरिका के ह्यूस्टन में हुए मुकाबले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी हो गए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण में सबसे पहले जानते हैं इस सभा के शेष कार्यक्रम। आज सुबह 7:20 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत तैयार हो रही नवीन पाठ्य पुस्तकों के विषय में माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के पूर्व उपाध्यक्ष और पाठ्य पुस्तक स्थायी समिति के सदस्य डॉक्टर भागीरथ कुमरावत से बातचीत। मॉनसून के आगमन में होने वाली देरी के कारणों पर मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अजय कुमार सिंह से बातचीत और फेफड़े और हृदय संबंधी रोगों में प्राणायाम किस प्रकार से लाभकारी है विषय पर योग विशेषज्ञ पूजा दुबे से बातचीत। आठ बजकर 30 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। सुगम संगीत आप सुनेंगे 9:15 पर। इसमें आज आप सुन सकते हैं रमेश पुरी गोस्वामी के गाए गीत। प्रदेश की सुर्खियों में हम आपको सुनवाएंगे 9:30 पर। सुबह 10 आप सुन सकते हैं जिले की चिट्ठी। 10:05 पर महिलाओं के लिए कार्यक्रम महिला संसार सुना जा सकता है। दस बजकर 30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला सुनिएगा। इसमें आज आप सुन सकते हैं सरवर हुसैन का सारंगी वादन, राग होगा नच भैरव। शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। इसमें आज आप सुनेंगे सटी कृषि हेतु उन्नत उपकरणों की खेत बचाओ अभियान में भूमिका विषय पर डॉक्टर दिलीप जाट से भेंटवार्ता। आइए जानते हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम। आज सुबह 11 आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम। फोन करेंगे सुनी आपकी फरमाइश आपको सुनवाएंगे 12:00। संग्रहालय से कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 12:30 पर। इसमें आज आप सुनेंगे भुवन मोहिनी का छठवां भाग। महिला कार्यक्रम महिला सभा सुनिएगा 1:00। 1:30 पर लोक संगीत कार्यक्रम होगा। इसमें कलाकार होंगे मेहरबान सिंह कुशवाहा। 1:45 पर सुगम संगीत सुनिएगा। इसमें आज आप सुनेंगे हरजिंदर सिंह के गाए भजन। ये तीनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति होंगे। दोपहर 2 फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे और 2:30 पर आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन सकते हैं।

आइए अब जानते हैं आज की संध्याकालीन सभा के कार्यक्रम। शाम 5:02 पर युवा साथी सुन सकते हैं कार्यक्रम युवाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति रहेगा। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं 5:30 पर। 6:00 आपको सुनवाएंगे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। 6:30 पर आप आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत का। सुर्खियों में सुनिएगा रात 8:00। 8:15 पर फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं। 9:30 पर हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे चर्चा का विषय है। 10:30 पर आप सुन सकते हैं नाटक हाथक। इसमें आज आप सुनेंगे हसन सादत मिंटो का लिखा ये नाटक और प्रस्तुति होगी राकेश ढोंटियाल की। दस बज के 30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी सुना जा सकता है। इसमें आज के कलाकार होंगी संगीता गोस्वामी। इनसे आज आप सुनेंगे ख्याल गायन राग होगा यमन। तो ये थी जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के बीच टेलीफोन पर बातचीत, रास लफान हादसे पर जताई संवेदना। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल में करेंगे साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 का शुभारंभ। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, अलनीनो के असर से निपटने के लिए सरकार कर रही अग्रिम तैयारियां, 315 जिले हो सकते हैं प्रभावित। और प्रदेश में 2-3 दिन में दाखिल होगा मॉनसून, आज 42 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। अब समाचार।

0: मंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल में करेंगे साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 का शुभारंभ। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, अलनीनो के असर से निपटने के लिए सरकार कर रही अग्रिम तैयारियां, 315 जिले हो सकते हैं प्रभावित। और प्रदेश में 2-3 दिन में दाखिल होगा मॉनसून, आज 42 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के अमीर ने कल कतर के रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिजनों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद किया और घायलों को तुरंत चिकित्सीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। नई दिल्ली में 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक के समापन पर कल ब्रिक्स देशों के सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बदलते वैश्विक माहौल में ब्रिक्स की भूमिका अहम है और यह आतंकवाद, साइबर सुरक्षा जैसी साझा चुनौतियों से निपटने में मदद कर रहा है। 2 दिवसीय बैठक में ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, सप्लाई चेन और साइबर सुरक्षा जैसे गैर पारंपरिक सुरक्षा मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल में राज्य स्तरीय साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश पुलिस के इस अभियान का उद्देश्य आमजन, विद्यार्थियों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को साइबर ठगी और ऑनलाइन धोखाधड़ी के प्रति जागरूक करना है। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना की मौजूदगी में इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और साइबर जागरूकता बुकलेट का विमोचन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री देश भर में जन जागरूकता के लिए साइबर जागरूकता रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए खरीफ फसल के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। उन्होंने बताया कि देश में अब तक लगभग 43% कम वर्षा हुई है और लगभग 315 जिले सामान्य से कम वर्षा से प्रभावित हो सकते हैं, जिनमें 111 जिले उच्च प्राथमिकता वाले हैं। श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 5,960 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक में मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना को 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 वर्षों तक जारी रखने के लिए करीब 1,740 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में 225 शासकीय माध्यमिक शालाओं को हाईस्कूल और 300 हाईस्कूलों को हायर सेकेंडरी में उन्नयन करने की योजना को सैद्धांतिक स्वीकृति मिली, जिस पर 635 करोड़ 24 लाख रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा किसानों को 0% ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण देने की नई शर्तों को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल भोपाल के पास अचारपुरा में 5 दिवसीय शिल्पकार महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के साथ जनजातीय समाज के विकास के लिए राज्य सरकार कार्य कर रही है। डॉ. यादव ने कहा कि कई पीढ़ियां प्रभावित करने वाली बीमारी सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग, नियंत्रण और उपचार की दिशा में राज्य सरकार काम कर रही है।
1: सिकल सेल एनीमिया की एक ऐसी असाध्य बीमारी जिसके कारण से पीढ़ियां बर्बाद हो जाती है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2022 में जो संकल्प लिया के सिकल सेल एनीमिया के न केवल स्क्रीनिंग कराएंगे लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को बीमार को पहचान करके उसकी दवाई, उसका इंतजाम और भावी इस प्रकार से जो पीढ़ी की पीढ़ी बर्बाद होती है उसको बचाने का काम करेंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर जनजाति परंपरा, कला और शिल्प के इस अनूठे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक धरा से आज का ये शिल्पकार महोत्सव अपने आप में शोभायमान हो रहा है।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी UCC का ड्राफ्ट 5 जुलाई तक तैयार हो जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल कैबिनेट बैठक में बताया कि

सरकार ने 3.5 करोड़ लोगों को ऑनलाइन लिंक भेजकर सुझाव मांगे थे, जिनमें से 9 लाख लोगों ने अपनी राय दी। मुख्यमंत्री के मुताबिक 90% से अधिक लोगों ने यूजीसी लागू करने का समर्थन किया है, जिनमें अल्पसंख्यक समाज के लोग भी शामिल हैं। यूजीसी पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में बनी कमेटी 5 जुलाई तक ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद में विधानसभा सत्र में पेश करने की तैयारी है। प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान ने वर्ष 2025-26 बोर्ड परीक्षा कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। प्रदेश में कक्षा 5वीं का परिणाम 53.80%, कक्षा 5वीं का 57.70%, कक्षा 10वीं का 66.80% और कक्षा 12वीं का 77.80% रहा है। कक्षा 10वीं में शासकीय आवासीय कन्या संस्कृत विद्यालय गार्गी भोपाल की छात्रा रौनक ने 90.50% अंक के साथ प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि कक्षा 12वीं में इसी विद्यालय की छात्रा सुजाता मीना ने 89.80% अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया। राज्य वित्त आयोग आज भोपाल संभाग के दौरे पर रहेगा और नगरीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को लेकर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से सुझाव लेगा। आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया सहित सदस्य वीआईपी सर्किट हाउस में दोपहर 12 बजे से सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। शिवपुरी जिला प्रशासन ने छात्र छात्राओं की सुरक्षा को लेकर कार्रवाई की है। प्रशासन ने कल 8 कोचिंग और शैक्षणिक संस्थानों को सील कर दिया है। कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देश पर हुए निरीक्षण में कई संस्थानों में अग्निशमन यंत्र, फायर एनओसी और आपातकालीन सुरक्षा व्यवस्थाओं का अभाव पाया गया। कलेक्टर ने जिले के सभी एसडीएम को अपने अपने क्षेत्र में व्यापक निरीक्षण कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून अगले 2 से 3 दिनों में बालाघाट, छिंदवाड़ा और पांडुना के रास्ते प्रदेश में दाखिल हो जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश के 42 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश के आसार हैं। इसके अलावा नरसिंहपुर में हीट वेव का भी अलर्ट जारी किया गया है। वहीं ग्वालियर, भिंड, मुरैना सहित कई जिलों में गर्मी का असर बना रहेगा। महिला टी20 वर्ल्ड कप में आज मेजबान इंग्लैंड का सामना वेस्टइंडीज से होगा और ये मुकाबला जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लेगी। ग्रुप बी में शामिल दोनों टीमों के अब तक 6-6 अंक हैं, हालांकि बेहतर रन रेट के चलते इंग्लैंड टॉप पर है। दोनों टीमों ने अपने अपने सभी 3 मुकाबले जीते हैं। इंग्लैंड ने श्रीलंका, आयरलैंड और स्कॉटलैंड को हराया, जबकि वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड और श्रीलंका से जीत दर्ज की। शिवपुरी जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में नारकोटिक्स और नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए गठित समिति की बैठक आयोजित की गई। आगरमालवा में पशुपालन और डेयरी विभाग की कार्यशाला में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई। झाबुआ में जनजातीय कार्य विभाग और शिक्षा विभाग तथा जिला शिक्षा केंद्र के छात्रावासों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने सभी छात्रावासों में 100% प्रवेश करने संबंधी निर्देश दिए। छिंदवाड़ा में परिवहन विभाग ने शहरी क्षेत्र में विशेष जांच अभियान चलाकर लगभग 50 स्कूल वाहनों की जांच की। नर्मदापुरम में गौवंश को लेकर विकासखंड स्तरीय मैत्री गौ सेवक सम्मेलन में विस्तार से चर्चा की गई। खंडवा में कल आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने नागरिकों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। इंदौर शहर में कोचिंग सेंटर्स, रेस्टोरेंट्स और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी नियमों की सघन जांच की जा रही है। कटनी में ढीमरखेड़ा विकासखंड में वन अधिकार अधिनियम 2006 के उन्मुखीकरण के लिए ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। राजगढ़ में जिला मुख्यालय पर आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर ने आमजन की समस्याओं के 140 आवेदन का निराकरण किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

बरसाती बूंदों ने एक बात सिखाई है दोस्तों, बात जब भलाई की हो तो गिरना भी अच्छा है। सभी श्रोताओं को सुबह की राम राम, आदाब, सत श्री अकाल और गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपकी रेडियो मित्र रुचि सचान और आपने ट्यून किया है आपका मनपसंद कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। मित्रों, प्रकृति का हर एक मौसम अपने साथ एक नई ऊर्जा, नई उमंग और साथ ही साथ नई चुनौतियां भी लेकर आता है। तपती गर्मी के बाद जब वर्षा की पहली फुहार धरती पर पड़ती है तो मन प्रफुल्लित हो उठता है। चारों ओर हरियाली छा जाती है, मिट्टी की सौंधी खुशबू से वातावरण महक उठता है। लेकिन ये बदलता मौसम अपने साथ कई स्वास्थ्य संबंधित चुनौतियां भी लेकर आता है। सर्दी, खांसी और संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में ज़रूरी है अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाना। और ये कैसे होगा? ये होगा आपने रोज के खाने में मौसमी फल, हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज को शामिल करके। और हाँ, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी ज़रूरी है। तुलसी अदरक की चाय, हल्दी वाला दूध, गिलोय का काढ़ा, इनसे भी बहुत फ़ायदा होगा। और सबसे ज़रूरी बात, योग और व्यायाम को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाइए। बस 20 से 25 मिनट का योग और प्राणायाम आपको बीमारियों से दूर रखेगा। तो दोस्तों, सकारात्मक सोच, संतुलित आहार और नियमित योग आपके अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। तो आप भी तैयार है ना इस साल बारिश के मौसम का मजा लेने के लिए?

आप सुन रहे हैं 188.32 मीटर डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर अपना मनपसंद प्रोग्राम नमस्कार भोपाल। अब बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। समय हो गया है समाचार पत्रों के प्रमुख समाचारों का। पहला समाचार, शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर। सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा ट्रांसफर के लिए आवेदन करने का आज अंतिम दिन है। इस कार्य से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि 24 जून की रात 12 बजे पोर्टल बंद हो जाएगा। दूसरा समाचार, पद्मश्री गुंदेचा बंधुओं द्वारा स्थापित ध्रुपद संस्थान में बुधवार को नया एडिशन शुरू होने जा रहा है। यहाँ मध्य प्रदेश का पहला शास्त्रीय संगीत को समर्पित रिकॉर्डिंग स्टूडियो खुलने जा रहा है। 1 करोड़ की लागत से तैयार इस स्टूडियो को SBI ने फंड किया है। अगला समाचार, मैनेट भोपाल में एशियाई डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से प्रस्तावित रिसर्च एंड इनोवेशन पार्क अब फाइनल डिस्कशन लेवल तक पहुंच गया है। इसी कड़ी में 24 और 25 जून को 2 दिनों की स्टार्टअप इनक्यूबेशन एवं डिजाइन वर्कशॉप आयोजित की जाएगी। अगला समाचार, पद्म पुरस्कारों को लेकर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में 65 पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, गायिका अलका याग्निक, टेनिस दिग्गज विजय अमृतराज और अभिनेता आर माधवन शामिल रहे। पूर्व जस्टिस केटी थॉमस और पत्रकार पी नारायणन को पद्म विभूषण मिला। इस साल 131 पद्म पुरस्कार घोषित किए गए थे। दोस्तों, आज के समाचारों में बस इतना ही, और अब आपका मनोरंजन आपका इंतजार कर रहा है, तो सुनते हैं ये गीत।

0: अंतराल के बाद पुनः स्वागत करती हूँ मैं रुचि सचान। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का लोकप्रिय कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। मित्रों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के बाद से ही नवीन पाठ पुस्तकों की नींव का कार्य प्रारंभ हो गया था। फिर चाहे NCF का निर्माण हो, SCF का विकास हो, लर्निंग आउटकम्स का निर्धारण हो या विषय विशेषज्ञों की समिति का गठन हो, इन सभी पर कार्य होने के पश्चात अंततः मध्य प्रदेश में NEP 2020 पर आधारित नवीन पाठ्य पुस्तकों के लेखन का कार्य होना प्रारंभ हो चुका है। इस संबंध में हमें और अधिक जानकारी दे रहे हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के पूर्व उपाध्यक्ष और पाठ्य पुस्तक स्थायी समिति के सदस्य डॉक्टर भागीरथ कुमरावत जी। आइए सुनते हैं। सर, नई पाठ्य पुस्तकों में पारंपरिक पुस्तकों की अपेक्षा क्या प्रमुख परिवर्तन किए जा रहे हैं?
1: जब भी नई पुस्तकों की रचना होती है तो पुरानी विषय वस्तु तो बदल जाती है। जैसे इस बार नई पुस्तकें कोई सामान्य पुस्तकें नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है और इसके पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986 की। 40 साल बाद ये नई शिक्षा नीति बनी। तो इस नई शिक्षा नीति में विशेष रूप से भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार पुस्तकों और पाठ्यक्रम का निर्माण हुआ है। तो इस बार नई पुस्तकों में हमारा काफी कुछ परिवर्तन हो रहा है।
0: नई पाठ्य पुस्तकों के लिए अभी कितनी तैयारियां हो गई और ये कब तक बच्चों के हाथों में पहुंच जाएगी?
1: जो पुस्तकों का लेखन कार्य मध्य प्रदेश में चल रहा है ये नवंबर से शुरू हुआ है और अभी हमने 1 से 8 तक का काम शुरू किया है। तो 1, 3, 5, 7 इन कक्षाओं का काम लगभग पूरा हो गया है। जुलाई में हम शुरू करेंगे कक्षा 2, 4, 6, 8 का। तो ये हमारा चलेगा अक्टूबर नवम्बर तक और फिर इसकी कंपोजिंग होगी, डिजाइनिंग होगी, चित्र बनेंगे। तो ऐसी कोशिश रहेगी कि 1 से 8 तक की सभी पुस्तकें, 9 विषयों की पुस्तकें लिखी जा रही है, अप्रैल 27 में हम दे दें।
0: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा और स्थानीय भाषा पर विशेष बल दिया गया है, इसका पाठ्य पुस्तकों में किस प्रकार से समावेश किया जा रहा है?
1: NEP 2020 में यह आग्रह किया है कि बच्चे की प्राथमिक शिक्षा कम से कम उसकी मातृभाषा में होना चाहिए। मातृभाषा का अर्थ है कि जो माँ बोलती भाषा घर में वो उसके बच्चे की मातृभाषा भी। तो यह आग्रह किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने और दूसरा NEP में भी यह सुनिश्चित किया गया है कि जो बच्चे की माँ बोल रही है उसी भाषा में बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन देना चाहिए। अब अपना मध्य प्रदेश है, यहाँ मातृभाषा लगभग हिंदी ही है सबकी और उसके बाद हमारे यहाँ अलग अलग माध्यमों की शालाएं भी कुछ है, जैसे मराठी माध्यम की शालाएं हैं, उर्दू माध्यम की शालाएं हैं, अंग्रेजी माध्यम की शालाएं हैं। तो जो हिंदी में मूल लेखन होगा उसके बाद में इन तीनों विषयों में हिंदी, उर्दू, मराठी, अंग्रेजी, इसमें ट्रांसलेशन पुस्तकों का करते हैं, इसलिए तो ये देखने को मिलेगा। दूसरा स्थानीय भाषा, स्थानीय भाषा में जैसे मध्य प्रदेश में स्थानीय बोलियां हैं जैसे कोरकू है, भीली है, तो मालवी है, उधर बुंदेलखंडी है, तो इनमें सब में पुस्तकें तैयार करना तो कठिन है, परंतु फिर भी हम शिक्षक से आग्रह कर सकते कि भाई बच्चे को जो भाषा वो जानता है उस भाषा में बोलकर पढ़ाओ ताकि बच्चा अच्छी तरह समझ जाए।
0: तो क्या नवीन पाठ्य पुस्तकों में स्थानीय संस्कृति, लोक कला और क्षेत्रीय जो नायक हैं उनको भी स्थान दिया गया है?
1: हाँ, ये तो देना ही होता है, हमारी भारतीय संस्कृति झलकेगी इसमें।

0: लोक कलाएं जो है वो भी झलकेगी और क्षेत्रीय नायक जो है जैसे आप हमारे टंटिया भील ये क्षेत्रीय नायक है, रानी दुर्गावती ये हमारे मध्य प्रदेश की है क्षेत्रीय नायक है, रघुनाथ साहा ये हमारे क्षेत्रीय नायक है इनको हम ही पढ़ाएंगे, झांसी की रानी ये राष्ट्रीय नायक है तो इनको पूरा देश पढ़ाएगा। तो क्षेत्रीय नायकों का उनके जीवन प्रसंगों का स्थानीय हमारी संस्कृति का हमारे लोक कलाओं का इनका इन पुस्तकों में समावेश किया गया है।
1: अधिक से अधिक गतिविधि आधारित शिक्षण हो सके इसके लिए नवीन पाठ्य पुस्तकों में किन बातों का विशेष ध्यान दिया गया है?
0: अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है और इसके पहले 1986 में बनी थी और उसके पहले जाओ तो कई कमीशन बैठे तो इन सब ने जो अनुशंसाएं की थी उससे हटकर अब की बार अनुशंसाएं आई है और वो प्रमुख अनुशंसाएं उसमें है कि प्रोजेक्ट कार्य दिए जाए, गतिविधि आधारित शिक्षण हो तो हमारी इन पुस्तकों में प्रोजेक्ट काफी मात्रा में होंगे, गतिविधियां दी जाएगी ताकि बच्चा अलग अलग गतिविधियां करके और सीखे, आओ करके सीखे ये हमारी थीम है पुस्तकों की।
1: शिक्षक इन नवीन पाठ्य पुस्तकों का प्रभावी उपयोग कर सके इसके लिए क्या किसी प्रकार के प्रशिक्षण का भी प्रावधान है?
0: ये तो आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। जब भी नई पुस्तकें बनती है या पुस्तकें या कोर्स बदलता है तो उस कोर्स से अवगत कराने के लिए उसको कैसे क्या पढ़ाना उसकी थीम क्या है इसलिए हमारे शिक्षकों की ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण। हमारे यहाँ तो SCERT प्रत्येक प्रदेश में है, SCERT और SCERT का मुख्य दायित्व ही है कि शिक्षकों को नया प्रशिक्षण देकर और अपडेट हमेशा करते रहेगा। जब भी ये पुस्तकें लागू होगी लागू होने वाले साल में लगातार 2-3 साल तक प्रशिक्षण नई पुस्तकों के बारे में दिया जाएगा। और वैसे भी डाइट हमारे यहाँ है और हमारे यहाँ BEd कॉलेज है, इनका मुख्य उद्देश्य ये है कि सर्विस में आने के बाद में लगातार ट्रेनिंग ग्रीष्मावकाश में देते रहना जिससे शिक्षक अपडेट बना रहे और नई नई गतिविधियाँ नई नई विधियाँ उसे अवगत होता रहे, इसलिए ये नई पुस्तकें बनते ही और प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है, प्रशिक्षण दिया जाएगा उसकी योजना बनेगी।
1: आप नई शिक्षा नीति के अंतर्गत विकसित इन पाठ्य पुस्तकों से शिक्षा के भविष्य को किस रूप में देख रहे हैं?
0: जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है ये पूरे देश को ध्यान में रख के बनी है, देश की आब हवा को ध्यान में रखकर बनाया गया है, देश कैसा है यहाँ की मिट्टी कैसी है यहाँ की प्रकृति कैसी इन सब बातों को ध्यान में रखकर ये पहली बार बनाया गया है। तो सबसे पहले ड्राफ्ट तैयार होने के लिए पूरे देश भर में इसकी चर्चाएं हुई, छोटे छोटे गुटों में बैठकर स्कूलों में ऑफिसों में मजदूर वर्ग में मंडियों में चर्चाएं हुई कि क्या आना चाहिए पाठ्यक्रम में, फिर उस ड्राफ्ट को इकट्ठा करके फिर उस पर इनपुट बुलाए गए तो उस पर जो सुझाव आए ड्राफ्ट पर वो फिर बैठकर और के कस्तूरी रंगन ये एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है इनकी अध्यक्षता में और इस सारे इनपुटों को और ड्राफ्ट को लेकर एक शिक्षा नीति जो आने वाले 50 वर्ष काम करेगी। अभी इसको लागू करने में ही 4 स्तरीय लेवल है इसको लागू करने में। अब जैसे केंद्र ने तो बना दी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अब प्रदेश स्तर पर प्रदेश का शिक्षा विभाग इसको कैसे लागू करेगा तो उसकी नीति निर्धारक तत्व वो तय करेगा। फिर प्रदेश के बाद जिला आता है तो जिले में DO है JD है ये लोग कैसे लागू करेंगे विद्यालयों में उनकी रीति नीति अलग रहेगी उसका लेवल अलग रहेगा। उसके बाद में विद्यालय स्तर पर प्रधानाचार्य वहाँ का प्रशासन है मैनेजमेंट है वो इसको कैसे क्या लागू करेगा उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां बनती है। और उसके बाद चौथा लेवल आता है शिक्षक स्वयं कि शिक्षक अपने स्तर पर कक्षा कक्ष में पढ़ाते समय राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्या क्या बातें ध्यान में रखकर पढ़ाएगा, वो अपने पढ़ाए गए विषय के बारे में जवाबदेही देना पड़ेगी कि मैंने जुलाई में क्लास टीचर बना या सब्जेक्ट टीचर बना और अप्रैल में जाकर मैंने बच्चों को कितना आगे बढ़ाया मेरे बच्चे कितने प्रोग्रेस किए इसकी जवाबदेही तय होगी। इसी प्रकार अब बोर्ड परीक्षाएं भी बीच की खत्म होगी, शिक्षा नीति में दिया है सीधे 12वीं कक्षा की परीक्षा होगी और वो 12वीं का लेवल भी पूरे देश भर का एक जैसा होगा, बोर्ड पूरे देश का एक होगा परंतु उसको सेंट्रलाइज करने के लिए इसलिए उसका आयोजन राज्य स्तर पर या प्रदेश स्तर पर करने की अनुमति दी जाएगी परंतु रीति नीति सिद्धांत सब एक ही होंगे। तो इस प्रकार ये वन नेशन वन एजुकेशन में एक समान करिकुलम एक समान पाठ्यक्रम एक समान पाठ्यपुस्तक ताकि सबको एक जैसा पढ़ने को पढ़ाने को मिले।
2: मित्रों अभी आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उस पर आधारित नवीन पाठ्यपुस्तकों में क्या विशेष रहेगा इस संबंध में पाठ्य पुस्तक स्थायी समिति के सदस्य डॉक्टर भागीरथ कुमरावत जी को सुना और अब आपका मनोरंजन करने आ रहा है ये जोशीला गीत, सुनिए।

0: मित्रों, तमतमाती धूप और लू के थपेड़ों के बाद आप सभी को इंतज़ार होगा भरपूर मानसून का। लेकिन मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में मानसून रूठा हुआ है। मानसून ने इस बार कुछ ज़्यादा ही लंबी गर्मियों की छुट्टियां मना ली हैं। हर साल जहां जून के दूसरे सप्ताह में ही मानसून अपनी दस्तक दे देता था, वहीं इस साल अभी तक मध्य प्रदेश के कई जिले सूखे हुए हैं। आइए जानते हैं मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अजय कुमार सिंह से कि आखिर क्या कारण रहा मॉनसून की देरी का। सर, 16 साल बाद मॉनसून इतना सुस्त रहा है, इसके पीछे कौन कौन से वैज्ञानिक कारण हैं?
1: ये बात सही है कि मॉनसून इस बार सुस्त नहीं, काफ़ी ही सुस्त है। इसका मेन जो वैज्ञानिक कारण है, इस बार अल नीनो सिस्टम जो है एक्टिव है, पूरी तरह से एक्टिव है। और जब भी अल नीनो सिस्टम एक्टिव रहता है तो इंडिया में डेफिशिएंट मॉनसून जो है उसकी कमी होती है, रेनफॉल की कमी होती है और मॉनसून डिलेड भी होता है, जिसका कि इंडियन मॉनसून पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।
0: सर, जैसे कि आपने अल नीनो का जिक्र किया, तो अल नीनो या ला नीना ये वास्तव में है क्या?
1: अल नीनो और ला नीना ये दोनों अपोजिट है, और ये अल नीनो जो फिनोमेना जो है ये इंडिया से काफी दूर होता है। आप मतलब सोच भी नहीं पाएंगे, ये साउथ अमेरिका में होता है और पेरू के तट पर, आपको जो पैसिफिक ओशियन है उसके सेंट्रल और ईस्ट पार्ट में जब भी अल नीनो होता है, उसमें क्या होता है कि एबनॉर्मल हीटिंग शुरू हो जाती है सी सर्फेस टेम्परेचर की, जिसका कि ग्लोबल सर्कुलेशन पर आपको प्रभाव पड़ता है। ये इसका अल नीनो इसलिए नाम दिया गया था, इस फिनोमेना को बहुत ही पहले 16वीं या 17वीं शताब्दी में ही पेरू के मछुआरों ने डिटेक्ट कर लिया था कि ये एबनॉर्मल हीटिंग हो रही है। और इसको अल नीनो इसलिए बोला गया कि स्पेनिश में इसका मतलब होता है लिटिल बॉय। यूजुअली लड़के जो होते हैं वो थोड़े से शरारती टाइप के होते हैं, इसलिए इसको बोला गया अल नीनो, क्योंकि यहाँ पर गर्मी हो रही है। और ला नीना जो है जस्ट इसकी अपोजिट होता है, मतलब कि गर्मी नहीं ठंड होता है, और इसका मतलब होता है लिटिल गर्ल। लड़कियां अपेक्षाकृत उतनी शरारती नहीं होती, इसलिए इसको स्पेनिश भाषा में इसको ये दिया गया। लेकिन ग्लोबल सर्कुलेशन पर प्रभाव पड़ता है और इसका इंडियन मॉनसून पर भी प्रभाव पड़ता है। करीब करीब 1920 में इसको डिस्टिंग्विश किया गया। तो ये पाया गया है कि जब भी अल नीनो ईयर आपको रहेगा, इंडियन मॉनसून जो है वीक रहेगा और इसकी डिलेड एंट्री होगी। तो ये चूंकि अल नीनो जो है जो पेरू के तट पर हीटिंग हो रही है, वो ग्लोबल सर्कुलेशन को प्रभावित कर रहा है, उसके चलते मॉनसून जो है डिले हो रहा है और कम हो रहा है। हाँ, एबनॉर्मल हीटिंग जो हो रही है उसका जलवायु परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं है, वो हीटिंग तो एक नेचुरल फिनोमेना वहाँ पर होती है।
0: मध्य प्रदेश में अगले कुछ दिनों में मॉनसून के प्रवेश की क्या संभावना है?
1: मॉनसून तो ऑलरेडी यहाँ पर डिलेड हो चुका है, और यूजुअली यहाँ पर जो एंट्री का डेट होता है 15 से 16 जून होता है, लेकिन आज 23 जून ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन अब खुशी की बात है, छत्तीसगढ़ का ऑलमोस्ट 75% कवर हो चुका है, और अभी जो परिस्थितियां दिख रही हैं मॉनसून की एंट्री

0: यहाँ पर 2 से 3 दिनों के भीतर अवश्य हो जाएगी।
1: मौसम विभाग मॉनसून का पूर्वानुमान किस प्रकार से तैयार करता है और ये कितना ज़्यादा सटीक होता है?
0: ये हमारे डोमेन में नहीं है, ये हमारा पूना ऑफिस देता है इसको, जिसको लॉन्ग रेंज फोरकास्ट हम बोलते हैं। पहला पूर्वानुमान निकाला जाता है यहाँ पर 1 जून को मानसून एंट्री होती है, एग्जैक्ट 45 डेज पहले, मतलब कि करीब करीब अप्रैल में आपको बोल दिया जाता है कि इस बार का मानसून किस तरीका का रहने वाला है, एक पूर्वानुमान उस समय लगा दिया जाता है। और फिर उसका जो अपडेटेड वर्सन जो आता है वो करीब करीब उसके 1 महीने बाद आता है, मतलब कि 15 मई के करीब उसका ये आ जाता है। तो मानसून का जो पूर्वानुमान जो है वो हमारे डोमेन में नहीं है, हमारे पूना ऑफिस है जो कि इसके लिए एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबल है, उसके डोमेन में है।
1: मौसम विभाग द्वारा जारी ऑरेंज और रेड अलर्ट होता है, असल में ये क्या है, इसका क्या अर्थ होता है?
0: देखिए, रेड सबसे खतरनाक है, रेड मतलब कि अब तो आपको पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, आपको एक्शन तो लेना ही है। रेड का मतलब होता है टेक एक्शन, जैसे कि हमने बोला है कि वहां पर बहुत ज्यादा भारी बारिश की संभावना है और रेड अलर्ट हमने दिया हुआ है, इसका मतलब कि लोग अब टेक एक्शन, अपने घरों में प्रॉपर बचाव करें, सरकार को भी क्या चाहते हैं कि इवैक्यूएशन करना पड़ेगा, ये सब का प्रोसेस आपको स्टार्ट कर देना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब होता है सावधान रहें, ऑरेंज और रेड लगभग सेम है, ऐसे बिल्कुल सावधान रहे कि आपको एक्शन लेना पड़ सकता है, रेड में तो एक्शन लेना ही लेना है, ऑरेंज में बिल्कुल आप सावधान रहिए, एक्शन लेने की संभावना भी आ सकती है, दोनों इक्वली डेंजरस हैं, लेकिन रेड ज्यादा खतरनाक है।
1: दोस्तों, ये थे मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अजय कुमार सिंह, जिन्होंने हमें विस्तार से मॉनसून के बारे में बताया। अब समय हो चला है इस प्यारे से गीत का, जो आपको भी पहली बारिश की याद दिला देगा।

संगीतमय अंतराल के बाद आपका पुनः स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम नमस्कार भोपाल में। मित्रों, हम में से बहुत से लोग योगासनों के अभ्यास को ही योग मान लेते हैं, लेकिन यदि हम महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग की बात करें तो आसनों के

0: बाद का चरण होता है प्राणायाम। जिस प्रकार से आसनों का अभ्यास शरीर की चुस्ती और फुर्ती के लिए आवश्यक है, वैसे ही प्राणायाम हमारी प्राण शक्ति, मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। प्राणायाम से किस प्रकार फेफड़ों और हृदय संबंधी रोगों को दूर किया जा सकता है, इस संबंध में हमें और अधिक जानकारी दे रही हैं योग विशेषज्ञ पूजा दुबे जी। आइए सुनते हैं। पूजा जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि प्राणायाम क्या होता है और प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन क्यों करना आवश्यक है।
1: प्राणायाम, जैसे उसके शब्द से आप समझ सकते हैं, दो शब्दों से मिलके बना है, प्राण और आया। प्राणों का मतलब है जो हमारे अंदर जो भी प्राण शक्ति बह रही है उसको प्राण कहते हैं। नॉर्मल सांस लेना से संबंध नहीं है प्राण, प्राण और गहराई में है हमारे। जब उसको उन प्राणों को विस्तारित करने प्राणायाम के द्वारा, तो उस प्राणायाम का हमको फायदा मिलता है। अभी हम बहुत संकुचित दृष्टि से प्राणायाम को देखते हैं कि कुछ सांसों का व्यायाम कर लिया, कुछ प्रक्रियाएं कर ली, उसको हमने प्राणायाम मान लिया। लेकिन जब गहराई में जाते हैं और कई दिनों का रेगुलर अभ्यास हो जाता है, तब हमको अपने पूरे बॉडी में एक ऊर्जा का स्तर बढ़ता हुआ महसूस होता है, तब आपको प्राणायाम का सही लाभ प्राप्त हो।
0: प्राणायाम से फेफड़े किस प्रकार से स्वस्थ बन सकते हैं, हमें कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए?
1: प्राणायाम, सबसे पहले हम नाक से सांस लेंगे तो सबसे पहले हमारी ऑक्सीजन फेफड़ों में ही जाएगी। नॉर्मल हम देखते हैं, हम डेली लाइफ में जब भी सांस लेते हैं, उथली उथली सांस लेंगे, मतलब बहुत गहराई से सांस नहीं लेते हैं। जब हम सुबह उठ के 10 मिनट प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, जब गहरी लंबी सांस ऑक्सीजन पूरी फेफड़ों में अंदर तक भरती है, तो जो फेफड़ों की थैलियाँ हैं दोनों पूरी तरीके से फैलती हैं, और जब पूरी क्षमता से हम उनको बाहर निकालते कार्बन डाइऑक्साइड, उससे वो पूरी तरह से सिकुड़ती हैं, तो फेफड़ों का उससे एक एक्सरसाइज हो जाता है, जिससे हमारे फेफड़े मजबूत बनते हैं और फेफड़ों से संबंधित सारी बीमारियों में फ़ायदा मिलता है। जैसे अस्थमा की समस्या हो गई, श्वास से संबंधित और समस्याएं हो गई, तो उनसे हमको निजात मिलती है।
0: तनाव और हृदय रोगों के खतरे को कम करने के लिए प्राणायाम किस प्रकार से लाभकारी है?
1: जब हम प्राणायाम का अभ्यास प्रारंभ करते हैं, तो धीरे, जब भी कभी आप किसी ने भी किया होगा तो वो महसूस करता है, ब्रेन में हमारे एक ऑक्सीजन लेवल जब बढ़ती है तो एक ठंडक का एहसास होता है, क्योंकि मैं रेगुलर करती हूँ तो मुझे पता है इस बारे में। उससे क्या होता है, ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज़ होने से ब्रेन की जो तनाव को टैकल करने की क्षमता होती है वह बढ़ जाती है। जैसे कि हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ आई सोचने समझने वाली, हम शौक उड़ गए, तो उसमें हम जब प्राणायाम का अभ्यास रेगुलर करते हैं, ध्यान अभ्यास रेगुलर करते हैं, तो वो उस परिस्थिति से लड़ने की हमारी क्षमता बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, धीरे धीरे प्राणायाम और योग के अभ्यास के द्वारा हम बेहतर तनाव प्रबंधन अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं।
0: हाई ब्लड प्रेशर या हृदय रोग जो होते हैं आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो ऐसे में पीड़ित व्यक्तियों को कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए?
1: हाई ब्लड प्रेशर और जो हार्ट डिसीजेज होती हैं उनमें थोड़ा सा सावधानी के साथ हम प्राणायाम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें बहुत स्लो डाउन होके ब्रीदिंग की जाती है, जैसे अनुलोम विलोम हो गया, भ्रामरी हो गया, ओम का उच्चारण स्लो हो गया, और शीतली प्राणायाम। एक सावधानी इसमें यह रखनी है कि जब भी हम कोई भी सांस लें, कोई भी प्राणायाम करें, तो सांस को रोक कर हमारे अंदर नहीं रखना है। अगर हम रोक कर रखेंगे तो हमारे फेफड़ों पे और हार्ट पे उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इस वजह से जो हार्ट के पेशेंट हैं और हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उनको नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है।
0: प्राणायाम का अभ्यास करने का सही समय और अवधि क्या होनी चाहिए?
1: जैसे सुबह, मतलब ब्रह्म मुहूर्त जो हम कहते हैं, 5 to 7 AM, और अगर आप सुबह किसी वजह से नहीं कर पाते तो इवनिंग में 5:30 to 7:30 कर सकते हैं। इवनिंग में करने का ये रहेगा कि आप कम से कम जो खाना खाया, भोजन के पश्चात 4 घंटे का अंतराल देना चाहिए, इसके बाद ही हमको प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। कितने, जैसे कि आप स्टार्टिंग में हैं, बिगिनर हैं, तो 5 to 10 minutes जा सकते हैं, थोड़ा सा समय ज़्यादा हो गया है तो 10 से 20 मिनट तक भी किया जा सकता है। 50 साल से अधिक आयु वर्ग के लोग थोड़ा सारे प्राणायाम ना करके एक ओम का उच्चारण, अनुलोम विलोम और भ्रामरी करें, और 7 से 8 मिनट।
0: प्राणायाम करते समय कौन कौन सी सामान्य गलतियां लोग करते हैं और इससे हम कैसे बच सकते हैं?
1: खाली पेट ही होना चाहिए। अगर आप भरे पेट बैठ जाएंगे तो आपके फेफड़ों को एकदम से जगह नहीं मिलेगी फैलने। दूसरा ये है कि आप किसी योगा क्लास में गए, आपने कोई व्यक्ति है जो काफ़ी समय से इसका अभ्यास कर रहा है और आप बिगिनर हैं, आपने उसको देखते उसी की लय के अनुसार आप करने लगे, मीन्स अपनी लय पहचानना है हमको अपने शरीर की। हम बिगिनर हैं तो हमको स्लो फेज में चलना है, स्टार्टिंग में एकदम तेज नहीं करते जाना है, और पीठ को बिल्कुल रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के बैठना है, उसके बाद ही प्राणायाम का अभ्यास शुरू करना है।
0: जैसे कि आप हार्टफुलनेस से भी जुड़े हुए

0: मेडिटेशन से भी जुड़े हुए हैं, इनके फायदे क्या हैं और हमारे श्रोता कैसे उससे लाभान्वित हो सकते हैं, यदि आप थोड़ा कुछ बताना चाहें।
1: जैसे हमने प्राणायाम किया उसके बाद हमारी बॉडी एक संतुलन की अवस्था में आ जाती है। प्राणायाम के बाद आप ध्यान की ओर मुड़ेंगे तो उसके बाद उसका ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। जैसे ध्यान में हमको अक्सर प्रॉब्लम होती है कि अंदर नहीं जा पाते, कई लोग कहते हैं हम आंख बंद करके 5 मिनट से भी ज्यादा नहीं बैठ सकते। तो जब आप प्राणायाम के थ्रू अपने शरीर को जैसे बाहर के तनाव से मुक्त होके आपका शरीर जब बिल्कुल फोकस स्थिति में आ जाएगा, तो उसमें जब आप ध्यान की अवस्था में जाएंगे धीरे धीरे, तो आपको ध्यान में भी बहुत बेनिफिट होगा।
2: मित्रों, अभी आपने प्राणायाम के लाभ, सावधानियां और हृदय संबंधी रोगों में प्राणायाम किस प्रकार से लाभकारी है, इस संबंध में योग विशेषज्ञ पूजा दुबे जी को सुना। अब सुनिए ये सदाबहार गीत।

0: दोस्तों, इसी गीत के साथ आज के नमस्कार भोपाल कार्यक्रम को संपन्न करने की अनुमति चाहूँगी। इसी वादे के साथ कि फिर एक बार गीत संगीत और ज्ञान के पिटारे नमस्कार भोपाल कार्यक्रम को लेकर वापस आऊँगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा। दीजिए अनुमति रुचि को, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक, और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया, इंग्लैंड और घाना

0: अर्जेंटीना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर छूटा। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: They all constitute an important threats for us.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
3: रास लफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
3: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।

0: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 285,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है, और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
1: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। रिशु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। एक रिपोर्ट।
3: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केन्या, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मानसून के कमजोर रहने की आशंका है।
4: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है। हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे, क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले, मतलब जहां 25-50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं, ऐसे 76 जिले हैं। और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले, इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
1: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनी

वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है।

0: रेगिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज़ को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने CUET परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, 100% वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को शीर्षक दिया है, दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में CUET के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है, खबर को शीर्षक दिया है, दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून। जबकि दैनिक भास्कर का कहना है, मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली NCR में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हों, लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को प्रमुखता से प्रकाशित किया है, वैज्ञानिकों की 7 साल की मेहनत रंग लाई, सुपरफूड ग्रेन ओट्स में भारत बन रहा आत्मनिर्भर।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस: BRICS nations call for stronger cooperation to address widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats. Prime Minister Narendra Modi gets condolence call from Qatar's Emir after 12 Indians killed in Ras Laffan gas plant blast. India strongly criticizes Pakistan's remarks over situation in POK, says Islamabad deflects attention away from its human rights abuses. India and United States open high-level trade talks in New Delhi to recalibrate proposed bilateral trade agreement. And in FIFA World Cup, Portugal thrash Uzbekistan 5-0, match between England and Ghana draw goalless. And now the news in detail. National security advisers and senior security officials from the BRICS nations called for stronger cooperation to address a widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats, during a high-level meeting hosted by India in the national capital. The 16th BRICS National Security Advisers meeting, held under India's chairship of the grouping led by India's NSA Ajit Doval, brought together top security representatives from member countries to discuss both traditional and emerging threats confronting the international community. According to India's Ministry of External Affairs, the discussions focused on evolving security risks that increasingly transcend national borders.

सुरमई सवेरा कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं। श्रोताओं, जिंदगी में पॉजिटिविटी होना बहुत ज़रूरी है, अपने आप में विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कई बार खुद को छोटा महसूस करते हैं, खुद ही अपने काम बिगाड़ लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हमारी जो सोच है ना, वो हमारे कामों पर बहुत असर डालती है। आप अपनी इच्छा और बात कहने में हिचकचाते हैं, तो इसे बदला जा सकता है।

सोचा है आपने कि ऐसा क्यों होता है? ये आपके मन में चल रही पुरानी सोच और धारणाओं को दिखाता है जो बार बार आपके व्यवहार को प्रभावित करती है। इसीलिए जब भी ऐसा महसूस हो उसे लिख लें। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि कौन सी सोच आपको रोक रही है और यहीं से बदलाव शुरू होगा। तो उम्मीद है कि ये बात आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। और अब आपके लिए एक प्यारा सा नगमा।

0: सीमा
1: जी,
0: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों, लेकिन मैं
0: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
0: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
1: इतने पैसे?
0: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। श्रोताओं, हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा आया तो, पर गया कहाँ? जी हाँ, हर महीने वेतन रूपी कह सकते हैं बारिश तो होती है, फिर भी कहीं ना कहीं लगता है कि बटुआ खाली सा रह गया है। चाहे आप सर्विस करते हो, चाहे आपका व्यापार हो, कई बार अच्छा खासा हम कमाते हुए भी रह जाता है कि कहीं ना कहीं लगता है कि आखिरी जो मंथ है, आते आते हम थोड़ा सा पैसों को लेकर सोचने लगते हैं। तो वजह सिर्फ सीमित या कम कमाई नहीं, बिखरा हुआ वित्तीय अनुशासन भी होता है। तो हम कैसे अपना जो वित्तीय अनुशासन है उसको सुधार सकते हैं और उसको अच्छी तरीके से बना सकते हैं, आगे बात करते चलेंगे। पहले ये आपके लिए प्यारा सा नगमा।

श्रोताओं, पैसे जल्दी ख़त्म क्यों हो जाते हैं इस पर हम बात कर रहे थे। तो अक्सर हम बिना योजना बनाए खर्च करते रहते हैं। छोटे छोटे खर्च, सुविधा के नाम पर होने वाला व्यय, अचानक की गई खरीदारी और बचत को टालने की आदत धीरे धीरे पूरे बजट को बिगाड़ देती है। हालांकि कुछ आसान बदलाव अपना कर हम इस स्थिति को काफ़ी हद तक सुधार सकते हैं। तो आप जो है वो कुछ बदलाव लाकर, अपना बजट बनाकर जो है वो खर्चे को कम कर सकते हैं और पैसे को बचा सकते हैं, जिससे कि मंथ एंड तक आपके पास आपके बटुए में पैसे भरपूर रहेंगे। तो आगे और क्या क्या तरीके हैं जिनको हम अपना कर जो है वो अपना बटुआ भरा रख सकते हैं, बात करते चलेंगे। पहले एक प्यारा सा नगमा।

श्रोताओं, हम बात कर रहे थे कि क्या वो आसान से बदलाव हैं, क्या वो तरीके हैं जिसे अपना कर हम जो है वो बचत कर सकते हैं और पैसा बचा सकते हैं। तो वेतन मिलते ही बजट बना लें। जी हाँ, सबसे पहले बजट बनाएं, उसके बाद पैसों को हिसाब से जो है वो हिस्सों में खर्च करें, उसके बाद पहले बचत करें फिर खर्चा करें, उसके बाद जो है आप फिर देखिए आपका किस तरह से जो है वो धीरे धीरे बचत होती है और आपके पास जो है वो मंथ एंड तक पैसा बचता है। और अक्सर लोग सोचते हैं कि महीने के अंत में जो बचेगा उसे बचत में डाल देंगे, लेकिन ऐसा कम ही हो पाता है। बेहतर तरीका ये है कि सैलरी मिलते ही या आपके पास पैसा आते ही 20-30% राशि जो है वो बचत के लिए अलग कर दी जाए, और यही बचत भविष्य में आर्थिक सुरक्षा का आधार भी बनती है। तो आप भी इन तरीकों को ज़रूर अपनाएं।

0: फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा जारी रहेगा, लेकिन अभी एक छोटा सा अंतराल क्योंकि वक्त हो चला है इस घंटे की खास खबरों का। तो पहले सुन लेते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक के समापन पर कल नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बदलते वैश्विक माहौल में ब्रिक्स की भूमिका अहम है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। वहीं राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल में राज्य स्तरीय साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश पुलिस के इस अभियान का उद्देश्य आमजन, विद्यार्थियों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को साइबर ठगी और ऑनलाइन धोखाधड़ी के प्रति जागरूक करना है। राज्य वित्त आयोग आज भोपाल संभाग के दौरे पर रहेगा। नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को लेकर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से सुझाव लेगा। बैठक में निकायों की वित्तीय मजबूती, स्वच्छता, पेयजल और राजस्व स्रोतों में वृद्धि के उपायों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 5,960 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी गई। प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान ने वर्ष 2025-26 बोर्ड परीक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित कर दिए हैं और राज्य में मानसून अगले 2 से 3 दिनों में बालाघाट, छिंदवाड़ा और पांडुना के रास्ते प्रवेश करेगा। आज प्रदेश के 42 जिलों में तेज आंधी और बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है।

श्रोताओं, अक्सर हम अपने घर में जो है वो हरियाली को बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाते हैं। कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी लगाते हैं जो हर्ब्स के रूप में उगते हैं, जैसे कि मिंट हो गया और तुलसी हो गई। तो इस तरह के जो पौधे हैं वो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देते हैं। पुदीने की ही आप उसको ले लीजिए पेड़ को, कि किस तरह से इसका पौधा जो है वो हमें बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा देता है। पुदीने में मौजूद मैंथॉन शरीर को तुरंत ठंडक पहुंचाता है और पाचन तंत्र को भी दुरुस्त रखता है। साथ ही विटामिन सी से भरपूर होने की वजह से ये रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। इसका नियमित सेवन करने से जो है वो त्वचा में निखार भी आता है, और इसे चटनी वगैरह में आप रायते में भी डाल सकते हैं और डिटॉक्स वाटर के रूप में भी शामिल कर सकते हैं। और ये जो है आप जानते हैं सभी कि ये एक बेहतरीन नेचुरल माउथ फ्रेशनर भी है। जी हाँ, पुदीने की पत्तियां जो हैं वो माउथ फ्रेशनर का भी काम करती हैं। तो है ना,

सुरमई सवेरा कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं और श्रोताओं, अब हम इस कार्यक्रम में आपसे यही कहना चाहेंगे कि एक नई सुबह, एक नई आशा, एक नई उम्मीद, एक नई सोच, एक बार फिर आसमान छू लेने की कोशिश, कामयाब होने की चाहत, सुबह की पहली किरण के साथ।

तो श्रोताओं, ये था आज का हमारा फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। अब इस कार्यक्रम से हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं रमेश पुरी गोस्वामी के गाए गीत।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। इसमें कलाकार थे रमेश पुरी गोस्वामी। इनसे आज आपने सुने गीत। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: नमस्कार। कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 वर्षों की यात्रा और विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की बढ़ती भूमिका पर। पिछले एक दशक से अधिक समय में देश ने आधारभूत संरचना, डिजिटल क्रांति, सामाजिक कल्याण, कृषि, उद्योग, स्टार्टअप और आत्मनिर्भरता जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय परिवर्तन देखे हैं। इन राष्ट्रीय पहलों का प्रभाव मध्य प्रदेश में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय बोकिल सर। बहुत बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में आपका।
3: धन्यवाद दीपा जी।
2: और हमारे दूसरे मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार अक्षत शर्मा सर। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में सर।
4: नमस्कार।
2: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अजय सर, पहला सवाल आपसे है, हम जानना चाहेंगे कि एनडीए सरकार के 12 वर्षों को आप कैसे देखते हैं?
3: देखिए, एनडीए सरकार के जो 12 वर्ष हैं और मध्य प्रदेश का जो विकास, ये दोनों लगभग एक साथ चल रहे हैं
2: जी।
3: और मेरे ख्याल से ये एक और एक 11 वाली स्थिति ज़्यादा है
2: जी,
3: क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार भी कई करीब 115 योजनाएं कल्याणकारी तो मध्य प्रदेश सरकार चला रही है
2: जी जी।
3: और लगभग एक दर्जन के आसपास जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जो मध्य प्रदेश के विकास में अपने ढंग से योगदान दे रही हैं। मेरे ख्याल से जो ये योजना जो केंद्र सरकार की है, खासतौर पर मैं उनका जिक्र करूँगा, ये 5 अलग अलग तरह की हैं। एक तो कृषि और कृषि किसान कल्याण की योजनाएं हैं, स्वास्थ्य सुरक्षा की योजनाएं हैं, बुनियादी ढांचे को विकसित करने की योजनाएं हैं, रोजगार और आजीविका से जुड़ी योजनाएं हैं और सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं
2: जी।
3: तो इनमें जो मध्य प्रदेश में काम हो रहा है अलग अलग तरीके से, लोगों को उसका फायदा मिल रहा है। और खास करके जो किसानों की योजनाएं हैं उसके अंदर तो ये है कि केंद्र सरकार के अलावा मध्य प्रदेश सरकार भी अपनी तरफ से एक थोड़ा योगदान उसमें दे रही है, तो किसानों को इसका दोहरा लाभ निश्चित रूप से मिल रहा है।

0: तो मेरे ख्याल से ये मध्य प्रदेश का जो तेज़ी से विकास पिछले कुछ सालों में लगातार देखने को मिल रहा है, उसके पीछे ये है कि जो डबल इंजन की सरकार कहते हैं, तो उसी तरह से ये डबल डिब्बे जो हैं योजना के, मेरे ख्याल से ये आगे बढ़ा रहे हैं मध्य प्रदेश को।
1: अक्षय जी, आपकी दृष्टि में इन वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धियाँ क्या रही हैं?
2: सबसे पहले तो 12 साल में जो हमने परिवर्तन इसमें महसूस किया है, मोदी जी के 12 साल पूर्ण होने पे, कि उनकी जो नीति रही है वो हमेशा से राष्ट्र प्रथम की नीति पे वो चले हैं कि मेरा देश सबसे पहले। और उसको यदि हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें, जैसे कि आज की अपने चर्चा का विषय है, तो मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश ने अपने आप अपने विकास को अपनी अपने प्रगति को सबसे आगे रखते हुए और मोदी जी के कार्यकाल में अपने आप को सबसे तेज़ी से आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। पहले वो शिवराज सिंह जी की सरकार रही और अभी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, इसमें दोनों ही, और जैसे अभी डबल इंजन की सरकार की बात हो रही थी और कई जगह तो लगभग ट्रिपल इंजन की सरकारें हैं। मध्य प्रदेश में ज़्यादातर नगर निगम नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी है, तो कई जगह तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो इस समय तो जनता की भी अपेक्षा है और शासन तंत्र भी उस तरह का है कि आपको विकास की गति जो है वो सबसे अधिक होनी चाहिए। और इसमें से जो सबसे बड़ी उपलब्धि, जैसा कि आपका प्रश्न था कि इन 12 वर्षों में हम जो देख रहे हैं जो हुआ है, पहला तो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट वाला का उल्लेख मैं करना चाहूँगा, केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का, जो बहुत लंबे समय से अपेक्षित था, उसमें बहुत अड़चनें आ रही थी, फिर राज्य अनुकूल राज्य सरकारें हुई, केंद्र की सरकार हुई, तो उन्होंने सबने आपस में बैठ के समझौता किया और उस पर हम आगे बढ़े हैं। हाईवे एक्सपेंशन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तेज़ी से हम उस पर काम किया है, बहुत सारे एक्सप्रेस वेज मध्य प्रदेश में बनने शुरू हो गए हैं और वो केंद्र सरकार के मदद से ही उसमें हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़े हैं। इसके अलावा रेलवे को लेकर काफ़ी बड़ा एक मॉडर्नाइजेशन कैंपेन पूरे देश भर में चला है, इसमें भोपाल से दिल्ली, इंदौर, नागपुर इस तरफ का पूरा जो, और वंदे भारत का बहुत बड़ा नेटवर्क पूरे प्रदेश में शुरू हुआ है, तो इससे नेटवर्किंग में रेलवे नेटवर्क और रोड नेटवर्क, इन दोनों ने बहुत बड़ी उसमें हमें मदद करी है। एविएशन के सेक्टर में भी कई नए हमारे यहाँ एयरपोर्ट्स खुले हैं, उस अभी कई वर्षों में हमने देखा कि मध्य प्रदेश में PM हेली सर्विसेज, हेली पर्यटन सेवा शुरू, जिन्होंने धार्मिक केंद्रों को जोड़ने का प्रयास किया, तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत मध्य प्रदेश के विकास में बहुत अहम भूमिका निभा रही
0: हैं। एक छोटी सी बात और जोड़ना चाहूँगा मैं,
1: जरूर,
0: कि मध्य प्रदेश में रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी और रेल कनेक्टिविटी ये केवल मध्य प्रदेश को नहीं जोड़ती है, क्योंकि मध्य प्रदेश चूंकि देश के बीच में बसा हुआ है तो हम अपने साथ और कई राज्यों को भी जोड़ते हैं, तो मतलब ये जो क्रॉस कनेक्शन है राज्यों का ये भी अपने आप बढ़ता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है मेरे ख्याल से, कि हम केवल अपना ही विकास नहीं कर रहे हैं बल्कि हम अपने साथ दूसरे राज्यों को भी लेके चल रहे हैं,
2: एज ए कैटलिस्ट के रूप में हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हम हृदय प्रदेश में केंद्रित हैं, तो हम एक कैटलिस्ट के रूप में पूरे देश के विकास में कैटलिस्ट के रूप में।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, निश्चित तौर पर हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अजय सर, विकसित भारत 2047 का जो प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है और कहा है कि हम को प्रगति करनी है ताकि हम विकसित हो जाएं 2047 तक, जो अभी तक प्रगति हुई है उस दिशा में, आप उसे कैसे देखते हैं?
0: देखिए, जो 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य बहुत बड़ा लक्ष्य है
1: जी।
0: 2047 का मतलब ये कि भारत को आज़ाद हुए 100 साल हो जाएंगे, तो 100 साल में भारत को दुनिया के 4-5 जो विकसित देश हैं उसकी पंक्ति में लाना, उसका मतलब ये है कि हमारा सामाजिक विकास भी उस तरह से होना चाहिए, हमारा जो है वो आर्थिक विकास भी उस तरह से होना चाहिए, स्वास्थ्य भी है इसके अंदर, राजनीतिक भी है, आर्थिक भी है, तो तमाम इन सारे पहलुओं को लेकर के और उस स्थिति में आए कि हम एक देश सुखी और समृद्ध देश, जिसके बारे में कह सकते हैं कि जहाँ पर रहने की, जीने की जो श्रेष्ठतम सुविधाएं वहाँ पर हों, भारत उस श्रेणी में आए जैसे कि कुछ दुनिया के देश 4-5 इसमें गिने जाते हैं, तो वो बड़ा लक्ष्य है। एकदम ये हासिल करना तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी ये कि उस दिशा में ये धीरे धीरे लगातार देश आगे बढ़ रहा है और उसी को चूँकि बड़ा टारगेट है
1: जी,
0: तो संसाधन भी उतना ही चाहिए,
1: बिल्कुल,
0: तो सरकार के पास जितने संसाधन है उसके हिसाब से जो कुछ हम करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत करने की कोशिश कर रहा है और मध्य प्रदेश का उसमें योगदान है, तो हम उस दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और अगर इसी गति से काम होता रहा तो मेरे ख्याल से वो लक्ष्य प्राप्त करना कोई असंभव नहीं है।
1: सही कह रहे हैं सर। अक्षय सर, युवाओं की भूमिका आप कैसे देखते हैं, कितनी महत्वपूर्ण है इन सब में युवाओं की भूमिका?
2: सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि

0: मोदी जी का सबसे ज़्यादा फोकस उनके ऊपर रहता है, और वो हमारे जो डिविडेंड यूथ डिविडेंड की बात करते हैं
1: जी
0: कई
1: जी
0: बार, जिस तरह की हमारे पास सबसे ज़्यादा विश्व की सबसे ज़्यादा युवा शक्ति हमारे
1: जी
0: पास में
1: जी जी
0: है, तो उसको लेकर ही जो डिजिटल इंडिया का उन्होंने कैंपेन शुरू किया है, मेक इन इंडिया का कैंपेन शुरू किया है, ये युवाओं को केंद्र में रख के किया है, क्योंकि वो युवा शक्ति ही इसके पीछे ऊर्जा है। इसके कारण से हम अपने देश में भी रोजगार भी सृजन कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और उनके उस रोजगार के आधार पर हम अपने देश को एक एक, एक प्रगति के पथ पर, जिस 2047 में एक विकसित राष्ट्र के रूप में हम कल्पना कर रहे हैं भारत की, उसकी
1: जी
0: यदि दिशा में हमें बढ़ना है तो युवाओं को सबसे पहले शक्ति प्रदान करनी पड़ेगी, और उसके लिए जो कदम उठाए गए हैं मोदी सरकार द्वारा, वो निश्चित रूप से उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डिजिटल इंडिया का वाला जो कैंपेन है पूरा, उनको जनधन योजना के माध्यम से रोजगार के उद्योग के अवसर प्रदान करने वाले जो कदम है, निश्चित रूप से उनको सशक्त करें, युवाओं को सशक्त करेंगे, और वो देश के विकास में एक अहम भूमिका निभाएंगे।
1: बिल्कुल, वाकई तो कह सकते हैं कि भारत युवाओं का देश है और युवाओं की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने में। अजय सर, बात करते हैं मध्य प्रदेश की, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनका मध्य प्रदेश पर क्या असर देख रहे हैं आप?
2: देखिए, मैंने आपसे पहले कहा कि चूंकि 11 योजनाएं जो मेरी जानकारी में हैं,
1: जी
2: वो
1: जी।
2: उसका लाभ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से मिल रहा है। अगर हम उसे अगर मोटे तो एक मोटा मोटी बात हम बात देखें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो किसानों को सीधे आर्थिक सहायता सालाना जो है 6,000 रुपये 3 किस्तों में देती है, तो इससे ही मध्य प्रदेश में करीबन 81 लाख से ज़्यादा किसान लाभान्वित हो रहे हैं। किसान की जो आय है वो फसलों पर निर्भर करती है, उसको पहले लगाना पड़ता है, फिर फसल आती बेचता है तो पैसे उसके हाथ में आते हैं, लेकिन इस फसल आने के बीच के दौर में जो है हाथ खर्चे के लिए पैसे कई बार उनको दिक्कत आती है, तो ये जो पैसा है भले ही ये राशि उतनी बड़ी ना हो लेकिन ये भी उनके लिए बहुत मायने रखती है।
1: बिल्कुल,
2: और ख़ास बात यह है कि केंद्र सरकार तो दे ही रही है 4,000 रुपये जो है वो मध्य प्रदेश सरकार भी इसमें ऐड कर रही है, तो जो 6,000 रुपये सरकार दे रही है केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार जो है किसान कल्याण योजना के तहत जो है वो 4,000 रुपये और दे रही है, तो किसान तक 10,000 रुपये सालाना जो है ये नकद राशि पहुँच रही है। तो मेरे ख्याल से किसान, खासकर जो गरीब किसान परिवार छोटे किसान हैं, उनके लिए 10,000 रुपये की राशि बहुत मायने रखती है। इसके अलावा जो फसल बीमा योजना है, अभी तक तो ये था कि पहले फसलें उजड़ जाती थी, ख़त्म हो जाती थी मौसम के कारण, आगजनी के कारण या किसी और कारण से भी, तो किसान तो पूरी तरह बर्बाद हो जाता था, तो कम से कम फसल बीमा योजना से इतनी राहत तो है कि उसके बदले में उसे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। मध्य प्रदेश में भी इससे करीबन 14 लाख से ज़्यादा किसानों को फ़ायदा मिल रहा है, और अभी तक जो जब से ये योजना चल रही है करीब 26 करोड़ से ज़्यादा पैसा बांटा जा चुका है किसानों को, तो ये किसानों की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर एक और बड़ी योजना आयुष्मान भारत वाली है,
1: जी जी,
2: क्योंकि भोजन के बाद सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है स्वास्थ्य,
1: अच्छा, स्वास्थ्य,
2: और ये सभी के लिए है, बड़े बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, तो गरीब परिवारों को जो है वो आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक का इलाज कराना मुफ्त में, ये मेरे ख्याल से इससे बड़ी कोई नेमत हो नहीं सकती है। तो और इसमें अलग 70 के ऊपर तो सरकार ने जो है 5 लाख का टॉपअप भी दे रखा है, तो सभी के लिए है 5 लाख तक, बाकी का जो है वो तो खैर फिर भी एक निश्चित आय वर्ग के लिए है, लेकिन 70 के ऊपर सभी के लिए है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी सौगात है, और ये सरकार की संवेदनशीलता को जाहिर करती है कि भाई लोगों के स्वास्थ्य के प्रति कितनी चिंता है, और उनको मुफ्त में या बहुत कम पैसे में इलाज कैसे उपलब्ध कराया जाए, ये उसका है। इसके अलावा और भी हैं, जैसे हमने प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना है, उसके अंदर जो है वो सरकार बहुत नाम मात्र के प्रीमियम पर जो है वो 18 से 50 साल के लोगों का बीमा करती है,
1: जी जी,
2: और जब भी मुसीबत में आए तो उसको जो है 2 लाख रुपए तक की राशि मिल सकती है। तो ऐसी अलग अलग कई योजनाएं हैं, उसका सीधा सीधा लाभ लोगों को मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से ये जो वेलफेयर स्टेट वाला जो कॉन्सेप्ट है, कल्याणकारी सरकार जो कहते हैं, वो उसको कैसे काम करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये उसका उदाहरण है।
1: बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने सर। अक्षय सर, निवेश और उद्योग की बात करते हैं तो देखा जाए तो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देखते हैं, किस तरह से हम लोग एमएसएमई, स्टार्टअप, इन सब में आगे बढ़ रहे हैं?
0: जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पिछले कई वर्षों में इन्वेस्टर समिट्स का आयोजन किया गया, और इस बार तो रीजनल समिट्स का भी आयोजन, लगभग 7-8 स्थानों पर रीजनल समिट्स का भी, तो समग्र मध्य प्रदेश को उसमें

0: शामिल करते हुए, वो क्षेत्रीय स्तर पे भी हो, संभागीय स्तर पे भी हो, और पूरे मध्य प्रदेश को एक वैश्विक प्लेटफॉर्म पे रखने वाली बात हो, तो उस रूप में मध्य प्रदेश सरकार ने अच्छा काम किया है और उसमें उनको अच्छा प्रतिसाद भी मिला है।
1: जी
0: कई
1: जी
0: बड़े बड़े औद्योगिक घरानों ने मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट भी किया है और केंद्र सरकार ने भी उसमें बहुत अपनी भूमिका निभाई है। एक आपने देखा होगा कि रीवा में एक अल्ट्रा मेगा सोलर
1: सोलर प्लांट
0: पावर
1: लगाया
0: प्लांट
1: गया।
0: लगाया गया है, 750 मेगावाट का लगाया गया है। तो उसमें वो उसकी एशिया के प्रमुख सोलर प्लांट्स में उसकी गिनती होती
1: बिल्कुल
0: है, तो उसने हमें वैश्विक मानचित्र पे अपने मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करने का एक मौका प्रदान किया है। ये सब इस तरह के जो प्रकल्प हैं वो सारे मध्य प्रदेश में जो एमएसएमई सेक्टर भी है और एसएमई सेक्टर है, इन सबको एक ऊर्जा प्रदान कर रहा है, उनको शक्ति प्रदान कर रहा है, और सरकार ने जितनी अपनी योजनाओं में उनको सहूलियत देने का प्रयास किया है, अपने उनको जमीन आवंटन के लिए है, उनको बिजली आवंटन के लिए है, पानी है, और कुछ सब्सिडीज़ हैं,
1: बिल्कुल
0: तरह तरह की सब्सिडीज़ नए उद्योग लगाने के लिए दी जाती है, फिर वो हर क्षेत्र में हो, सेमीकंडक्टर में हो या उसमें फ्लोरिकल्चर में हो या दूसरे किसी उद्योग में लगाना चाहते हो, युवाओं को उसके लिए प्रोत्साहित किया है। तो एक ऐसा वातावरण बनाने का मध्य प्रदेश सरकार ने प्रयास किया है कि इसमें मध्य प्रदेश के उद्योगों को, देश के और विदेश के उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में आके उद्योग लगाने में सहूलियत मिले।
1: बिल्कुल कह सकते हैं कि औद्योगिक विकास के अनुकूल पूरा वातावरण प्रदेश में बनाया गया है, ताकि जो बाहर उद्योगपति हैं वो हमारे यहाँ आए तो उनको हर तरह की फैसिलिटीज दी जा सके। सर, डिजिटल इंडिया अभियान का देखा जाए तो मध्य प्रदेश पे वोकिल सर क्या असर पड़ रहा है?
2: देखिए, डिजिटल अभियान का सबसे बड़ा दो उदाहरण यही है कि डिजिटल ट्रांजेक्शन जिस तरह तेज़ी से बढ़ा है, मेरे ख्याल से दुनिया में शायद सबसे नंबर वन पर भारत पहुंच गया है, जिसमें इतने अभी शायद अभी पढ़ रहा था मैं कि 30 अरब करीबन ट्रांजेक्शन्स हुए। मतलब ये है कि एक अनपढ़ आदमी भी जो
1: बिल्कुल
2: मोबाइल ऑपरेट कर लेता है और वो डिजिटल ट्रांजेक्शन से जो है पैसा पैसे का लेन देन कर रहा है, तो मेरे ख्याल से ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि जिस देश में साक्षरता अभी 100% नहीं है, जहाँ
1: बिल्कुल
2: पे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम है, वहाँ अगर लोग इतने मॉडर्न तरीके से, जो शायद अमेरिका में भी नहीं होता है आज की तारीख में, और इस पर जा रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से सरकार की भी सफलता है, सरकार की संकल्प शक्ति की सफलता है कि हमने जो है उसको लागू लागू करके दिखाया और वो अब अमल में आ रहा है। दुनिया इसको लेकर के चकित है कि भारत जैसे देश में इतने बड़े पैमाने पर ट्रांजेक्शन के कैश ट्रांजेक्शन घट गया। उससे उससे एक सबसे बड़ा फायदा हुआ कि रिजर्व बैंक को नोट भी कम छापने पड़ रहे हैं, तो ये एक बड़ा फायदा ये भी है। और दूसरी बात ये है कि हम जिस आधुनिक जमाने में जा रहे हैं, वो जब AI का ज़माना आ रहा है, शुरू भी हो गया है, तो उस तरीके से अगर भारत उसी लाइन पर आगे बढ़ रहा है तो मेरे ख्याल से हम उस स्थिति का भी मुकाबला कर पाएंगे। एक तरह से ये एजुकेशन है, एक तरह का डिजिटल एजुकेशन की तरह मैं इसको देखता हूँ कि एक शुरुआत है ये, कि आगे और जब जटिल चीज़ें सामने आएंगी तो लोग उसको भी धीरे धीरे अपनाएंगे।
1: बिल्कुल, तो ये कह सकते हैं हाल ही में खबर आई थी कि मई के महीने में सबसे ज़्यादा अभी तक UPI के ट्रांजैक्शंस हुए हैं, तो एक
2: बिल्कुल
1: नया रिकॉर्ड बना है
2: बिल्कुल
1: अपने आप
2: बिल्कुल
1: में। डिजिटल इंडिया में मध्य प्रदेश तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अक्षत सर, देखा जाए तो सामाजिक जो कल्याण की योजनाएं हैं उनमें कैसे देखते हैं कि उनका जो केंद्र सरकार की सामाजिक कल्याण की योजनाएं हैं उन किस तरह से मध्य प्रदेश में फॉलो की जा रही हैं?
0: उसको पूरी तरह से उसको मध्य प्रदेश में उनको लागू किया गया है। हम अगर जनजाति समाज को लेकर ही देखें तो राष्ट्रीय स्तर पे प्रधानमंत्री ने ही शहडोल से इसका शुभारंभ किया था, सिकल सेल एनीमिया
1: एनीमिया के
0: उन्मूलन
1: लिए।
0: मिशन का उद्घाटन उन्होंने किया था, और जिसमें कि ग्रामीण अंचलों में जो सैकड़ों कई लोग हैं जिनको क्या वंशानुगत इस तरह की बीमारी होती थी, उससे मुक्ति दिलाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया था और उसमें बहुत सफलता भी मिली है। हाल ही में हमने राज्यपाल जी को भी उसमें
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: सक्रियता से भाग लेते हुए देखा। तो ये एक बहुत बड़ा अभियान केंद्र के स्तर पे और राज्य सरकार के स्तर पे चलाया गया, जिसका कि मैदानी स्तर पे हमने उसका पालन होते हुए देखा, उसके परिणाम भी आते हुए देखे।
1: जी
0: कई तरह की जिस तरह की उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला योजना के माध्यम से घर घर में जो पहले चूल्हे जलते थे उसके द्वारा गैस के कनेक्शन मिलने लगे हैं, तो अब उससे धुएं से होने वाली बीमारियों से निजात मिली है। प्रदूषण से भी निजात मिली है और एक एक आत्मविश्वास का भाव जो है ग्रामीण क्षेत्रों में और जनता के बीच में आया है इस योजना के माध्यम से भी। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से बहुत जो गरीब व्यक्ति था वो भी अपने घर का सपना साकार

0: होते हुए देख रहा है। तो ये सब योजनाओं के माध्यम से समाज में एक जो विश्वास का वातावरण निर्मित हुआ है उसने भारत को एक नई मजबूती प्रदान करी है, और जिस तरह की मजबूत बुनियाद हमें विकसित राष्ट्र के लिए चाहिए उस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: बिल्कुल सही कहा सर। अजय सर, उपलब्धियों पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, साथ ही उपलब्धियां जब आती हैं तब चुनौतियां भी आती हैं, और आगे किन किन क्षेत्रों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है?
2: देखिए, कुछ बुनियादी बातें हैं जिसमें काम तो हो रहा है लेकिन अभी और काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि पीने का पानी, हालांकि प्रधानमंत्री जो है वो जल मिशन के तहत काफ़ी काम हुआ है और काम हो भी रहा है, लेकिन अभी भी ये बड़ी चुनौती है कि हम, जैसे कि कभी अटल जी ने कहा था कि हर हर गांव के हर व्यक्ति को साफ पानी उपलब्ध कराना हमारे लिए बड़ी चुनौती है, तो वो चुनौती अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो जाहिर है कि उसमें काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, काम हो रहा है लेकिन उसको और तेज़ गति से करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगले 25 सालों के अंदर मैं भारत में लगभग हर घर हर व्यक्ति को साफ पानी हर परिवार को मिले, ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि आपको न सिर्फ उस तरह के जो है वो जल संचय भी करना पड़ेगा और जल वितरण की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, तो उस दृष्टि से काम होना है। दूसरी बात आवास वाली बात है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को आवास तो सरकार दिलाई रही है शहरी और ग्रामीणों को, लेकिन अभी भी बहुत से परिवार ऐसे हैं जो इससे वंचित हैं, तो मेरे ख्याल से उनको भी सरकार उसको लेकर आएगी और उनको भी ध्यान लिया जाएगा। और तीसरा मुद्दा रोजगार का है, तो रोजगार के लिए भी सरकार जैसे वो जो स्व सहायता समूह वगैरह इस तरह की योजनाएं लेकर के आ रही है ताकि खासकर महिलाओं के लिए
1: हर जिलों में रोजगार मेले भी आयोजित
2: वो भी है। दूसरे वो अंत्योदय जो है रसोई योजना है, उस तरह के तहत हर 5 रुपए में भरपेट थाली भोजन लोगों को तो उपलब्ध कराया जा रहा है, वो भी है। तो काम तो काफ़ी हो रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि चुनौतियाँ तो हमेशा रहेंगी, जैसे काम जैसी उपलब्धियाँ बढ़ेंगी तो नई चुनौतियाँ भी सामने आएंगी।
1: चुनौतियाँ तो आएंगी, उपलब्धियाँ आ रही हैं, क्योंकि तो चुनौतियों का सामना करने के लिए देश और प्रदेश लगातार तैयार हैं। अक्षय सर, देखा जाए तो मध्य प्रदेश विकसित भारत के लक्ष्य में अपना और किस तरह से योगदान दे सकता है?
0: जैसा कि शुरुआत में हमने बातचीत करी कि मध्य प्रदेश जो है वो हृदय प्रदेश है हमारे देश का, और सभी जो कनेक्टिविटी है के माध्यम से भी, एक लॉजिस्टिक हब के माध्यम से भी हम जो है भारत के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हम इसके लिए जो औद्योगिक संरचना, औद्योगिक विकास की आवश्यकता है, उस दिशा में हम आगे तो बढ़े हैं लेकिन अभी उसमें बहुत सारा काम करने की
1: जरूरत
0: आवश्यकता है। उसको और जिस तरह के महाराष्ट्र में या गुजरात में जिस तरह का इन्वेस्टमेंट पहुंचता है, वैसा एक हमें उसके लिए कुछ हमारे पास में वो भी हैं, क्योंकि हम लैंड लॉक्ड स्टेट हैं, वो बाकी सारे स्टेट्स के पास में समुद्र का जो किनारा है वो उनको व्यापार करने के लिए सहूलियत प्रदान करता है, लेकिन मध्य प्रदेश को हमें अपनी इसी जो हमारी पोजीशन है, हमारी जो अपने आप को लॉजिस्टिक हब के रूप में डेवलप करने की जो एक प्रतिबद्धता है या हमारी जो एक नेचुरल पोजीशन हमें मिली हुई है, उसको हमें आगे बढ़ाएंगे तो हम पूरे देश को एक कैटलिस्ट के रूप में विकास की गति पर आगे बढ़ाने में प्रयास कर सकते हैं। और जैसा अभी मध्य प्रदेश के सरकार ने भी अपने एक और वो दिया था, स्लोगन दिया था, विरासत भी विकास भी, तो हम विरासत को सहेजते हुए विकास की राह में आगे बढ़ेंगे। ये जो सरकार की प्रतिबद्धता है ये एक बहुत महत्वपूर्ण है कि हम पूर्व में हमारे जितने जो हमारे मानबिंद ऐतिहासिक या सांस्कृतिक मानबिंद रहे हैं उनको सहेजते हुए हम विकास के पथ पे आगे बढ़ेंगे, जिसमें हमने देखा कि हमारे जो पिछले दिनों कल्चरल सांस्कृतिक केंद्र है या हमारे धार्मिक केंद्र है, महाकाल लोक है या राम राजा सरकार का लोक है, जैसे अनेक धार्मिक स्थानों को भी पर्यटन के रूप में बहुत बड़े स्तर पर स्थापित किया गया, और अब देखिए कितना उज्जैन में, महाकाल में कितना बड़े संख्या में पर्यटक वहाँ पर पहुँचते हैं। तो इस तरह की धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर भी हम विकास की गति को बढ़ा सकते हैं और उससे पूरा प्रदेश को फायदा पहुँचता है।
1: बिल्कुल, तो पर्यटन जो है मध्य प्रदेश को विकसित बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
0: जी।
1: अजय सर, जो युवा हैं 2047 तक भारत को विकसित होना है, वो अपना किस तरह से योगदान दे सकते हैं, आपका संदेश?
2: देखिए, युवाओं का तो क्या है कि अलग अलग तरीके से, बल्कि दे ही रहे हैं, बल्कि मैं दे सकते हैं क्या, बल्कि अलग अलग तरीके से दे ही रहे हैं, चाहे वो उद्योगों की दृष्टि से हो, खेती की दृष्टि से हो, शिक्षा की दृष्टि से हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से हो। तो ये तो अभी आज की तारीख में भारत में करीब 35 करोड़ युवा हैं।
1: जी जी।
2: हालांकि हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 20 साल बाद ये अधेड़ हो जाएंगे ये सब।
1: जी जी।
2: तो वो भी एक बड़ी चुनौती है, जो आज जैसे जापान जैसे देश इसका सामना कर रहे हैं, हमें उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा।

0: जाएगा।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
0: तो ये दोहरी चुनौती है। अभी जो अलग अलग तरीके से लोग योगदान दे रहे हैं भारत को, अगर इतनी जैसे अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति आज की है, उसमें भी रिजर्व बैंक के ताज़ा आंकड़े आए कि हमारी आर्थिक वृद्धि दर तुलनात्मक रूप से काफ़ी बेहतर रही है,
2: 7.8%।
0: हाँ, तो वो इसका मतलब ये है कि इन सब चीज़ों का भी हमने मुश्किलों को झेला है और अपनी जो रफ्तार को आर्थिक विकास की बनाए रखा है। तो और ये युवाओं के दम पर ही संभव है, बगैर उसके तो हो नहीं सकता है। तो ये समस्याएं तो हैं उसके, लेकिन फिर भी ये है कि मेरे ख्याल से युवा अपने अलग तरीके से योगदान दे रहे हैं, चाहे वो आर्थिक विकास दृष्टि से हो, चाहे वो व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से हो, खेलों की दृष्टि से हो, खेल में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, विज्ञान की दृष्टि से आगे हो, या और भी तमाम जो है अलग अलग क्षेत्र जितने भी हैं उसके अंदर लोग अपने ढंग से योगदान दे रहे हैं। और भारत दुनिया के अंदर एक बड़ी चुनौती दूसरे देशों के लिए बना हुआ है, ये हमारे लिए संतोष की बात है।
1: जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अक्षय सर, आपका क्या संदेश है?
2: संदेश मतलब जिस तरह के बताया अजय जी ने कि युवा अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन आने वाले जो समय में जो उम्र का असर उसमें आएगा उसको लेकर हमें आज से योजना बनानी पड़ेगी। तो उस दिशा में सभी के प्रयास जारी भी हैं। हम भारत का युवा बहुत सक्षम है, प्रतिभावान है। आज ही हमने अखबार में भी पढ़ा कि अमेरिका में जो सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हैं उसमें भारतीय सबसे शीर्ष पर है। 96 यूनिकॉर्न्स जो हैं अमेरिका में वो भारत के हैं। तो ये अमेरिका जैसे देश में जाकर भी भारत के युवा जो हैं अपना अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकते हैं, तो वो भारत में भी पूरी तरह से वो मौजूद हैं। भारत में भी वो अपनी प्रतिभा का जो है वहाँ यहाँ का पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत को उसी का लाभ मिल रहा है जो आज जिस स्थिति में 2014 में जो 11वीं अर्थव्यवस्था थी वैश्विक, आज वो लगभग प्रथम पाँच में भारतीय अर्थव्यवस्था आती है। तो उसमें सबसे बड़ा योगदान युवाओं का है और उनको समय समय पर उनको प्रोत्साहित करना, उनके लिए योजनाएँ लाना और उनके साथ में खड़े होना, मतलब उनको लगना चाहिए। कई बार चुनौतियां भी आती हैं, अभी जैसे हाल ही में हमने देखा कि मेडिकल की परीक्षाओं को लेकर जो घटनाएं हुई, पेपर आउट हो गए, तो ऐसी घटनाओं से उनका उत्साह नीचे जाता है। तो उसको लेकर भी सरकार के सामने ये बड़ी चुनौती है कि उसको लेकर भी सावधानी बरती जाए जिससे कि वो हमारा युवा जो है हतोत्साहित ना हो और भारत को विकसित बनाने की दिशा में वो एक मजबूत मानसिक आधार पर भी एक मजबूत स्तंभ भारत का बने।
1: बिल्कुल कह सकते हैं डिटरमिन्ड रहे, फोकस्ड।
2: बिल्कुल।
1: तो श्रोताओं, आज की चर्चा से ये स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले हैं। विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में मध्य प्रदेश भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और आधारभूत संरचना, कृषि उद्योग, डिजिटल सेवाओं और सामाजिक विकास के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। अजय सर और अक्षत सर, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपने विचार व्यक्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।
0: धन्यवाद।
2: नमस्कार।
1: और इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।
3: सुर्खियों, अभी आप सुन रहे थे प्रदेश की सुर्खियों में, इसमें विषय था एनडीए सरकार के 12 साल, विकसित भारत की ओर मध्य प्रदेश के बढ़ते कदम। प्रस्तुति थी प्रादेशिक समाचार एकांश की। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ थे वरिष्ठ पत्रकार अजय बोकिल और अक्षत शर्मा, वार्ताकार थी दीपा सिंह। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

सुनिए आकाशवाणी भोपाल से ग्रामीण श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम ग्राम सभा, प्रतिदिन शाम 7:20 से।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है शिवपुरी जिले की चिट्ठी। आलेख रंजीत गुप्ता, वाचन स्वर दीपा सिंह। शिवपुरी जिले में इस समय लोगों को मानसून का इंतजार है। तेज धूप और उमस भरी गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। दूसरी तरफ किसान खरीफ सीजन की तैयारियों में जुटे हुए हैं, अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं ताकि सोयाबीन, मूंगफली और उड़द जैसी फसलों की बोनी शुरू की जा सके। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने खाद वितरण की व्यवस्था को और बेहतर बनाया है। खरीफ सीजन में बढ़ती मांग को देखते हुए जिले के डबल लॉ खाद भंडारण केंद्र अब शनिवार और रविवार को भी खुले रहेंगे। इससे किसानों को समय पर यूरिया, डीएपी और अन्य उर्वरक उपलब्ध हो सकेंगे और बोनी का काम प्रभावित नहीं होगा। जिले में अवैध कॉलोनियों और अनाधिकृत भूखंडों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए जिला स्तरीय कॉलोनी सेल का गठन किया गया है। ये सेल कॉलोनाइजर लाइसेंस, कॉलोनी विकास की अनुमति और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय का काम करेगी ताकि शहरों का विकास व्यवस्थित तरीके से हो सके। इस नई व्यवस्था की जिम्मेदारी अपर कलेक्टर को सौंपी गई है। सेल में राजस्व, नगरीय निकाय, पीएचई, बिजली वितरण कंपनी और पंजीयन विभाग के अधिकारियों को शामिल किया गया है। इसी बीच जिला मुख्यालय पर समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर जन परामर्श बैठक आयोजित की गई। बैठक में उच्च स्तरीय समिति की सदस्य डॉ. शोभा पैठणकर ने यूसीसी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की और लोगों से सुझाव आमंत्रित किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर से मिले सुझावों के आधार पर ही अंतिम प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। जन कल्याण की दिशा में खनियाधाना में आयोजित 3 दिवसीय शिविर भी चर्चा में रहा। इस दौरान विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 12,599 आवेदन प्राप्त हुए, जिनका निराकरण करते हुए लोगों को राहत प्रदान की गई। साथ ही आमजन को शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी गई। वहीं युवाओं और खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी सौगात मिली है। शिवपुरी के माधवराव सिंधिया जिला खेल परिसर में प्रदेश का पहला जिला स्तरीय फिट इंडिया क्लब शुरू किया गया है। यहाँ आधुनिक जिम, कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एरोबिक्स, न्यूट्रिशन सपोर्ट जैसी सुविधाएं किफायती दरों पर उपलब्ध कराई

0: जा रही हैं। मॉनसून की तैयारियों के बीच पोहरी में संभावित बाढ़ और वर्षाकालीन आपदाओं को लेकर अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। अधिकारियों को जर्जर भवनों में शैक्षणिक गतिविधियां न चलाने और नदी नालों तथा जल भराव वाले क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कलेक्टर अर्पित वर्मा ने जिले के उद्यमियों के साथ बैठक की। बैठक में एमएसएमई उद्योगों के विस्तार और उद्योगों को आने वाली समस्याओं पर चर्चा हुई। कलेक्टर ने भरोसा दिलाया कि उद्योगों के संचालन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए प्रशासन हर संभव सहयोग करेगा। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य आवासीय योजनाओं की समीक्षा भी की गई। कलेक्टर ने लंबित आवासों को जल्द पूरा करने वाली सभी किश्तों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और पंचायत स्तर पर पात्र हितग्राहियों की सूची सार्वजनिक करने के निर्देश दिए। सामाजिक सरोकारों की बात करें तो जिले में 35वीं एनसीसी बटालियन के शिविर में सीनियर कैडेट्स ने रक्तदान किया। इस दौरान कुल 15 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। दूसरी ओर मंगलम परिसर में आयोजित 7 दिवसीय विशेष शिविर में 215 दिव्यांगजनों को जांच के बाद कृत्रिम हाथ पैर और अन्य सहायक उपकरण वितरित किए गए। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए आईटीआई केंद्र में युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 10 निजी कंपनियों ने हिस्सा लिया और 136 युवाओं ने पंजीयन कराया। इनमें से 96 युवाओं का चयन कर उन्हें मौके पर ही ऑफर लेटर प्रदान किए गए। जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए पीएम जनवन और धरती आभा अभियान के तहत विशेष शिविर लगाए गए। इन शिविरों के माध्यम से जनजातीय समुदाय के लोगों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने, उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया। जन समस्याओं के निराकरण के लिए जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने खोड़ में जन चौपाल लगाई। उन्होंने बिजली, राजस्व, कृषि, स्वास्थ्य, पेंशन और खाद्यान्न से जुड़ी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। और आखिर में बात योग की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शिवपुरी जिले में उत्साह का माहौल देखने को मिला। जिला मुख्यालय के पोलो ग्राउंड सहित विभिन्न स्थानों पर सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और लोगों ने भाग लेकर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी शिवपुरी जिले की चिट्ठी। आलेख रंजीत गुप्ता का था, वाचन था दीपा सिंह का और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। ये आकाशवाणी है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है महिलाओं के लिए कार्यक्रम महिला संसार।

स्वागत है हमारी सभी सखियों का आपके अपने कार्यक्रम महिला संसार में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त नेहा जैन। आप सभी को मेरा प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार। सखियों, रिश्ते जोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन समझदारी, धैर्य और संवाद से दिलों के बीच पुल बनाना, यानी बातों से बिगड़ी बात बनाना, नाराजगी को मुस्कान में बदल देना और अलग अलग विचारों के बीच एक पुल बन जाना, यह हुनर अक्सर महिलाओं में सहज रूप से दिखाई देता है। सखियों, यही गुण आज दुनिया भर में महिलाओं को कूटनीति के क्षेत्र में एक मजबूत पहचान दिला रहा है। कूटनीति का अर्थ केवल दो देशों के बीच समझौते करवाना ही नहीं, बल्कि विश्वास और संवाद बनाए रखना भी है। साथ ही मतभेदों के बीच समाधान तलाशना भी है, जिससे देशों के बीच सहयोग, शांति और विकास के नए रास्ते खुलते हैं। सखियों, यह वही गुण है जिन्हें महिलाएं अपने जीवन में अक्सर निभाती हैं। शायद इसी वजह से आज पूरी दुनिया में महिलाएं कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सखियों, आज कूटनीति में महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हम भारतीय राजनीतिक के महिलाओं को भी याद करते हैं, जिन्होंने दुनिया को भारतीय महिला नेतृत्व की शक्ति से परिचित कराया है। सखियों, रिश्तों को जोड़ने की कला से लेकर देशों को जोड़ने की जिम्मेदारी तक महिलाएं हर भूमिका में बदलाव की एक नई सोच साथ लाती हैं, क्योंकि जब महिलाओं को अवसर मिलता है तो वे इतिहास का केवल हिस्सा नहीं बनती, बल्कि इतिहास को रचती हैं। और अब कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं हमारे आज के

0: शीर्षक गीत शहर पर आधारित ये गीत।
1: दीवाना।
2: एक दीवाना शहर में।
1: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।
2: दो दीवाने शहर में।

सखियों आप सुन रही हैं कार्यक्रम महिला संसार। सखियों हमारी बिजी लाइफ में जब कभी हम कहीं घूमने जाने का प्लान बनाते हैं तो मन खुशी से झूम उठता है और फिर शुरू होती है तैयारियों की लंबी लिस्ट। कपड़े पैक करना, ज़रूरी सामान रखना, साथ में घर के काम निपटाना और इन सब के बीच में खुद को भी ट्रिप के लिए तैयार करना। सखियों कई बार हम अपनी केयर के लिए ज़रूरी चीज़ों को आखिरी समय पर बैग में डालते हैं या फिर ज़रूरी सामान को भूल जाते हैं। सखियों जब बात हमारी पर्सनल केयर और मेकअप की हो तो हम थोड़ी सी समझदारी से अपनी ट्रिप को फ्रेश और खूबसूरत बना सकते हैं अपने ट्रेवल फ्रेंडली मेकअप किट से। हम सफ़र में मेकअप का क्या सामान ले जाएँ क्या ना ले जाएँ, इस सोच के चलते

सकते, हम कई बार कुछ ऐसा सामान भी रख लेते हैं जो पूरे समय बैग में ही रखा रहता है। सखियो, यात्रा के दौरान समझदारी इसी में है कि हम ऐसे प्रोडक्ट चुने जो कम जगह ले और ज्यादा काम आए, यानी कोशिश करें कि मल्टी यूज प्रोडक्ट्स चुने, जैसे ऐसा टिंट जो होठों और गालों दोनों पर यूज हो सके। ट्रेवल साइज प्रोडक्ट्स का यूज करें, यानी बड़े पैक की जगह छोटे पैक ज्यादा सुविधाजनक रहते हैं। साथ ही मौसम को ध्यान में रखकर अपना मेकअप किट पैक करें, जैसे गर्मी या बारिश में हल्के और लंबे समय तक टिकने वाले प्रोडक्ट्स ज्यादा यूजफुल होते हैं। साथ ही लिप बाम, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, छोटा मिरर, काजल, कॉम्पैक्ट पाउडर भी रखें। सखियों, सफर में मेकअप का उद्देश्य खुद को सहज और आत्मविश्वास से भरपूर होना महसूस कराना है, क्योंकि सफर की असली खूबसूरती हल्के बैग और खुशहाल मन के साथ महसूस होती है। तो अब आप जब भी कभी कहीं घूमने जाएं, तो अपने मेकअप किट को स्मार्ट तरीके से पैक करें और नई मंजिलों को, नए अनुभवों को जिए, और इस खुशनुमा माहौल को और भी रंगीन बनाते हैं। और

सहज और आत्मविश्वास से भरपूर होना महसूस कराना है, क्योंकि सफ़र की असली खूबसूरती हल्के बैग और खुशहाल मन के साथ महसूस होती है। तो अब आप जब भी कभी कहीं घूमने जाएं, तो अपने मेकअप किट को स्मार्ट तरीके से पैक करें और नई मंजिलों को, नए अनुभवों को जिएं। और इस खुशनुमा माहौल को और भी रंगीन बनाते हैं और सुनते हैं शहर की चंचल अदाओं और मस्ती भरे अंदाज को बयां करता ये गीत।

सखियों, हर शहर अपने अंदर हजारों कहानियां समेटे रहता है। इनमें कहीं संघर्ष है तो कहीं सपने, कहीं प्यार है तो कहीं तन्हाई। कहते हैं शहर सपनों को पंख देते हैं, लेकिन कभी कभी यही शहर रिश्तों और भावनाओं को पत्थर सा भी बना देते हैं। और अब शहर

ऊंची इमारतों और जगमगाती रोशनियों के बीच शहर हर दिन नई उम्मीदें जगाता है, जो सपनों के पीछे भागते हुए गुजरता है, और रातें कई बार सोचते सोचते और जब सपनों की तलाश में इंसान खुद से ही सवाल करने लगे, तब मन में आए एहसास शब्दों का रूप ले लेते हैं। उन्हीं एहसासों से सजा है हमारा अगला गीत।

सखियो, हर शहर की पहचान उसकी रौनक, उसके लोग और उनकी बातों से होती है। यहाँ खबरें सिर्फ अखबारों में नहीं, लोगों की बातों में भी चलती हैं। कोई किस्सा हो, कोई मुलाकात हो या कोई नई बात, देखते ही देखते पूरे शहर में चर्चा बन जाती है।

एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, एक कद्दूकस की हुई गाजर, हरा धनिया, नमक स्वादानुसार, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च। इसे बनाने के लिए सबसे पहले भीगी हुई दाल को पीसकर घोल तैयार करें। अब इसमें सभी सब्जियां, नमक और अन्य सारी सामग्री मिला लें। तवे को गर्म करके हल्का सा तेल लगाएं और चीले की तरह फैलाकर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेकें और गर्मा गर्म हरी चटनी के साथ परोसें। आप इसे नाश्ते में, टिफ़िन में या शाम के स्नैक के रूप में भी ले सकते हैं। कम तेल, भरपूर प्रोटीन और लाजवाब स्वाद के साथ सेहत भी है इस चीले में। और अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अनुमति दीजिए आपकी रेडियो दोस्त नेहा जैन को नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं के लिए कार्यक्रम महिला संसार, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सरवर हुसैन का सारंगी वादन, राग है नट भैरव।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला। इसमें आज आपने सुना सरवर हुसैन का सारंगी वादन, राग था नट भैरव। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को बहादुरी, समाज सेवा, खेल, कला एवं विज्ञान जैसे उत्कृष्ट क्षेत्रों में उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल में राज्य स्तरीय साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश पुलिस के इस अभियान का उद्देश्य आमजन, विद्यार्थियों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को साइबर ठगी और ऑनलाइन धोखाधड़ी के प्रति जागरूक करना है। राज्य वित्त आयोग का दल आज भोपाल संभाग के दौरे के दौरान सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद संभाग आयुक्त कार्यालय में समीक्षात्मक बैठक में निकायों की वित्तीय मजबूती, स्वच्छता पेयजल, राजस्व स्रोतों में वृद्धि के उपायों पर चर्चा होगी। प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का ड्राफ्ट 5 जुलाई तक तैयार हो जाएगा। यूसीसी पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में बनी कमेटी ये ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद विधानसभा सत्र में पेश करने की तैयारी है। प्रदेश में मॉनसून अगले 2 से 3 दिनों में बालाघाट, छिंदवाड़ा और पांडुना के रास्ते राज्य में दाखिल हो जाएगा। आज प्रदेश के 42 जिलों में तेज आंधी और बारिश की संभावना है। और महिला टी20 वर्ल्ड कप में आज मेजबान इंग्लैंड का सामना वेस्टइंडीज से होगा और यह मुकाबला जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: श्रोताओं नमस्कार, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपका अपना ये कार्यक्रम जुड़ा होता है आपकी फरमाइश से और आप अपनी फरमाइश हम तक पहुंचाते हैं टेलीफोन के माध्यम से। हमारा नंबर 2660902 2660902 और भोपाल का स्टडी कोड 0755। हेलो।
2: हाँ नमस्ते मैडम जी।
1: जी नमस्कार, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
2: हाँ ध्रुवराम साहू बोल रहा हूँ, कन्या दमो विकासखंड बिरसा जिला बालाघाट मध्य प्रदेश से।
1: जी साहू जी कैसे हैं?
2: बहुत अच्छे हैं।
1: और क्या चल रहा है इस समय?
2: बात खेती किसानी तैयारी चल रही है अभी।
1: हाँ मौसम अब तैयारी वाला आ गया है।
2: हाँ बिल्कुल, मौसम बादल वाला बना हुआ है और बूंदाबांदी हल्की बारिश हो रही है अभी। हाँ
1: तो ये बताइए कि कौन सा गीत आज के कार्यक्रम में आप सुनना चाहेंगे?
2: कार्यक्रम में फिल्म का नाम है तुमसा नहीं देखा और गीत के बोल है भीड़ में तरहाई में, ये वाला गीत सुनवा दीजिए। बहुत दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है।
1: जी हाँ,
2: कम डेढ़ साल के बाद
1: बहुत लंबे समय के बाद बात हो रही है, पर ये कितनी अच्छी बात है कि बात हो रही है और हम आप तक पहुँचा रहे हैं आपकी पसंद का गीत। आनंद लीजिएगा।
2: धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम।
1: हाँ, मेरा नमस्कार, मुबारक बुलावा सीबरी एमपी चंदनपुरा से। मुबारक
0: कौन बोल रहे हैं?
1: खान।
0: मुबारक खान, क्या बात है
1: हाँ,
0: खान साहब, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: 3 महीने के बाद है मैंने फोन लगाया।
0: 3 महीने के बाद लगा, तो ये बताइए कि इस बात की

0: खुशी है कि 3 महीने बाद लगा, या ये नाराजगी है कि 3 महीने तक
1: नहीं,
0: लगा
1: खुशी
0: नहीं?
1: तो है मैडम, देखो लग जाता है तो खुशी हो रही है, नहीं लगा तो नाराजगी।
0: मतलब आज इतने दिन की नाराजगी दूर हो गई आपकी?
1: 3 महीने हो गए, 3 महीने बाद में ट्राई तो कर रहे थे,
0: जी,
1: 15 दिन के बाद में फिर वो नहीं लगा, तो अब लग जाता नहीं लगा तो नहीं लगता, वो तो
0: बिल्कुल
1: क्या
0: सही बात है।
1: कोई दिक्कत नहीं। पता देखो मेरा हजारों आदमी जुड़े हैं इससे, अपने मतलब दिए जा रहे में, किसी का हो गया काम तो हो जाता है, उसमें नहीं होता नहीं लग पा।
0: बिल्कुल सही बात है। तो बताइए, आज के इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: खुदा गवाह का सुनवा देना कोई सा गाना,
0: खुदा गवाह का कौन सा गाना?
1: वो गाना आना है उसमें, वो का नाम भूलिया मैं उसका, और
0: पूरे
1: उसमें पूरे गाने अच्छे हैं उसमें तो।
0: गाने अच्छे हैं, तो कोई सा भी गीत सुनवा दिया जाए। अपनी पसंद का गीत सुनिए और आनंद
1: हाँ ठीक
0: लीजिए।
1: है मैडम, नमस्कार।

0: हेलो,
1: जय माता दी।
0: नमस्कार। फोन
1: मेरा
0: करें
1: नाम है पूरन वर्मा और मैं आपसे बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंजमहल बुगला।
0: कैसे हैं आप?
1: बस मैडम बढ़िया हूँ, आप सुनाओ।
0: हम भी एकदम बढ़िया हैं। क्या चल रहा है इस समय?
1: बस मैडम आपका कार्यक्रम सुनते रहते हैं और अभी घर पे हैं, धूप है अच्छी खासी है। आप उधर बताओ मौसम कैसा हो रहा है?
0: हमारे यहाँ तो धूप और बादल दोनों थोड़ी आँख में चोली खेल रहे हैं, और कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी बौछारें कह लीजिए या जरा सी बूंदाबांदी हो जाती है। बाकी तो मौसम अभी गर्म है।
1: हाँ जी, इधर भी ऐसा ही हो रहा मौसम, बूंदाबांदी कल परसों हुई थी, पर अचानक फिर बादल हो जाते हैं, कभी धूप हो जाती है ज्यादा।
0: सही बात है। सब अपनी पूरी एक प्रक्रिया से गुजर कर ही परिणाम तक आते हैं, तो बादल भी लुका छिपी खेलेंगे, थोड़ा सताएंगे, थोड़ा हैरान करेंगे, उसके बाद बरसेंगे।
1: जी मैडम,
0: बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे कार्यक्रम में?
1: जी मैडम फिल्म का नाम रहेगा घर वाली और बाहर वाली,
0: गीत के बोल
1: और उसमें गीत के बोल है नेपाल की ठंडी हवा।
0: आपकी पसंद का गीत आप तक पहुंच रहा है। धन्यवाद।
1: थैंक यू मैडम।

0: सही है, हम एकदम प्रसन्न
1: जी
0: हैं, बढ़िया हैं और आपके साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। तो
1: जी
0: मौसम क्या कह रहा है इस समय?
1: मौसम ये कह रहा है कि 19 तारीख में तो हमारे क्षेत्र में बढ़िया बारिश हुई,
0: अच्छा।
1: और 19 से आज तक नहीं है, और अब बदल आना शुरू हो गए, काले काले बदल आ जाते हैं 19 तारीख से और आज तक, और शाम को 6-7 बजे साफ मौसम हो जाता है,
0: अच्छा।
1: और बढ़िया अब बस बदल आना शुरू हो गए, ऐसा बारिश
0: हाँ,
1: होगी लेकिन शाम शाम तक साफ हो जाता
0: साफ हो जाते। हाँ, वो भी
1: है,
0: थोड़े से इठलाते
1: इंतजार।
0: हैं थोड़े से, तो वो माहौल
1: जी
0: बना रहे हैं और ये बता रहे हैं कि बस अब बारिश होने ही वाली है।
1: जी जी सही है बहन जी, इंतजार भी है, सभी लोगों का इंतजार है कि बारिश कब होए, कब हम फसल बोएं,
0: बिल्कुल सही
1: सबको
0: बात है।
1: इंतजार है
0: कौन सा गीत आज के कार्यक्रम में सुनना चाहेंगे आप?
1: बहन जी। फिल्म का नाम है 9-2-11।
0: 9-2-11,
1: जी,
0: और गीत के बोल।
1: आंखों में क्या है पहला बादल,
2: पहला बादल,
3: बादल में क्या जी
2: किसी का आंचल, आंचल में क्या जी
3: अजब सी।

0: फोन करें, गीत सुने कार्यक्रम।
1: जी नमस्कार बहन जी,
0: नमस्कार।
1: मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ, ग्राम सनमतिया जिला गुना से।
0: जी मांगीलाल जी, कैसे हैं?
1: बस बहन जी, आपकी दुआ और भगवान की कृपा से मैं बढ़िया हूँ, और मैं इस बार से आशा करता हूँ कि आप भी बढ़िया होंगे।
0: बिल्कुल, आपकी आशा एकदम शत प्रतिशत।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम
1: जी। नमस्ते मैम
0: जी। नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। कौन बात कर रहे हैं
1: जी? अरविंद अग्रवाल
0: जी। अरविंद जी, कैसे हैं आप?
1: एकदम बढ़िया हैं, आप कैसी हैं दीदी?
0: हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो बताइए क्या चल रहा है इस समय?
1: बस दुकान में बैठे हैं, आपको याद किया, लगाया फोन, लग गया
0: बहुत बढ़िया बात है। तो जल्दी से गीत भी बता दीजिए, कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: जी। फिल्म का नाम रहेगा मोहरा
0: मोहरा, और
1: जी,
0: गीत के बोल
1: ना कजरे की धार
0: तो आपकी पसंद का गीत आप तक पहुंच रहा
1: जी।
0: है।
1: आप इसी महीने आपको हो जाना है रिटायर क्यों मैम?
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसी महीने 30 तारीख को विदा लेंगे आप सबसे।

0: आखिरी का आखिरी बार बात हो रही हो आपसे, ना लगे अब।
1: वैसे भी 7 दिन 10 दिन का गैप रखना है आपको, तो यूं भी 30 के पहले बातचीत नहीं हो पाएगी। तो हम उम्मीद करेंगे कि जो कार्यक्रम के पैरामीटर्स हैं, जो बेहतर चीजें हैं, उनका ध्यान रखेंगे और कार्यक्रम से आकाशवाणी से जुड़े रहेंगे।

0: फोन करें गीची में
1: नमस्कार,
0: कार्यक्रम।
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोला दीदी, मनोज नामदेव।
0: जी मनोज जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है दीदी, बहुत अच्छे हैं।
0: बहुत अच्छे हैं, क्या चल रहा है?
1: बस दीदी कुछ नहीं, अपने शॉप पर काम कर रहे थे और रेगुलर आपका प्रोग्राम सुन रहे थे।
0: बहुत अच्छी बात है। तो आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे सबको?
1: आज के कार्यक्रम में सुनवा दो, फिल्म का नाम रहेगा अनोखा अंदाज और उसमें गाना है तू दीवाना पागल मेरा हो गया।
0: तो आपकी पसंद का गीत आप तक पहुंच रहा है।
1: धन्यवाद दीदी।

0: हेलो,
1: हेलो हेलो,
0: फोन करें गीत सुनने कार्यक्रम
1: नमस्ते मैडम जी।
0: जी। नमस्कार
1: हरदयाल जाटव, जिला सिपी, मध्य प्रदेश।
0: जी। जाटव जी, कैसे हैं आप?
1: हाँ बस बढ़िया मैडम जी, मजे में है।
0: क्या चल रहा है?
1: आज अभी तो खेती की तैयारी हो रही, जुताई हो रही है।
0: तो बताइए
1: बढ़िया,
0: कौन
1: गाना गाना सुना
0: जी,
1: दिए।
0: कौन सा गीत सुनना है?
1: बाजीगर
0: बाजीगर का कौन सा?
1: के गाने के बोल भी यही है, फिल्म का नाम भी यही है।

0: सरस्वती, ग्राम वाया, तहसील रहती, जिला सीहोर, एमपी से बोल रहा हूँ।
1: जी रमेश जी, कैसे हैं?
0: बढ़िया हूँ मैम।
1: और क्या हो रहा है इस समय?
0: मैं सिलाई कपड़े काट रहा था, सिलाई काम करता हूँ, दुकान पे कपड़े काट रहा था।
1: और फोन लगा
0: मेरे को
1: लिया।
0: याद आया, मैंने कहा ये 2-3 महीने हो गए जब से फोन नहीं लगाया, आज ट्राई करता हूँ तो लग भी गया।
1: अरे क्या बात है, आज ज्यादातर श्रोता 2-3 महीने बाद ही फोन लगा रहे हैं। बताएं कौन सा गीत आज के कार्यक्रम में सुनवाया जाए?
0: कण कण में भगवान
1: उसका कौन सा
0: अपने
1: गीत है?
0: पिया की मैं तो बनी रे जुगनिया।
1: अब एक काम कीजिएगा, आज आप हमारी बात मान के
0: जी जी जी
1: अपने पसंद के गीतों की एक लिस्ट तैयार कीजिए जिसमें कम से कम 25 गाने लिखे हों फिल्मों के साथ, कम से
0: जी
1: कम 25, ठीक है?
0: जी
1: और जो
0: जी
1: गाना आज आपने सुनना चाहा है या फरमाइश की है उसके ऊपर राइट का टिक लगाना जिससे कि आगे उस गाने को दोहराए नहीं।
0: जी
1: उससे दो बड़े फायदे होंगे, एक तो आपको अपनी ही पसंद का गीत सुनने को मिलेगा और दूसरा
0: जी
1: कार्यक्रम बेहतर बन पड़ेगा।
0: जी

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम।
1: जी मैम,
0: जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: सनी शर्मा गंज वासुदास है। सनी शर्मा
0: सनी शर्मा। तो सनी क्या करते हैं?
1: डेयरी फार्म।
0: उसमें काम करते हैं। आपका है क्या है, कुछ पूरी बात बताइए।
1: हाँ डेयरी फार्म है घर का,
0: घर का। तो उसमें क्या क्या काम कर लेते हैं आप?
1: उसमें भैंसों और डोरों का
0: तो देखभाल करते
1: सानी
0: हैं।
1: बनाना, गाय भैंस को चराना।
0: हाँ वही पूछ रहे हैं कि थोड़ा विस्तार में बताएं तो पता लगे क्या क्या काम होते हैं इस तरह की चीज़ों के। तो कहाँ से बात
1: वो
0: कर रहे हैं
1: बच्चों
0: आप?
1: की देखभाल करना, चारा रखना।
0: अच्छा बताइए कौन सा

0: गीत सुनना चाहेंगे?
1: दोस्ताना फिल्म का सॉन्ग,
0: कौन सा? दोस्ताना का?
1: दोस्त सलामत रहे दोस्ताना हमारा।
0: बिल्कुल। तो ये गीत पसंद है इसलिए सुनना चाह रहे हैं या अपने किसी दोस्त को सुनवाना चाह रहे हैं?
1: ये गीत पसंद है, दोस्तों को
0: पसंद
1: भी
0: है।
1: सुनवाना चाहते हैं।
0: ठीक है, तो आपकी पसंद का गीत पहुंच रहा है आप तक, आनंद लीजिए।
1: जी जी जी जी जी

0: इस गीत के साथ ही फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे।

0: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल में राज्य स्तरीय साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश पुलिस के इस अभियान का उद्देश्य आमजन, विद्यार्थियों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को साइबर ठगी और ऑनलाइन धोखाधड़ी के प्रति जागरूक करना है। राज्य वित्त आयोग का दल आज भोपाल संभाग के दौरे के दौरान सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद संभाग आयुक्त कार्यालय में समीक्षात्मक बैठक में निकायों की वित्तीय मजबूती, स्वच्छता, पेयजल और राजस्व स्रोतों में वृद्धि के उपायों पर चर्चा होगी। प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का ड्राफ्ट 5 जुलाई तक तैयार हो जाएगा। यूसीसी पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में बनी कमेटी ये ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद विधानसभा सत्र में पेश करने की तैयारी है। प्रदेश में मानसून अगले 2 से 3 दिनों में बालाघाट, छिंदवाड़ा और पांडुना के रास्ते प्रदेश में दाखिल हो जाएगा। आज प्रदेश के 42 जिलों में तेज आंधी और बारिश की संभावना है। और महिला टी20 वर्ल्ड कप में आज मेजबान इंग्लैंड का सामना वेस्टइंडीज से होगा। ये मुकाबला जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम लेकर हम आपके सामने फिर हाजिर हैं। आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये नगमा। लिखने वाले हैं नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन। खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। आप सभी ने सुनना चाहा है अनुराग फिल्म का नगमा, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं अनुराग फिल्म से ये नगमा।

राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मीन और प्रयागराज भट्ट। इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह, सुनीता, संगीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। आप सभी ने सुनना चाहा है लता मंगेशकर की आवाज़ में ये नगमा।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं प्रमिलागंज और टोल जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई वर्मा, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा। धमनी किरवई से ममता धीवर, मुन्नी धीवर, समयलाल, युवांश, कुणाल और गोविंद धीवर। आप सभी ने सुनना चाहा है तुमको ना भूल पाएंगे फिल्म का नगमा, जिसे आवाज़ दी है अलका याग्निक और सोनू निगम ने।

वाले हैं औरंगाबाद से राजेश साबले, शीतल, राजदीप और राशि। जबलपुर से सुमन पांडे, देवयानी, दिव्य, निक्की। भोपाल से राग रोली और प्रशांत दुबे। अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया, आसमा, सालिया, शोएब, मुज्तबा, रऊफ और शाहिद। अकोला से ही लिखने वाले हैं रमेश कटनकर और वैशाली। तो आप सभी ने सुनना चाहा है हसीना मान जाएगी फिल्म का नगमा, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और

अरे सुनती हूँ आपसे भी की फरमाइश अमलेश्वर से टुमन सुमन मिथलेश तारनी सूरज ज्योति और रियांश भाटरपारा से द्वारिका प्रसाद वर्मा किशोर कुमार आदर्श नगर मचोल से राज शर्मा मीना शर्मा योगेश और सौरभ शर्मा आप सभी ने सुनना चाहा है कुमार सानू की आवाज़ में आओ प्यार करें फिल्म का ये नगमा।

इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं भुवन मोहिनी का छठवां भाग।

0: अब तक धारावाहिक भुवन मोहिनी में आपने सुना, राजकुमार विजय श्रवा से प्रेम करने के कारण धारा नगरी के राजा द्युम्न सेन ने नर्तकी भुवन मोहिनी को देश निकाला दे दिया था। निर्वासित भुवन मोहिनी ने इंद्रप्रस्थ नरेश आदित्य सेन के यहाँ आकर आश्रय लिया, परंतु कुछ ही महीनों के बाद राजकुमार भी राजमाता से नाराज होकर इंद्रप्रस्थ पहुंच गया। लोग उसे न पहचान सके इसलिए वो आश्रम में श्रेष्ठ पुत्र बनकर रहने लगा, परंतु वास्तविकता इंद्रप्रस्थ के राजा आदित्य सेन तक पहुंच ही गई और उन्होंने राजकुमार को राजकीय अतिथि बनाया और एक उत्सव आयोजित कर सम्मानित किया। इस सम्मान उत्सव में भुवन मोहिनी का गायन और नृत्य हुआ, जिसके माध्यम से भुवन मोहिनी अपनी पीड़ा को राजकुमार के हृदय तक पहुंचाने में सफल हुई। भुवन मोहिनी को दुखी पाकर राजकुमार भी बहुत दुखी हुआ, परंतु इसी बीच हुआ ये कि लौटते समय रास्ते में उसकी नज़दीकी राजकुमारी चंद्रहासिनी से बढ़ गई। राजकुमार भुवन मोहिनी को अपने आवास में बुलवाता है, परंतु चंद्रहासिनी भी आ जाती है। आगे क्या होता है ये सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की 6वीं कड़ी में।
1: सर्वप्रथम भावी सम्राट को वचनबद्ध होना पड़ेगा कि मैं जिस प्रकार चाहूंगी वो पालन करेंगे।
2: एवं अस्तु।
1: तो सुनिए देव, राजकुमारी चंद्रहासिनी आपका आतिथ्य ग्रहण करने से पूर्व ये जानना चाहती हैं कि आपके जीवन में उन्हें कोई स्थान प्राप्त होगा या नहीं।

0: देव।
1: किंतु मैं समझता हूं कि मेरे उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे प्रश्न प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बड़े ही महत्वपूर्ण और गोपनीय होते हैं। फिर भी यदि तुम उत्तर चाहती ही हो तो स्वयं तुम्हें मेरे जीवन और जीवन की भावनाओं का अधिक ज्ञान है। तुम स्वयं राजकुमारी के साथ बैठकर वही उत्तर दे सकती हो जो मैं स्वयं देता।
0: देव, राजकुमारी चंद्रहासिनी ने अपनी ओर से निश्चय कर लिया है कि वो या तो अपने जीवन में आपको प्राप्त करेंगी, अन्यथा आजीवन कुंवारी रहकर निराश जीवन का पटाक्षेप कर देंगी।
1: ऐसे संकल्प का प्रत्यक्ष लाभ क्या है?
0: ना हो, किंतु ऐसे जीवन को स्वीकार करने की प्रेरणा भी तो आपने ही दी है। आप ही ने राजकुमारी के शून्य जीवन में अनेक सरस भावनाओं को अनुप्राणित किया है। आप ही के द्वारा प्रेमोपहार प्राप्त कर राजकुमारी पूर्ण रूप से कृतकृत्य हुई है। वो देखिए ना, आपका हृदय चूमने वाला मुक्तामणि माणिक हार आज चंद्रहासिनी के जीवन की अमूल्य निधि बन गया है। और अपनी कनिष्ठिका उंगली दिखाइए,
1: हाँ?
0: ये अमूल्य मणिजड़ित अंगूठी राजकुमारी ने प्रेमोपहार के रूप में प्रदान की है। इसकी लाज तो रखनी होगी ना।
1: आज तुम्हें क्या हो गया है भुवन मोहिनी? क्यों आत्मनाश करने पर तुली हो? जो हृदय तुम्हारी भेंट चढ़ गया उसे तुम अस्वीकार भले ही कर सकती हो, किंतु तुम्हारी ओर से ये प्रस्ताव शोभा नहीं देता कि एक बार समर्पित किया हुआ हृदय दोबारा समर्पण का व्यापार रचाए।
0: देव, बड़ी तत्परता, खोज और प्रयास के पश्चात मैंने राजकुमारी चंद्रहासिनी को आपके योग्य जीवन संगनी के रूप में चुना था। मैं जानती हूँ कि देव, यदि अपने स्नेहदान से मुझे भाग्यशाली बनाते तो मैं सारे साम्राज्य में अपने साथ आपके वंश की भी अपकीर्ति कराती। युगों की संचित आपकी कीर्ति और प्रतिष्ठा मेरे कारण नष्ट हो जाती और आपके पवित्र और यशस्वी कुल में कलंक की कालिमा पुत जाती। मैं अपने तुच्छ प्रेम के नाम पर आपका सर्वनाश नहीं चाहती थी देव। आपकी अपकीर्ति को मैं सहन नहीं कर सकती थी। मैं आपके चरण छूती हूँ, मेरे प्रेम के वरदायक देवता। यदि मुझे अपने चरणों के आश्रय से दूर न रखना चाहते हूँ तो राजकुमारी चंद्रहासिनी को अपने जीवन संगनी के रूप में अवश्य चुने। मैं राजकुमारी के माध्यम से इन चरणों की पावन पूजा का सुख लूटूंगी और अपने इस तुच्छ जीवन को सफल और सार्थक बना लूंगी।
1: तुम ये क्या कर रही हो भुवन मोहिनी? मेरे हृदय स्थल में अपनी प्रतिमा के स्थान पर चंद्रहासिनी की प्रतिमा स्थापित करना चाहती हो? तुम ये क्यों नहीं समझती हो कि प्रेम व्यवहार में विकल्प नहीं हुआ करते?
2: राजकुमार और भुवन मोहिनी के मध्य हो रहा ये पूरा वार्तालाप मेरा अपमान है या मेरा आदर, समझ नहीं पा रही हूं। मेरे लिए प्रेम की भीख मांगी जा रही है और वो भी एक नर्तकी के द्वारा जो इस प्रेम की सौमनी भी है, समझ नहीं पा रही हूं कि अपने जिस सौंदर्य के मद में चूर होकर मैं भुवन मोहिनी को कई बार अपमानित कर चुकी हूं, उसी सौंदर्य को भुवन मोहिनी के किस आकर्षण के वशीभूत होकर राजकुमार चूर चूर कर रहे हैं। क्यों एक नर्तकी को इतना ऊंचा और महान बना रहे हैं कि वो सैकड़ों राजपुत्रियों के रूप और वंशगत महानता से कहीं अधिक आदरणीय और श्रद्धामयी बनते जा रहे हैं।
1: तो ठीक है भुवन मोहिनी, यदि मुझे विवाह करना ही पड़ा तो अवश्य ही मैं राजकुमारी का संवरण करूंगा। किंतु प्रश्न यह है कि राजकुमारी

0: प्रतीक्षा करेंगी।
1: क्षमा चाहती हूं देव, आपने प्रश्न किया कि मैं कब तक प्रतीक्षा करूंगी, तो यही कहना चाहूंगी कि आपको प्राप्त करने की आशा मेरे जीवन में इतनी मूल्यवान है कि मैं एक नहीं अनंत जीवन तक आपकी प्रतीक्षा करूंगी। यदि मैंने जाना कि देव के जीवन का व्रत किसी महान उद्देश्य के लिए आत्मोत्सर्ग करना है, तो उस समय भी मैं आपकी ही पथ का अनुसरण करूंगी।

0: ये कैसी दुविधा है? भुवन मोहिनी और चंद्रहासिनी मेरे लिए प्रेममयी सरिता की दो दुकोल के समान हैं, जिनमें परस्पर विचार साम्य देखकर समझ नहीं आता कि अंततः मुझे किस किनारे का सहारा लेना होगा। यदि मैं एक किनारे में ठहर कर अपने भ्रमित और उत्तप्त जीवन की थकान मिटाने का प्रयास करूंगा, तो स्वाभाविक रूप से दूसरा किनारा शून्य, नीरव और निःसार बन जाएगा। एक ओर यदि मिलन की रागिनी गुंजरित होकर बसंत की मादकता भरेगी, तो दूसरी ओर दीर्घ वियोग की विहाग रागिनी करुणा और अनमनेपन की सृष्टि करेगी। अंततः क्या होगा? जीवन में अंतर्द्वंद्व बना रहेगा, जो पल भर भी शांत नहीं रहने देगा। भुवन मोहिनी कितनी आत्मत्यागनी है। उसने जाने अनजाने यौवन प्रभात में प्रेम के जिस कोमल वृक्ष को आरोपित किया था और उसे अपने स्नेह, ममता और त्याग के जल से सींच सींच कर पल्लवित और पुष्पित किया था, आज वो प्रेम वृक्ष अपनी उन्नत शाखाओं को चारों ओर फैलाए गर्व से उसको देख रहा है। अभी वो समय आ गया था जब वो प्रेम वृक्ष अपने मधुर फलों का रसा स्वादन कराकर चिर व्यथित और उत्तप्त जीवन को शांति प्रदान करता। तो भुवन मोहिनी एक दार्शनिक की भांति उस प्रेम वृक्ष की छाया और फल से अनासक्त हो रही है, और दूसरी ओर मैं एक निविड़ अंधकार से भरे आसक्त जीवन को लेकर मृग तृष्णा में ही जीवन व्यतीत करने की बात सोच रहा हूं। क्या ये धोखा नहीं है? आज राजकुमारी सर्वांतःकरण से अपना सर्वस्व उस व्यक्ति को सौंपने जा रही है जिसका हृदय अतीत काल से ही दूसरे की धरोहर बन चुका है। राजकुमारी, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे सुकुमार और पवित्र जीवन का सर्वनाश करूं। तनिक सोचो, ये महान मानव जीवन अनेक लुभावने आकर्षणों का केंद्र बिंदु बनने के लिए नहीं प्राप्त हुआ है। ये तो जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उपहार है।
1: देव, मैं नारी हूं, स्वयं मायामयी, मुझे मुक्ति नहीं बंधन ही चाहिए। इसी में मेरे जीवन की सार्थकता है और आपकी सेवा में ही मेरे जीवन का जप तप और भोग निहित है। आप स्वयं ज्ञानाश्रय हैं। मैं इन चरणों को त्याग कर अन्यत्र कहां जाऊंगी? मैं चाहूंगी कि आत्मोद्धार पथ पर आप ही का अनुसरण करूं, किंतु मैं जो कुछ करूंगी वो अपने आप नहीं, आपसे प्रेरणा लेकर, आपके छाया बनकर। मैं ज्ञान प्रकरण की उपासिका नहीं, मेरा निश्चल ज्ञान यही है कि पग पग पर आपका अनुगमन करते हुए आपकी साधना की सिद्धि बनू। दूसरा प्रश्न है भुवन मोहिनी का, तो मैं आपको उलझन में नहीं डालना चाहती। अंतःकरण से केवल यही कह सकती हूं कि उसका चरित्र उदात्त है, वो महान है। उसने मेरे लिए अपना सर्वस्व त्याग करने का व्रत लिया है। मैं अपने को उसकी चेरी समझूंगी, भले ही कहने को वो नर्तकी हो और मैं राजपुत्री। मैंने अपनी छोली उसके समक्ष

0: फैलाई है। उसने उदारतापूर्वक मुझे वो सब कुछ दे डाला है जो एक नारी दूसरी नारी को नहीं दे सकती। इसलिए देव, मैं सदैव उसकी कृतज्ञ रहूंगी। उसकी छोटी बहन बनकर उसके अतुलित प्यार की भागनी बनूंगी।
1: ज्ञात होता है कि राजकुमारी ने महानता के आदर्श भुवन मोहिनी से प्राप्त कर लिए हैं और भुवन मोहिनी को परखने की दृष्टि भी प्राप्त कर ली है। मुझे अब कोई आपत्ति नहीं, किंतु इतना फिर भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भुवन मोहिनी की स्मृति को मेरे हृदय से उखाड़ फेंकने का प्रयास कभी नहीं होना चाहिए। अन्यथा मैं अपनी प्रियता प्रदान करने के स्थान पर केवल घृणा ही दे सकूंगा।
0: मुझे स्वीकार है, मैं बस आपके चरणों में स्थान पाना चाहती हूँ।
2: अरे उठिए उठिए राजकुमारी, आज से हम दोनों सगी बहन ही हैं। हम एक दूसरे के सुख दुख में समान भागीदार होंगी।
1: आज तो राजकुमारी का अतिथि सत्कार करना मेरा परम धर्म है। आज हम सब मिलकर एक प्रेममय सहभोज का आयोजन करें और कल इसी समय हम सब कुरुक्षेत्र के मेले की ओर प्रस्थान करेंगे।
3: मित्र, आज इस पर्णकुटी में कुबेर और सुरेश की राजसभा का सुख प्राप्त हो रहा है। देव, यदि आज्ञा हो तो मैं भी अपनी सेवा द्वारा कृतकृत्य हो लूं।
1: क्यों नहीं अरण्यक, देखो आज इंद्रप्रस्थ की राजकुमारी तुम्हारे निर्वासित युवराज की अतिथि हैं। उनकी अतिथि सेवा के लिए उत्तम से उत्तम राजसी भोजन बनवाओ। और हां, जो भी भूखा प्यासा अतिथि इधर से गुजरे उन सबका भरपूर आतिथ्य करके दान दक्षिणा आदि देकर विदा कराओ।
3: जो आज्ञा युवराज।
4: अरण्यक, बोलो सारथी, हम लोग कब तक रहेंगे कुरुक्षेत्र के मेले में?
3: जब तक हमारे स्वामी चाहेंगे।
4: एक बात बताओ अरण्यक।
3: हाँ।
4: राजकुमार जी विवाह तो राजकुमारी जी के साथ ही करेंगे ना?
3: क्यों?
4: दो दो सौंदर्य स्वामिनियों के साथ हमारे स्वामी रमण कर रहे हैं। भुवन मोहिनी को लेकर राजकुमारी जी को कोई आपत्ति नहीं दिखती। समझ में नहीं आता कि युवराज के हृदय के समीप अधिक कौन है।
3: मैं बताता हूं, इस प्रश्न का उत्तर तो संभवतः राजकुमार के पास भी ना होगा। परंतु एक बात मैं बता दूं।
4: क्या?
3: राजकुमार जी को तुम उतना नहीं जानते जितना मैं जानता हूं।
4: इसीलिए तो तुमसे पूछा।
3: तुम देखते होगे, राजकुमार का मन इस धार्मिक मेले में आध्यात्मिक प्रवचनों को सुनने, साधु महात्माओं से विवेचना करने में अधिक लग रहा है।
4: हाँ, सही बात है।
3: इसका तात्पर्य क्या हुआ?
4: क्या हुआ?
3: ये कि राजकुमार जी भोग विलास के सरोवर में होते हुए भी इन सबसे निर्लिप्त।
4: अरे हाँ, परंतु
3: वो देखो, तीनों लोग तैयार हो गए हैं। अब शीघ्रता करो।
4: चलो चलो चलो,
5: रथ तैयार है श्रीमान।
1: तो फिर चलो। देवियों, आप लोग तैयार हैं ना?
2: हाँ स्वामी। राजकुमारी जी आइए, रथ पर विराजिए।
0: अवश्य भुवन मोहिनी, आओ, तुम भी आओ।
2: जो आज्ञा। आइए स्वामी।
5: चलो सारथी।
1: अरण्यक, तनिक पता तो लगाओ, यहाँ भीड़ भाड़ कैसी है?
3: युवराज और आपके साथ ये देवियां इस मेले में विशेष आकर्षण पहले ही बन चुके हैं। अब तो लोग मेला देखने की अपेक्षा आप लोगों के दर्शन के लिए अधिक इच्छुक हैं।
2: देव, आप चिंतित दिख रहे हैं।
1: कुछ विशेष बात नहीं है भुवन मोहिनी।
3: युवराज, इसी रास्ते से सम्राट यानी आपके पिताश्री निकल रहे हैं और माताश्री भी साथ में हैं।
2: अब क्या होगा?

0: धैर्य रखो, मैं देखता हूं।
1: राजकुमारी जी, आप क्यों चुप हैं?
2: ऐसा लगता है जैसे राजकुमार जी को मुझ में कोई रुचि ही ना हो।
1: ऐसा मत कहिए राजकुमारी, शीघ्र ही आप राजकुमार जी को समझ जाएंगी। उनके हृदयागार में आप ही सुशोभित हैं, विश्वास रखिए।
3: युवराज, पिता महाराज ने आपको देख लिया है, उन्होंने आपको बुलवाया है, उनके साथ महाराज आदित्य सेन भी हैं।
0: क्या करना चाहिए मुझे?
3: करना क्या चाहिए, वो देखिए, वो लोग स्वयं इधर आ रहे हैं।
4: पुत्र विजय शर्मा,
5: महाराज के चरणों में प्रणाम। प्रणाम महाराज आदित्य सेन।
6: चिरंजीवी भव, हमारी पुत्री कहाँ है?
3: वो रथ पर बैठी हैं, हम अभी उन्हें साथ सम्मान ले आते।
1: पुत्र,
5: माँ,
1: तुम क्यों हमें छोड़ के चले आए?
3: महाराज, आपकी भावी पुत्रवधु।
2: चरण स्पर्श पिताजी।
4: अरे आ पुत्री, मेरे हृदय से लग जा।
6: पुत्री, ये तुम्हारी भावी माँ है।
2: चरण स्पर्श माँ।
1: अति सुंदर महाराज आदित्य सेन, सचमुच आपकी पुत्री सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है।
7: प्रणाम सम्राट, प्रणाम साम्राज्य।
4: तुम वही नर्तकी भुवन मोहिनी हो ना?
6: हाँ सम्राट, हमने इसे राजा श्रेय दिया है, परंतु इसी ने भावी विवाह की पृष्ठभूमि तैयार की है।
4: युवराज, भावी सम्राट,
0: देव,
4: हम तुम्हें क्षमा करते हैं, अपनी धारा नगरी को लौटो। साम्राज्य की प्रजा अपने प्रिय युवराज और भावी सम्राट का कुशल क्षेम जानने के लिए उत्सुक है। और भुवन मोहिनी?
7: आज्ञा देव।
4: इन एकांत दिनों में तुमने अवश्य ही युवराज के प्रति अपनी सेवाएं समर्पित की होंगी, अतः तुम्हारा निर्वासन निषेध किया जाता है। चलो तुम भी अपनी मातृभूमि के दर्शन लो। अब मैं शीघ्र ही अपनी पुत्र वधु को बुलाने के लिए पुनः इंद्रप्रस्थ आऊंगा और महाराज आदित्य सेन की हार्दिक आकांक्षा को पूर्ण करूंगा।
1: आ पुत्री, आ एक बार फिर से मेरे हृदय से लग जा। अरे तुम्हारे गले में ये हार, अर्थात मेरे विजय श्रवा ने तुम्हें पहले ही अपना मधुर प्रेमोपहार समर्पित कर दिया है। बोलो, विजय श्रवा के प्रति कृतकृत्य हो ना?
2: आपके चरणों की वरदायनी सेवा का अधिकार मेरे लिए बना रहे माँ।
1: ऐसा ही होगा पुत्री। युवराज।
0: आज्ञा माँ।
1: समस्त देश पर हुड़ जाति का आक्रमण आसन्न है, देखना अपने दायित्वों को। मेरे दूध की लाज रखना पुत्र, क्षत्राणी का दूध राष्ट्र सम्मान के बलिदान में मूल्य की सदैव अपेक्षा करता आया है। तुम्हें भी इस आसक्ति से निवृत्ति प्राप्त कर राष्ट्र रक्षा के पवित्र दायित्व का निर्वाह करना होगा। तुम्हारी नसों और धमनियों में भी उष्ण रक्त का प्रवाह होना चाहिए, जिससे छत्राणी के दूध की गौरव गरिमा बनी रहे।
0: ऐसा ही होगा राजमाता, भारत साम्राज्य का दूध समस्त राष्ट्र के गौरव की रक्षा का भार वहन करेगा, हुणों को विजय श्रवा की शक्ति पराजित करेगी।
4: युवराज, आज मैं वृद्ध और अशक्त हो गया हूं, परंतु मैंने राष्ट्र को तुम जैसा प्रतिनिधि समर्पित किया है। आज वंश और कुल के सम्मान की रक्षा का दायित्व मुझसे अधिक तुम पर आ पड़ा है। साम्राज्य की सेना अपने भावी सम्राट के अधिनायकत्व में उन समस्त जातियों को पराजित करेगी जो भारतीय वैभव के सपनों द्वारा आक्रांत हैं। किंतु सुना है कि हूण जाति एक बर्बर जाति है, जो समृद्धि और वैभव की प्राप्ति के लिए रक्त सागर का मंथन करके विजयश्री के साथ लौटना चाहती है। मैं चाहता हूं युवराज का प्रेम त्रसित हृदय शीघ्र संतुष्ट होकर राष्ट्र रक्षा के प्रश्न पर गंभीरतम विचार करे। महाराज आदित्य सेन।
6: कहिए सम्राट।
4: आप यथाशीघ्र विवाह का आयोजन करें, ताकि संस्कार से निवृत्त होकर युवराज राष्ट्र रक्षा के लिए तत्पर हों। मेरी तीर्थ यात्रा का भी यही उद्देश्य है कि कुरुक्षेत्र की इस अति प्राचीन रणस्थली में देश भर की प्रजा और

0: खंड राज्यों के नरेश एकत्र होंगे और राष्ट्र रक्षा पर एक मन से हम सब लोग मिलकर निर्णय करेंगे।
1: सम्राट क्षमा करें, भारत का भावी सम्राट ये कभी नहीं चाहेगा कि जब राष्ट्र रक्षा की विकट घड़ी उपस्थित हो तब वो प्रणय बंधन में फंसकर विलासी कहलाए। सम्राट, मुझे माता के दूध की गौरवमयी परंपरा को राष्ट्र के प्रांगण में सदैव विकसित रखना है। मृत्युंजय के उपासक कभी भी विलास की तुच्छ वृत्ति को स्वीकार नहीं करेंगे। राष्ट्र की रक्षा के लिए मैं अगणित चंद्रहासिनी और राजकुमारियों के प्रेम संबंधों को बलिदान कर दूंगा।
2: पितृतुल्य सम्राट, मैं भी क्षत्राणी हूँ और चाहती हूँ कि अतीत काल की अन्य राज्य महर्षियों की भांति मैं भी युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करूं और भैरवी बनकर शत्रु दल का संहार करूं।
0: बेटी, जब तक क्षत्रिय की नसों में एक भी बूंद उष्ण रक्त प्रवाहित होगा तब तक वो ये न चाहेगा कि राष्ट्र की वीरांगनाएं युद्ध स्थली में उपस्थित हों। तुम्हें ज्ञान नहीं होगा कि कामदेव सा अतुल रूप वैभव लिए ये हमारा पुत्र महान वीर और पराक्रमी भी है। विश्वास करो कि वो युद्ध में अवश्य ही हूणों को पराजित करेगा। फिर भी तुम जैसी वीरांगना पुत्र वधू पाकर मैं अवश्य गौरवान्वित होऊंगा।

0: संग्रहालय से कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक भुवन मोहिनी की छठी कड़ी। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में रानी दुर्गावती के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की और श्रद्धापूर्वक पुण्य स्मरण कर नमन किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महान वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने एक पोस्ट पर कहा कि उनका शौर्य, अदम्य साहस और रणकौशल देश के गौरवशाली इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है, जो विशेष रूप से बेटियों के लिए प्रेरणादायक है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रदेश में आज से साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 चलाया जा रहा है। प्रदेश पुलिस के इस अभियान का उद्देश्य आमजन, विद्यार्थियों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को साइबर ठगी और ऑनलाइन धोखाधड़ी के प्रति जागरूक करना है। प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी UCC का ड्राफ्ट 5 जुलाई तक तैयार हो जाएगा। UCC पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में

बनी कमेटी यह ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी, जिसे बाद में विधानसभा सत्र में पेश करने की तैयारी है। प्रदेश में मानसून अगले 2 से 3 दिनों में बालाघाट, छिंदवाड़ा और पांडुना के रास्ते प्रदेश में दाखिल हो जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार प्री मानसून के चलते आज प्रदेश के 42 जिलों में तेज आंधी और बारिश की संभावना है। और महिला T20 वर्ल्ड कप में आज मेजबान इंग्लैंड का सामना वेस्टइंडीज से है। ये मुकाबला जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। बेहतर रन रेट के चलते इंग्लैंड टॉप पर बना हुआ है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र के योगदान से लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम महिला कार्यक्रम।

महिला सभा सुनने वाली आप सब सखियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ है आपकी दोस्त धम्ममित्रा। स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार। बहनों, पहले हम महिलाओं के लिए समाज में ये सोच होती थी कि महिलाएं नरम दिल और बेहद संवेदनशील होती हैं, और ये सत्य भी है। इसीलिए उनके कार्य क्षेत्र सीमित रखे गए। पर अब सोच में बदलाव आया है कि महिलाएं अगर अंदर से नरम दिल और संवेदनशील हैं, साथ ही मजबूत इरादे भी रखती हैं, हौसला रखती हैं, आत्मविश्वास भी, इसी के बल पर आज कोई भी क्षेत्र महिलाओं से अछूता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और कूटनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र हर साल 24 जून को कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है। किसी ने सही कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हित का कोई लिंग नहीं होता। आज कई देशों में महिलाएं राजदूत हैं, कूटनीतिज्ञ हैं। उनके योगदान ने विश्व भर में शांति, सुरक्षा, विकास और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के प्रयासों को मजबूत किया है। इसके साथ ही दो देशों के बीच मध्यस्थता, संघर्ष समाधान में भी महिलाओं की भागीदारी अधिक समावेशी और स्थायी परिणामों में योगदान दे रही है। इनमें भारत की भी महिलाओं का योगदान कुछ कम नहीं है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आकार देने और दुनिया के सबसे कठिन मुद्दों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विजय लक्ष्मी पंडित, स्वतंत्र भारत की प्रमुख राजनयिक, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष 1953 में चुनी गई। इस शीर्ष पद पर पहुंचने वाली वह दुनिया की पहली महिला थी जिन्होंने सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत की राजदूत के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। ब्रिटेन में 1954 से 1961 तक भारत की उच्चायुक्त रहीं। इस कार्यकाल में इन्होंने भारत ब्रिटेन संबंधों को मजबूत करने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपनी कूटनीति का लोहा मनवाया। एलेनोर रूजवेल्ट, ये संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी प्रतिनिधि थीं। इन्होंने विश्व प्रसिद्ध मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के मसौदे को तैयार करने में अहम कूटनीतिक भूमिका निभाई। आंग सान सू की, म्यांमार की सबसे प्रसिद्ध राजनेता व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कूटनीतिज्ञ हस्ती हैं। मेडेलिन अल्ब्राइट, अमेरिका की पहली विदेश मंत्री और कूटनीतिज्ञ। सी बी मुथम्मा, 1948 में संघ लोक सेवा आयोग की विदेश सेवा परीक्षा पास कर इतिहास रचने वाली मुथम्मा ने हंगरी और नीदरलैंड जैसे देशों में भारतीय राजदूत के रूप में कार्य किया। रुचिरा कंबोज, संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि। इन्होंने 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष पद की भी कमान संभाली थी। चोकिला अय्यर, भारत की पहली महिला विदेश सचिव रहीं। निरुपमा राव, भारत की विदेश सचिव बनने वाली दूसरी महिला थीं जिन्होंने अमेरिका और चीन जैसे महत्वपूर्ण देशों में भारतीय राजदूत के रूप में शानदार कार्य कर संबंधों को और मजबूत किया। मीरा शंकर, अमेरिका में भारत की राजदूत रहीं। स्नेहा दुबे, संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रथम सचिव के रूप

में तैनात रहीं, वहां कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को दिए गए उनके करारे और सटीक जवाब के लिए उन्हें जाना जाता है। इनम गंभीर संयुक्त राष्ट्र महासभा में आतंकवाद के मुद्दे को बड़ी ही चतुराई से दुनिया के सामने रखने वाली प्रमुख भारतीय राजनयिक रहीं। डायना अबगर 20वीं सदी की शुरुआत में विश्व की पहली महिला राजदूत नियुक्त होने वाली हस्तियों में से एक थीं। मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री जिन्हें आयरन लेडी के रूप जाना जाता है। शीत युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में उनका बहुत बड़ा प्रभाव था। हंसा मेहता एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनयिक जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग में भारत का प्रतिनिधित्व किया और अधिकारों की भाषा को सभी पुरुष से बदलकर सभी मानव करवाने में महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत हासिल की। सखियों ये कुछ प्रमुख प्रसिद्ध महिला कूटनीतिज्ञ रहीं जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और रणनीतिक फैसलों से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ साथ विश्व राजनीति को भी नई दिशा दी। अब आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: सखियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं एक कहानी, अधिकार। कहानीकार हैं कुंदा जोगलेकर। तो आइए सुनते हैं ये कहानी, अधिकार।
1: माँ को गुजरे लगभग 20-22 दिन होने जा रहे थे। बेहद तकलीफदेह होते हैं घर के बड़े बुजुर्गों के जाने के बाद के कुछ दिन। तो यहाँ तो माँ ही थी जन्मदात्री, और मेहमान भी थे वहाँ सभी। बहुत भयानक होता है सब कुछ होते हुए भी भरे पूरे घर का ये विचित्र सा खालीपन। बहुत कुछ खो गया सा लगता है। बचपन से अब तक उसके साथ बिताए युवावस्था के दिन, फिर शादी के बाद बेटी के मायके के लिहाज से सारी परंपराएं, लेन देन, माँ सब कुछ मुझसे पूछकर ही करती रही। मैं ही अपने कर्तव्य में कम पड़ी शायद, क्योंकि अपने परिवार की व्यस्तताओं में जाने अनजाने बहुत कुछ छूट जाता है बेटियों से। वही मेरे साथ भी हुआ, लेकिन उनकी ओर से मुझे सब कुछ माफ था। वैसे मन की तैयारी तो बीमार की शारीरिक मानसिक अवस्था को देखते हो ही जाती है, मेरी भी हो चुकी थी। लेकिन मेरे यहाँ आने से लेकर उनके जाने के बीच जो कुछ मैंने देखा समझा,

उसे देखते हुए मैं इतनी आसानी से घर छोड़ने का मानस तो नहीं बना पा रही थी। रुकने का कारण एक ये भी था कि यूनिवर्सिटी से कुछ जानकारी भी लेना थी। 2 माह पहले माँ के बीमार होने की सूचना देकर ही भैया ने मुझे बुला भेजा। आने के बाद लगा मुझे तो कब का आ जाना चाहिए था। वैसे भी माँ का अब कोई भरोसा नहीं लग रहा था। गंगा पूजन के 2 दिन बाद अचानक ही दूसरे दिन बड़े भैया ने ये बताकर इच्छा पूर्ति कर दी कि शालिनी तुम अभी यहाँ हो तो तुम्हारी भाभी कह रही थी हम दोनों मतलब बच्चे भी 4-5 दिन उनके मायके हुआ है, उसकी माँ जो बीमार है मिलाएंगे, वो नहीं आ पाई ना इसलिए। मन मांगी मुराद पा मैंने फौरन हाँ कर दिया। ये तो अच्छा हुआ कि बीमारी में स्वास्थ्य की दृष्टि से भले ही माँ हड्डियों का ढांचा रही लेकिन उनकी वाणी और बुद्धि अंतिम समय तक एकदम सही रही। तभी तो भैया भाभी के इधर उधर होते ही वो धीमी धीमी आवाज में कुछ न कुछ बताती रहीं। ऐसे वक्त हमेशा उनकी नज़र दरवाजे की ओर लगी रहती। देख बेटा शालू तुझे बता तो रही हूँ लेकिन कहना मत उन लोगों से, कुछ भी मत कहना, फालतू में किटकिट करेंगे। और अब मेरा क्या बेटा, आज हूँ कल नहीं, बाद में तेरे रिश्ते खराब न हो, बस इतनी इच्छा है। वे पिछले 6 माह से वृद्धाश्रम में थी और ज़्यादा स्वास्थ्य खराब होने पर उन्हें लाना पड़ा ये भी माँ से पता चला। लेकिन मेरे आने से उसे बहुत अच्छा लगा, बार बार कहती रहती, जितनी देर उसके पास बैठती हाथ पकड़े बतियाती ही रहती। सुनकर रोना आ जाता और गुस्सा 7वें आसमान पर वो अलग से। मुझे क्यों नहीं बताया, पूछने पर भड़बड़ा कर रो पड़ी। बेटा कहावत है ना कि जरूरतमंदों को अकल मान सम्मान कुछ नहीं होता, बस इसलिए सह लिया चुपचाप। मेरी इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी वहां जाने की, वो तो तेरे पिताजी के दोस्त थे ना शंकर भाई जी, सर्वे सर्वा हैं उस आश्रम के, उनका नाम सुनकर मैंने हाँ कह दिया। सच कहूं बेटा उन्होंने बहुत रिश्ता निभाया, ध्यान रखा मेरा। सुनकर मन का सैला सा हो गया था। वो ठीक है माँ लेकिन घर तो घर होता है ना, यहाँ कौन सा घर था, सबके मुंह हमेशा फूले, अनचाहा मेहमान हो गई थी मैं, अब भी वही है, वहाँ समय से खाना सोना और इसके अलावा शंकर भैया का बेटा बेटी कभी कभी पूछताछ करने भी आ जाते थे समय निकाल कर, बाकी आसपास भी लोग थे बतियाने के लिए, सभी किसी न किसी कारण से दुखी, अपनी अपनी बात कह लेते थे, यहाँ तो मुँह में ताला लगाए रखना पड़ता है, जो भी मुँह से निकले बुरा ही लगता है दोनों को। मेरी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई नहीं तो मैं तो मरते दम तक रहती वहाँ। घर आने पर मैंने ही कहा था रघु से तुम्हें बुलाने को, उसने फौरन बुला भेजा। किस्मत मेरी अब तुम्हें देखकर आंखें मूंदूँ यही इच्छा है, हो सके तो रह लेना बेटा कुछ दिन, कहते कहते गला भराया और खांसी भी। मैंने उठकर पानी पिलाया, ठीक है अब मैं हूँ ना रहूँगी अभी, और थोड़ा ठीक हो जाऊंगी तो ले भी जाऊंगी अपने साथ, फिर ठीक है अब आराम करो। आशीर्वाद का उठा हुआ हाथ और थकान भरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी उनके, बस उस आखिरी मुस्कान के बाद सुबह नहीं उठ पाई माँ, चली गई थी हमेशा के लिए। मायके जाने की बात पर मेरे हामी भरने के बाद भैया भाभी दोनों को बच्चों को साथ ले उनके मायके चले गए। घर पर काम वाली बाइयाँ थी तो उद्देश्य की पूर्ति के लिए मेरे पास भरपूर समय भी था। मैंने एक बार पूरे घर का मुआयना किया, अपने कमरे को बाकायदा ताला लगा कर गए थे, खैर मुझे उससे कोई काम था भी नहीं, लेकिन इस मानसिकता पर आश्चर्य होने लायक कुछ भी था नहीं। बाहर आंगन, बड़ी सी बैठक, 4-6 कमरों वाला शानदार घर, पुश्तैनी छोटे से घर को छोड़कर पिताजी ने ही बनवाया था, पिछली ओर था एक छोटा सा कमरा, हाँ कबाड़ तो नहीं लेकिन लोहे के पुराने बड़े बड़े ट्रंक, तांबे पीतल के पराते, कढ़ाइयाँ, थालियाँ, डब्बे, ढेर सारे पुराने ग्रंथ, किताबें जो दीवारों में बनी अलमारियों में ठूस ठूस कर भरे गए थे। जमीन पर भी फैलावा कुछ कम नहीं था और यहीं कोने में थी माँ की खाट भी, ये भी माँ से ही पता चला। वो तो मेरे आने के पहले दोनों बच्चों को एक ही कमरा देकर दूसरे कमरे में माँ को शिफ्ट कर दिया था। मुझे याद आया दादी और माँ हर दीपावली पर सारे तांबे पीतल के बर्तन नींबू आमचूर राख से साफ करती तो चमचमा जाते थे और हमारा संयुक्त परिवार का रसोई घर जैसे खिल उठता था। शालू बेटा देख इन सबको कोई कदर नहीं है किसी चीज की, मेरे जाने के बाद सब बेच खाएंगे, तुझे चाहिए कुछ तो ले जा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब कबाड़ है मेरी तरह। माँ के शब्द घर कर गए थे कानों में, अगले ही पल शंकर चाचा को फोन लगा, अपनी बात कह दी।

और अपना काम शुरू कर दिया। पुरानी पुस्तकों से भरे ट्रंकों को छोड़कर सारा सामान साफ कर दिया, सारा कमरा साफ कर दिया। माँ पिताजी का एकमात्र फोटो कपड़े में लपेट सूटकेस में रख लिया। दो दिन बाद ही भैया भाभी के लौटने से पहले मेरा सूटकेस वापसी के लिए तैयार था। लौटते ही सूटकेस दिख भैया ने पूछा, जा रही हो? तुम्हारा काम हो गया कॉलेज का? अभी रुक जाओ कुछ दिन, तब तो वक्त ही नहीं मिला बोलने का बैठने का। हाँ हो गया, रिजर्वेशन भी हो गया, दो घंटे बाद निकलूँगे। और हाँ भाभी, खाली थी तो माँ का पीछे वाला कमरा साफ कर दिया मैंने, अब आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अरे काहे को परेशान हुई शालू, हम कर लेते बाद में, कहती वे फौरन पहुँच गए उस कमरे का मुआयना करने।

0: तब तो वक्त ही नहीं मिला बोलने का बैठने का। हाँ हो गया, रिजर्वेशन भी हो गया, 2 घंटे बाद निकलूंगे। और हाँ भाभी, खाली थी तो माँ का पीछे वाला कमरा साफ कर दिया मैंने, अब आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अरे काहे को परेशान हुई शालू, हम कर लेते बाद में, कहती वे फौरन पहुंच गए उस कमरे का मुआयना करने। अगले ही पल जोर से भैया को आवाज़ देते ही वो भी पहुंचे, पीछे पीछे मैं भी। ये कमरा इतना खाली खाली कैसे है शालू? हाँ कुछ दिन तो लगेंगे ना भैया, माँ यहाँ काफ़ी समय तक थी ना इसी कोने में। नहीं माँ की बात नहीं है, यहाँ का भरा पूरा सामान कहाँ गया? अब उसका क्या भैया, वो तो पूरा का पूरा कबाड़ था, कुछ भी तो उपयोग नहीं था। तो बेच दिया? कैसी बातें करती हो भाभी, बेचूंगी क्यों, पागल हूं क्या? सही जगह दे दिया। लेकिन क्यों, किसे दिया और हमसे पूछे बिना क्यों? तांबा पीतल आज मार्केट में क्या भाव है पता भी है? कितना कीमती सामान था, अपने बुजुर्गों की पूंजी थी वो। अरे वाह, लेकिन इसमें चिल्लाने की क्या बात है भाभी, सब कुछ शंकर चाचा जी के वृद्धाश्रम को ही तो दिया है, और आध्यात्मिक पुस्तकें उनकी लाइब्रेरी को, उन्हें जरूरत भी थी। अब आप जैसे बहु बेटों के चलते काफी लोगों को रहना पड़ता है वृद्धाश्रम में, माँ को भी तो रखा ही था ना आपने। अब रही सामान की कीमत की बात, तो माँ से ज्यादा कीमती तो नहीं था ना वो। शंकर चाचा जी कह रहे थे वृद्धाश्रम को ये संपन्नता माँ के आशीर्वाद से मिली, अब इससे ज्यादा क्या खुशी व्यक्त करते वो, बोलो ना भैया। लेकिन तुम्हें ये मनमानी करने का अधिकार दिया किसने? भाभी का पारा चढ़ गया था। माँ मेरी भी थी, आपने बताया मुझे माँ को वृद्धाश्रम भेजने से पहले, भाली थी तो मुझसे कहते एक बार, ले जाती मैं, अब चिल्लाने की जरूरत नहीं है। जब 4 कमरों के होते माँ को कबाड़ मानकर वृद्धाश्रम में रखा जा सकता है, तो घर के सचमुच के कबाड़ को क्यों नहीं? और रही अधिकारों की बात, तो भाभी आप तो करो ही मत, क्योंकि अधिकार तो आपसे पहले के हैं और आपसे ज्यादा हैं। आखिर इस घर की बेटी हूँ, जन्मी हूँ यहाँ, आप बाद में आई हो, मेरे अधिकार तो अभी बहुत है इस घर पर भी और घर में भी, और उन्हें लेने में व्यवस्थित कायदे से आऊँगी। समर्थ होते हुए भी माँ की बेकदरी की सजा भुगतनी पड़ेगी आपको, चलती हूँ। और आप दोनों चाहो तो मेरे सूटकेस की तलाशी ले सकते हो, केवल माँ और पिताजी की फ़ोटो मैंने साधिकार रख ली है, क्योंकि उसकी आपको ज़रूरत हरगिज नहीं है। चलती हूँ, जल्दी ही आऊँगी अपने अधिकारों के कागजातों के साथ, तब तक इंतज़ार कीजिएगा, लौटूंगी।
1: सखियों अभी आप सुन रही थी ये कहानी अधिकार, कहानीकार थी कुंदा जोगलेकर। सखियों हमारा संविधान हमें बहुत सारे अधिकार देता है, उसी में से एक है आत्मरक्षा का अधिकार। भारतीय न्याय संहिता की धारा 34 और 35 के अंतर्गत हर नागरिक को अपनी आत्मरक्षा का कानूनी अधिकार प्राप्त है। आत्मरक्षा एक ऐसा प्रति उपाय जिसमें व्यक्ति अपने स्वास्थ्य और कल्याण को नुकसान से बचाता है। महिलाओं के लिए आत्मरक्षा केवल शारीरिक सुरक्षा का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और सशक्तिकरण का प्रतीक है। आजकल महिलाओं और बच्चियों को भी काम करने व शिक्षा पाने के लिए घर से दूर या कभी कभी रात में भी निकलना पड़ता है, ऐसे में स्वयं की रक्षा की चिंता तो रहती ही है। सखियों हमें चाहिए कि हम जब भी घर से बाहर निकलें पूरे आत्मविश्वास से निकलें, चौकन्ने और सतर्क रहें, साथ ही कुछ गैजेट भी रखें तो बेहतर होगा। आत्मरक्षा के लिए उपयोग होने वाले गैजेट छोटे पोर्टेबल और आधुनिक तकनीकी उपकरण होते हैं, जिन्हें आसानी से आपातकाल की स्थिति में उपयोग करने के लिए उन्हें डिज़ाइन किया जाता है। उदाहरण के लिए पेपर स्प्रे और जेल, इसे आत्मरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इससे जब अचानक स्प्रे किया जाता है तब आँखों व चेहरे पर अस्थायी रूप से जलन और धुंधलापन होता है, जिससे हमें भागने का समय मिल जाता है। पर्सनल अलार्म, यह एक छोटा की चेन जैसा डिवाइस होता है, बटन खींचने या दबाने पर यह बहुत तेज सायरन बजता है, जिससे हमलावर घबरा जाता है और आसपास के लोग सतर्क हो जाते हैं। टेजर या स्टन गन, यह बैटरी संचालित होता है, हमलावर को छूने पर यह तेज इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिससे मांसपेशियां सुन्न हो जाती हैं। टैक्टिकल फ्लैशलाइट, इसकी फ्लैशलाइट काफ़ी तेज चमकदार होती है, इसे आँखों पर करने से दिखना भी बंद हो जाता है। सेल्फ डिफेंस कीचेन, नुकीली छड़ वाली मजबूत मेटल कीचेन होती है, इसका उपयोग दबाव बिंदुओं पर प्रहार करने के लिए किया जा सकता है। सखियों अगर हम कुछ गैजेट्स का उपयोग आत्मरक्षा के लिए सावधानी पूर्वक करें

सखियों, हम सब अक्सर लोगों को ये कहते सुनते हैं कि मेरे घुटनों में दर्द रहता है, कमजोरी महसूस होती है, जबकि हम तो सब कुछ खाते हैं। आजकल केमिकल वाली खाद से फसलें उगाई और बड़ी की जाती हैं। हर खाने पीने वाली चीज़ों में केमिकल प्रिजर्वेटिव के रूप में मिला होता है, जिसके चलते खाद्य सामग्री की गुणवत्ता प्रभावित होती है। ऐसे में हमें उतने पोषक तत्व नहीं मिलते जितने मिलने चाहिए। सखियों, मोरिंगा, जिसे हम सहजन भी कहते हैं, हमारे लिए एक सुपर फूड है। इससे मिलने वाली लंबी सी फली को हम अपने सांभर में ज़रूर डालते हैं, पर सखियों, इसकी पत्तियों और फूलों में भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसीलिए इसे सुपर फूड की श्रेणी में रखा गया है। सखियों, इसकी फली

छाइयाँ हमेशा नहीं मिलती, पर अगर हम इसकी पत्तियों को तोड़कर छांव में सुखाकर रख लें तो इसे हम साल भर उपयोग कर सकते हैं। सूखी हुई पत्तियों का पाउडर बनाकर एयर टाइट डिब्बे में रख लें। इस पाउडर को आटे में मिलाकर पराठा या रोटी बनाई जा सकती है। इसका सूप भी बनाया जा सकता है और लड्डू भी आटे में मिलाकर बना सकते हैं। इसके फूलों की सब्जी भी सखियों बहुत स्वादिष्ट लगती है। अक्सर रोड किनारे मिलने वाले मोरिंगा के पेड़ से पत्तियां, फल व फलियां तोड़कर लाएं व अपने हिसाब से इसे ज़रूर उपयोग करें। सखियों, मोरिंगा की पत्तियों में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए और सी, साथ ही अमीनो एसिड्स भी पाए जाते हैं। शोधों से ये भी पता चला है कि दूध से ज़्यादा कैल्शियम इन पत्तियों में पाया जाता है। आयरन भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए ये हड्डियों को मजबूत करते हैं। साथ ही आयरन हमारे हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है। विटामिन ए और सी त्वचा और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। साथ ही इसमें पाए जाने वाले अमीनो एसिड्स प्रोटीन को बनाने में सहायक होते हैं। तो सखियों, मोरिंगा या सहजन इसीलिए सुपर फूड माना गया है। आप भी प्राकृतिक रूप से, शुद्ध रूप से, प्रकृति के उपहार इस सुपर फूड का सेवन जरूर करें और अपने आप को चुस्त और दुरुस्त रखें। इसी के साथ अपनी दोस्त धम्ममित्रा को जाने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: आकाशवाणी की ग्वालियर केंद्र के योगदान से अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है एक अंतराल का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की भेंट है। आज इसमें आप सुनेंगे मेहरबान सिंह कुशवाहा के गाए चौकड़िया गीत।

मेहरबान सिंह कुशवाहा के गाए चुखड़िया लोकगीत अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत। प्रस्तुति आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की थी। प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया गया। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इसमें आप सुनेंगे हरजिंदर सिंह तेजा के गाए भजन। प्रस्तुति आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की है।

हरजिंदर सिंह तेजा के स्वर में अभी आप सुन रहे थे भजन। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। प्रस्तुति आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोताओं, दोपहर के 2 बज रहे हैं। लीजिए प्रस्तुति कार्यक्रम फिल्म संगीत। सबसे पहले सुनते हैं लव स्टोरी फिल्म का गीत। आशा भोसले और अमित कुमार की आवाज़ें हैं। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और इसकी धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

0: कोई मॉडल पूरा न लगता है,
1: ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है।
2: कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है तेरी कसम फिल्म से, आवाजें अमित कुमार के साथ लता मंगेशकर की है, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत आर डी बर्मन का है।

तेरी कसम फिल्म का गीत अभी आपने सुना अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, और इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करते हैं। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से

0: बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। प्रादेशिक समाचारों के लिए कृपया इंतजार कीजिए।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महान वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। राज्यपाल पटेल ने लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में रानी दुर्गावती के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में जबलपुर के पास रानी दुर्गावती की समाधि स्थल नरई नाना में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संबोधित किया।
2: मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी पहली कैबिनेट अगर कहीं हुई है तो जबलपुर में रानी दुर्गावती को समर्पित करते हुई है। उनकी एक राजधानी संग्रामपुर भी थी, हमने दूसरी कैबिनेट संग्रामपुर में भी की और अभी मदन महल के आसपास पूरा रानी का अपना 100 करोड़ की लागत से उनका वो गौरवशाली इतिहास को जीवंत करते हुए उनके जीवन के विविध पक्षों को दिखाने के लिए 100 करोड़ की लागत से वो एक नया संस्थान बन रहा, बहुत जल्दी भी उसका लोकार्पण होने वाला।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शाम भोपाल स्थित रविंद्र भवन में राज्य स्तरीय साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 का शुभारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित इस विशेष अभियान का उद्देश्य नागरिकों को साइबर अपराधों से सुरक्षित रखना तथा जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना भी उपस्थित रहेंगे। अभियान के तहत आमजन, विद्यार्थियों, युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को साइबर ठगी, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डिजिटल सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं के प्रति जागरूक किया जाएगा। राज्य वित्त आयोग के सदस्य आज भोपाल संभाग के दौरे पर हैं। आयोग नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को लेकर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से सुझाव ले रहा है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष जयवान सिंह पवैया सहित वीआईपी सर्किट हाउस में सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे हैं। आयोग की टीम संभागायुक्त कार्यालय में अधिकारियों के साथ वृहद समीक्षात्मक बैठक भी करेगी। बैठक में निकायों की वित्तीय मजबूती, स्वच्छता, पेयजल और राजस्व स्रोतों में वृद्धि के उपायों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में रोजगार के क्षेत्र में सतत रूप से नवाचारों की आवश्यकता है। प्रदेश में धार्मिक, प्राकृतिक, पुरा धरोहर से संबंधित पर्यटन क्षेत्र समृद्ध हैं। कल मंत्रालय में कौशल विकास और रोजगार विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को आवश्यक मार्गदर्शन के लिए गाइड की व्यवस्था को सशक्त बनाने और विभिन्न व्यंजनों का आनंद दिलवाने के लिए कार्य की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। युवाओं को बड़ी संख्या में इन कार्यों से रोजगार मिलेगा। कौशल विकास और रोजगार विभाग का पर्यटन विभाग से तालमेल स्थापित कर यह कार्य संभव है। देश के युवा नेतृत्व वाले 6 स्टार्टअप्स ने यूथ को लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज 2026 के 8वें संस्करण में जीत हासिल की है। ये पहल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी इंडिया और सिटी फाउंडेशन द्वारा अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के सहयोग से चलाई जा रही है और टी हब फाउंडेशन द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस वर्ष चैलेंज के लिए 28 राज्यों के स्टार्टअप से 350 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। अब रुख करते हैं खेलों की खबर का। हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम के नए कोच टिम व्हाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदेम शिलेमा चानू युवा टीम की कप्तान संभालेंगी जबकि निधि और एंगिल हर्षा रानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेदारी संभालेंगी। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून की आहट शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में बालाघाट, छिंदवाड़ा और पांढुना के रास्ते प्रदेश में मानसून दाखिल हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश के 42 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश के आसार हैं। ग्वालियर, भिंड और मुरैना सहित कई जिलों में गर्मी का असर बना रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले में उमरिया स्थित आश्रम परिसर में पौधरोपण कार्यक्रम में 1100 पौधे लगाने का सामूहिक संकल्प लिया गया। आगरमालवा के बड़ौद में दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायक उपकरण शिविर में हितग्राहियों को मौके पर ही कृत्रिम अंग और कैलिपर्स वितरित किए गए। शिवपुरी में जिला प्रशासन ने कोचिंग और शैक्षणिक संस्थानों के निरीक्षण के दौरान फायर सेफ्टी नियमों में लापरवाही बरतने पर 8 संस्थानों को सील कर दिया है। और गुना कलेक्टर के आदेश के मुताबिक आगामी 23 अगस्त तक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर समाचार थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के

0: ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सहाध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सहाध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों के जरिए स्थानीय घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। लोगों से दूतावास को अपने बारे में जानकारी देने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर हैं +98912810915। दूसरा नंबर है +98912810909। तीसरा नंबर +98912810902। और चौथा नंबर है +98993217935। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है।
1: 4 महीने से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। श्री रूबियो कल देर रात अबू धाबी पहुंचे। उनका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगा

0: आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रही, हालांकि दोनों पक्षों ने बैठक के बारे में अलग अलग राय व्यक्त की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक में उनके परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2024 में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए ट्रस्ट को लगभग 5 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की थी। श्री भंडारी ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद ट्रस्ट को लगभग 100 करोड़ रुपये की अनुमानित कीमत की भूमि आवंटित की गई। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
2: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है, जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है, सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग, उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अश्मि पूजन अथवा ग्राउंड ब्रोकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती हैं उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक, जिसके अंदर 9 स्टेशंस हैं।
1: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ताराताला के पास निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन, चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ITIR News हिंदी को फॉलो कर

0: सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले दो दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में सभी संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर हैं।
1: अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद असम में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संभावित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप असम में धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर सहित निचले क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अगले एक से दो दिनों में बाढ़ का पानी और आगे के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। SDRF, NDRF और अन्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। निचले तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पालन करने, जलमग्न क्षेत्रों से दूर रहने तथा छोटी नावों से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदिम शिलेमा जानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेवारी संभालेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में खेले गए ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। डैनियल मुनोज के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से कोलंबिया ने लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 शानदार गोल की बदौलत पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान पर 5-0 से जीत दर्ज की। रोनाल्डो अब 6 अलग अलग विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 908 अंक के उछाल के साथ 77,109 पर, जबकि निफ्टी 241 अंक बढ़कर 24,065 पर कारोबार कर रहा था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित ऐतिहासिक हेमिस मठ में आज उत्साह और श्रद्धा के साथ हेमिस उत्सव की शुरुआत हुई। 2 दिन के उत्सव में देश विदेश के हजारों श्रद्धालु, पर्यटक, संस्कृति प्रेमी और बौद्ध विद्वान शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला हेमिस उत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं हम आपके हैं कौन। इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर, एसपी बालासुब्रमण्यम और साथियों की आवाज़ में। गीत लिखा है रविंद्र रावल ने, संगीत राम लक्ष्मण का है। इस गीत को पसंद किया है बिलहरी बड़खेरा कटनी से संतोष सिंह ठाकुर, अवधेश कुमार दुबे, सुमेर पटेल, सुदामा सेन, बारेलाल बढ़ई, मुन्ना खान एवं ग्राम पहरुआ से रामकुमार लोधी, गोविंद यादव और संजय पुरी। इसी गीत को सुनना चाहा है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा और साथ ही साथ ये फरमाइश हमारे हाथ में है डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अन्ना अनिष्का और तन्मय गजभिये की। इन सभी की पसंद पर सुनते हैं ये गीत।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun!

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं उपाध्याय नगर देवास से मुरारी लाल वर्मा, मनीष वर्मा, शिवम वर्मा, राजा रामनगर देवास से ही ये फरमाइश है, राजू अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन, चीकू सानू, नागू सिंह कुमावत, राजकुमार कुमावत और अभिषेक कुमावत की, साथ ही साथ जो गीत इनकी पसंद पर हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसी के लिए फरमाइश हमें मिली है सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन, तानिया, शिवाजी चौक राजीम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और क्रिश श्रीवास्तव, साथ ही साथ अमरपुरा पेंड्रा से ये हमारे श्रोता ने पत्र लिख भेजा है, दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता, सुरुचि, दिशा और लवी श्रीवास्तव ने, ये हमारे सभी श्रोता सुनना चाहते हैं क्रिश फिल्म का गीत सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। गीत लिखा है इब्राहिम अश्क ने और संगीत राजेश रोशन का है।

कहो ना प्यार है इस फिल्म का गीत अब आप सुनेंगे, जिसके बोल लिखे हैं इब्राहिम अश्क ने, संगीत राजेश रोशन का है और आवाज़ें बाबुल सुप्रियो और साथियों की है। इस गीत को सुनना चाहा है बेमे तरह से सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी, नवागढ़ कटई से। ये हमारे श्रोता है नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा। साथ ही साथ इसी गीत को सुनना चाहा है शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल तथा चेतन मनवर, रोशनी मनवर, बेबी प्रियांशी और महादेव घाट अमलेश्वर से। ये खत हमें भेजा है डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी, सूरज, ज्योति, रेयांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर ने। हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं कहो ना प्यार है फिल्म का ये गीत।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की आवाज़ों में खुदा गवाह फिल्म का गीत, जिसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और पसंद हमारे इन श्रोताओं की है। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधड़े, आरती जोंधड़े, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन, पटेल नगर मलोट पंजाब से इस गीत को पसंद किया है डॉक्टर रमेश कुमार जाजूरिया, गीता रानी जाजूरिया, गगनदीप जाजूरिया और बीबी आरजू जाजूरिया ने।

और कार्यक्रम के अंत में हमारे इन श्रोताओं की पसंद आप तक पहुंचाते हैं। सिक्सटर सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से ये हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज, साहिल और हुलासराम कटरे, नानेश्वरी कटरे, ये हमारे श्रोता है करियागंड जिला बालाघाट से, और रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, इन्होंने सुनना चाहा है खुदगर्ज फिल्म का गीत मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाज़ों में। गीत इंदिवर का है, संगीत राजेश रोशन का।

0: खुदगर्ज फिल्म के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करते हैं। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थीं, जिन्होंने संप्रभुता और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए मुगल आक्रमणकारियों के खिलाफ वीरतापूर्ण संघर्ष में अपने प्राणों का बलिदान दिया। रानी दुर्गावती के समाधि स्थल जबलपुर के नरई नाला में आयोजित विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए उनका शौर्य, अदम्य साहस और रणकौशल देश के गौरवशाली इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है, जो विशेष रूप से बेटियों के लिए प्रेरणादायक है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में रानी दुर्गावती के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। देश के युवा नेतृत्व वाले 6 स्टार्टअप्स ने यूथ को लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज 2026 के 8वें संस्करण में जीत हासिल की है। ये पहल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP इंडिया और सिटी फाउंडेशन द्वारा अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के सहयोग से चलाई जा रही है और टी हब फाउंडेशन द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। राज्य वित्त आयोग के सदस्य आज भोपाल संभाग के दौरे पर हैं। आयोग नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को लेकर जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से सुझाव ले रहा है। और हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम व्हाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

मीडिया वे पर सांध्यकालीन सभा आरंभ की जाएगी शाम 5 बजे। 5:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युवावाणी, प्रस्तुति आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की होगी। सांध्यकालीन सभा के अंतर्गत फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं 5:33 पर, 6:30 पर और रात 8:15 पर। इस बीच शाम 6 बजे सुनिएगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। सात बजकर 21 पर ग्राम सभा, प्रस्तुति आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की होगी। रात 8 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से पुनः जुड़कर सुन सकते हैं कार्यक्रम सुर्खियों में। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 9:30 पर अनुप्रसारित करेंगे चर्चा का विषय है। रात 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे नाटक हतक, जिसके लेखक है सआदत हसन मंटो, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल। दस बजकर 30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी होगा, जिसमें आप सुनेंगे संगीता गोस्वामी का ख्याल गायन राग होगा यमन। ये थी जानकारी सांध्यकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। ये मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स, DTH के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन और वेव्स OTT पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। दोपहर के 3:02:40 हुए हैं। मीडिया वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं समाप्त करते हैं। शाम 5 बजे इन्हीं मीटर्स पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। इस दौरान DTH के ऑडियो चैनल पर कार्यक्रम जारी रहेंगे। DTH के ऑडियो चैनल पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का भोपाल केंद्र। लीजिए सुनिए कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें आज आप सुनेंगे मेहरबान सिंह कुशवाहा के गाए चौकड़िया लोकगीत।

ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। श्रोताओं, मीडियम वेव पर सभा समाप्त करने से पूर्व लीजिए सुनिए हमारी सांध्यकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। आज इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं तजेंद्र सिंह तेजा के गाए भजन।

0: हरजिंदर सिंह तेजा के गाए भजन अभी आप सुन रहे थे। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का भोपाल केंद्र।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। सबसे पहले सुनिए राजू बन गया जेंटलमैन, इस फिल्म का गीत। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ें हैं, गीत के बोल लिखे हैं मदन पाल ने और संगीत जतिन ललित का है।

वन टू का फोर इस फिल्म का गीत आप सुनते हैं लता मंगेशकर और सोनू निगम की आवाज़ों में, एआर रहमान के संगीत निर्देशन में। गीत महबूब का है।

डीटीएच के ऑडियो चैनल आकाशवाणी भोपाल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत, और अब सुनते हैं पीके फिल्म का गीत शान और श्रेया घोषाल की आवाजों में, गीत स्वानंद किरकिरे का, संगीत शांतनु मोइत्रा का।

दबंग टू इस फिल्म से अब सुनते हैं इरफान कामिल का लिखा गीत, इरशाद कामिल का लिखा गीत। संगीत साजिद वाजिद का है और आवाजें सोनू निगम और तुलसी कुमार की है।

कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं अग्निपथ फिल्म का गीत उदित नारायण और सुनिधि चौहान की आवाजों में। गीत लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत अजय अतुल का है।

0: अग्निपथ फिल्म के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत प्रोग्राम यहीं समाप्त करते हैं। ये आप सुन रहे थे डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को ईरान की सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने आज नई दिल्ली में स्टील सेक्टर में डिजिटलाइजेशन पर आयोजित चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए इंडस्ट्री से भविष्य की ग्रोथ के लिए डिजिटलाइजेशन को मुख्य आधार बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भारत 2018 से दुनिया का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक बना हुआ है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में विकसित मध्य प्रदेश विषय पर आयोजित कॉन्क्लेव में शामिल उद्योगपतियों से राज्य में मौजूद निवेश संभावनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश की विशेषता है कि एक बार जो मध्य प्रदेश आता है यहीं का होकर रह जाता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल कौशल विकास और रोजगार विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में धार्मिक और प्राकृतिक पुरा धरोहर से संबंधित पर्यटन क्षेत्र समृद्ध है। पर्यटकों को आवश्यक मार्गदर्शन के लिए गाइड की व्यवस्था को सशक्त बनाने और विभिन्न व्यंजनों का आनंद दिलवाने के लिए कार्य की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शाम भोपाल स्थित रविन्द्र भवन में राज्य स्तरीय साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 का शुभारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों को साइबर अपराधों से सुरक्षित रखना और जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा देना है। और प्रदेश में मानसून की आहट शुरू हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में बालाघाट, छिंदवाड़ा और पांडुना के रास्ते प्रदेश में मानसून दाखिल हो सकता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का भोपाल केंद्र और ये प्रसारण आप सुन रहे हैं DTH के माध्यम से। पेशे खिदमत है उर्दू प्रोग्राम कहकशां।

रहमतें खुदा और बंदे की उम्मीदें। सामईन, ज़िंदगी एक सफ़र है। इस सफ़र में कभी खुशियों के फूल खिलते हैं और कभी गमों के कांटे रास्ता रोक लेते हैं। कभी कामयाबी हमारे कदम चूमती है और कभी नाकामी दिल को बोझल कर देती है। लेकिन एक चीज़ है जो इंसान को टूटने नहीं देती, और वो है उम्मीद। उम्मीद इंसान के दिल का वो चिराग है जो अंधेरी रातों में भी रोशनी देता रहता है। अगर उम्मीद बाकी हो तो वीरान रास्ते भी मंजिल तक पहुंचा देते हैं, लेकिन अगर उम्मीद ख़त्म हो जाए तो रोशन रास्ते भी अंधेरे लगने लगते हैं। सवाल ये है कि बंदे की उम्मीद का सर चश्मा क्या है, ये उम्मीद कहाँ से पैदा होती है। इसका जवाब कुरान देता है। अल्लाह ताला फरमाता है, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنُطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ۔ इसका तर्जुमा है, ऐ मेरे बंदों, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। गौर कीजिए, यह खिताब सिर्फ नेक लोगों से नहीं बल्कि यह खिताब उन लोगों से भी है जिनसे गलतियां हुई, जिन्होंने गुनाह किए, जो जिंदगी के किसी मोड़ पर भटक गए। गोया अल्लाह ताला खुद अपने बंदों को उम्मीद दिला रहा है। सामईन, अगर दुनिया का कोई इंसान हमसे नाराज हो जाए तो मुमकिन है कि वो हमें माफ ना करे, लेकिन अल्लाह ताला अपनी रहमत के दरवाजे बंद नहीं करता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदों पर उस माँ से भी ज्यादा मेहरबान है जो अपने बच्चे पर मेहरबान होती है। सोचिए, माँ कितनी मोहब्बत करती है। बच्चा बार बार गिरता है, माँ बार बार उठाती है। बच्चा गलती करता है, माँ फिर भी सीने से लगा लेती है। फिर वो रब कितना रहीम होगा जिसने माँ के दिल में मोहब्बत रखी है। इसी ख्याल के साथ अब वक्त हुआ है आज की पहली कव्वाली का। मुश्किल कुशा ओरे नूरे खुदा ओरे रंगरेजा। फिल्म है जॉली एलएलबी, शायर हैं जुनेद वासी, आवाजें हैं सुखविंदर सिंह, मुर्तजा मुस्तफ़ा, कादिर मुस्तफ़ा की। समाअत कीजिए।

आज यौम आशूरा भी आने वाला है। मुहर्रम हमें सिर्फ नए साल की शुरुआत नहीं बताता बल्कि उम्मीद, सब्र और अल्लाह पर भरोसे का एक अजीम सबक भी देता है। सही बुखारी में आता है कि आशूरे के दिन अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म से निजात अता फरमाई। एक तरफ ताकतवर फिरौन था, दूसरी तरफ बेसरुसामान लोग थे, सामने समंदर था, पीछे दुश्मन का लश्कर। जाहिरी हालात यही कहते थे कि अब कोई रास्ता नहीं, लेकिन अल्लाह की रहमत ने वहां रास्ता पैदा कर दिया जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। वाकई आज भी हमें यही सबक देता है कि जब जिंदगी में हर तरफ अंधेरा आ जाए तब भी अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। मुहर्रम का पैगाम सिर्फ तारीख नहीं, जिंदगी का सबक है। एक माँ अपने बीमार बच्चे के सरहाने कई कई रातें जागती है। डॉक्टर बदलते हैं, दवाएं बदलती हैं, मगर माँ की उम्मीद नहीं बदलती। वो जानती है कि एक दिन मेरा बच्चा सेहतमंद हो जाएगा। इसी तरह बंदा अपने रब से दुआ करता रहता है, कभी फौरन जवाब मिल जाता है, कभी ताखीर होती है और कभी अल्लाह दुआ के बदले कोई मुसीबत डाल देता है, लेकिन दुआ कभी जाया नहीं जाती, मुसीबत टल जाती है। ये यकीन ही बंदे की उम्मीद को जिंदा रखता है। तो आइए सुनते हैं इसी बात पर एक और कवाली। ईमां की रोशनी है मोहम्मद के शहर में। शायर हैं पयाम सईदी, आवाजें हैं जानी बाबू और साथियों की, समाप्त कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम संग्रहालय से। इसमें आज आप सुनेंगे भुवन मोहिनी, इस रेडियो धारावाहिक की 6वीं कड़ी।

0: अब तक धारावाहिक भुवन मोहिनी में आपने सुना, राजकुमार विजय श्रवा से प्रेम करने के कारण धारा नगरी के राजा द्युम्न सेन ने नर्तकी भुवन मोहिनी को देश निकाला दे दिया था। निर्वासित भुवन मोहिनी ने इंद्रप्रस्थ नरेश आदित्य सेन के यहाँ आकर आश्रय लिया, परंतु कुछ ही महीनों के बाद राजकुमार भी राजमाता से नाराज होकर इंद्रप्रस्थ पहुंच गया। लोग उसे न पहचान सके इसलिए वो आश्रम में श्रेष्ठ पुत्र बनकर रहने लगा, परंतु वास्तविकता इंद्रप्रस्थ के राजा आदित्य सेन तक पहुंच ही गई और उन्होंने राजकुमार को राजकीय अतिथि बनाया और एक उत्सव आयोजित कर सम्मानित किया। इस सम्मान उत्सव में भुवन मोहिनी का गायन और नृत्य हुआ, जिसके माध्यम से भुवन मोहिनी अपनी पीड़ा को राजकुमार के हृदय तक पहुंचाने में सफल हुई। भुवन मोहिनी को दुखी पाकर राजकुमार भी बहुत दुखी हुआ, परंतु इसी बीच हुआ ये कि लौटते समय रास्ते में उसकी नज़दीकी राजकुमारी चंद्रहासिनी से बढ़ गई। राजकुमार भुवन मोहिनी को अपने आवास में बुलवाता है, परंतु चंद्रहासिनी भी आ जाती है। आगे क्या होता है ये सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की 6वीं कड़ी में।
1: सर्वप्रथम भावी सम्राट को वचनबद्ध होना पड़ेगा कि मैं जिस प्रकार चाहूंगी वो पालन करेंगे।
2: एवं अस्तु।
1: तो सुनिए देव, राजकुमारी चंद्रहासिनी आपका आतिथ्य ग्रहण करने से पूर्व ये जानना चाहती हैं कि आपके जीवन में उन्हें कोई स्थान प्राप्त होगा या नहीं।

0: क्या इस प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है, और वो भी इसी समय?
1: अवश्य देव।
0: किंतु मैं समझता हूं कि मेरे उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे प्रश्न प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बड़े ही महत्वपूर्ण और गोपनीय होते हैं। फिर भी यदि तुम उत्तर चाहती ही हो तो स्वयं तुम्हें मेरे जीवन और जीवन की भावनाओं का अधिक ज्ञान है। तुम स्वयं राजकुमारी के साथ बैठकर वही उत्तर दे सकती हो जो मैं स्वयं देता।
1: देव, राजकुमारी चंद्रहासिनी ने अपनी ओर से निश्चय कर लिया है कि वो या तो अपने जीवन में आपको प्राप्त करेंगी, अन्यथा आजीवन कुमारी रहकर निराश जीवन का पटाक्षेप कर देंगी।
0: क्या ऐसे संकल्प का प्रत्यक्ष लाभ क्या है?
1: ना हो, किंतु ऐसे जीवन को स्वीकार करने की प्रेरणा भी तो आपने ही दी है। आप ही ने राजकुमारी के शून्य जीवन में अनेक सरस भावनाओं को अनुप्राणित किया है। आप ही के द्वारा प्रेमोपहार प्राप्त कर राजकुमारी पूर्ण रूप से कृतकृत्य हुई है। वो देखिए ना, आपका हृदय चूमने वाला मुक्तामणि माणिक हार आज चंद्रहासिनी के जीवन की अमूल्य निधि बन गया है। और अपनी कनिष्ठिका उंगली दिखाइए। ये अमूल्य मणिजड़ित अंगूठी राजकुमारी ने प्रेमोपहार के रूप में प्रदान की है। इसकी लाज तो रखनी होगी ना।
0: आज तुम्हें क्या हो गया है भुवन मोहिनी? क्यों आत्मनाश करने पर तुली हो? जो हृदय तुम्हारी भेंट चढ़ गया उसे तुम अस्वीकार भले ही कर सकती हो, किंतु तुम्हारी ओर से ये प्रस्ताव शोभा नहीं देता कि एक बार समर्पित किया हुआ हृदय दोबारा समर्पण का व्यापार रचाए।
1: देव, बड़ी तत्परता, खोज और प्रयास के पश्चात मैंने राजकुमारी चंद्रहासिनी को आपके योग्य जीवन संगनी के रूप में चुना।

0: ना था। मैं जानती हूँ कि देव, यदि अपने स्नेहदान से मुझे भाग्यशाली बनाते तो मैं सारे साम्राज्य में अपने साथ आपके वंश की भी अपकीर्ति कराती। युगों की संचित आपकी कीर्ति और प्रतिष्ठा मेरे कारण नष्ट हो जाती और आपके पवित्र और यशस्वी कुल में कलंक की कालिमा पुत जाती। मैं अपने तुच्छ प्रेम के नाम पर आपका सर्वनाश नहीं चाहती थी देव। आपकी अपकीर्ति को मैं सहन नहीं कर सकती थी। मैं आपके चरण छूती हूँ मेरे प्रेम के वरदायक देवता। यदि मुझे अपने चरणों के आश्रय से दूर न रखना चाहते हो तो राजकुमारी चंद्रहासिनी को अपने जीवन संगनी के रूप में अवश्य चुने। मैं राजकुमारी के माध्यम से इन चरणों की पावन पूजा का सुख लूटूंगी और अपने इस तुच्छ जीवन को सफल और सार्थक बना लूंगी।
1: तुम ये क्या कर रही हो भुवन मोहिनी? मेरे हृदय स्थल में अपनी प्रतिमा के स्थान पर चंद्रहासिनी की प्रतिमा स्थापित करना चाहती हो? तुम ये क्यों नहीं समझती हो कि प्रेम व्यवहार में विकल्प नहीं हुआ करते?
2: राजकुमार और भुवन मोहिनी के मध्य हो रहा ये पूरा वार्तालाप मेरा अपमान है या मेरा आदर, समझ नहीं पा रही हूँ। मेरे लिए प्रेम की भीख मांगी जा रही है और वो भी एक नर्तकी के द्वारा जो इस प्रेम की सौमनी भी है, समझ नहीं पा रही हूँ कि अपने जिस सौंदर्य के मद में चूर होकर मैं भुवन मोहिनी को कई बार अपमानित कर चुकी हूँ, उसी सौंदर्य को भुवन मोहिनी के किस आकर्षण के वशीभूत होकर राजकुमार चूर चूर कर रहे हैं। क्यों एक नर्तकी को इतना ऊंचा और महान बना रहे हैं कि वो सैकड़ों राजपुत्रियों के रूप और वंशगत महानता से कहीं अधिक आदरणीय और श्रद्धामय बनते जा रहे हैं?
1: तो ठीक है भुवन मोहिनी, यदि मुझे विवाह करना ही पड़ा तो अवश्य ही मैं राजकुमारी का संवरण करूंगा। किंतु प्रश्न यह है कि राजकुमारी कब तक प्रतीक्षा करेंगी?
2: क्षमा चाहती हूँ देव, आपने प्रश्न किया कि मैं कब तक प्रतीक्षा करूंगी, तो यही कहना चाहूंगी कि आपको प्राप्त करने की आशा मेरे जीवन में इतनी मूल्यवान है कि मैं एक नहीं अनंत जीवन तक आपकी प्रतीक्षा करूंगी। यदि मैंने जाना कि देव के जीवन का व्रत किसी महान उद्देश्य के लिए आत्मोत्सर्ग करना है तो उस समय भी मैं आपके ही पथ का अनुसरण करूंगी।

ये कैसी दुविधा है? भुवन मोहिनी और चंद्रहासिनी मेरे लिए प्रेममयी सरिता की दो दुकोल के समान है, जिनमें परस्पर विचार साम्य देखकर समझ नहीं आता कि अंततः मुझे किस किनारे का सहारा लेना होगा। यदि मैं एक किनारे में ठहर कर अपने भ्रमित और उत्तप्त जीवन की थकान मिटाने का प्रयास करूंगा, तो स्वाभाविक रूप से दूसरा किनारा शून्य, नीरव और निःसार बन जाएगा। एक ओर यदि मिलन की रागिनी गुंजरित होकर बसंत की मादकता भरेगी, तो दूसरी ओर दीर्घ वियोग की विहाग रागिनी करुणा और अनमनेपन की सृष्टि करेगी। अंततः क्या होगा? जीवन में अंतर्द्वंद्व पना रहेगा, जो पल भर भी शांत नहीं रहने देगा। भुवन मोहिनी कितनी आत्मत्यागनी है। उसने जाने अनजाने यौवन प्रभात में प्रेम के जिस कोमल वृक्ष को आरोपित किया था और उसे अपने स्नेह, ममता और त्याग के जल से सींच सींच कर पल्लवित और पुष्पित किया था, आज वो प्रेम वृक्ष

0: अपनी उन्नत शाखाओं को चारों ओर फैलाए गर्व से उसको देख रहा है। अभी वो समय आ गया था जब वो प्रेम वृक्ष अपने मधुर फलों का रसा स्वादन कराकर चिर व्यथित और उत्तप्त जीवन को शांति प्रदान करता। तो भुवन मोहिनी एक दार्शनिक की भांति उस प्रेम वृक्ष की छाया और फल से अनासक्त हो रही है, और दूसरी ओर मैं एक निविड़ अंधकार से भरे आसक्त जीवन को लेकर मृग तृष्णा में ही जीवन व्यतीत करने की बात सोच रहा हूं। क्या ये धोखा नहीं है? आज राजकुमारी सर्वांतःकरण से अपना सर्वस्व उस व्यक्ति को सौंपने जा रही है जिसका हृदय अतीत काल से ही दूसरे की धरोहर बन चुका है। राजकुमारी, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे सुकुमार और पवित्र जीवन का सर्वनाश करूं। तनिक सोचो, ये महान मानव जीवन अनेक लुभावने आकर्षणों का केंद्र बिंदु बनने के लिए नहीं प्राप्त हुआ है। ये तो जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उपहार है।
1: देव, मैं नारी हूं, स्वयं मायामयी। मुझे मुक्ति नहीं, बंधन ही चाहिए। इसी में मेरे जीवन की सार्थकता है, और आपकी सेवा में ही मेरे जीवन का जप, तप और भोग निहित है। आप स्वयं ज्ञानाश्रय हैं। मैं इन चरणों को त्याग कर अन्यत्र कहाँ जाऊंगी? मैं चाहूंगी कि आत्मोद्धार पथ पर आप ही का अनुसरण करूं, किंतु मैं जो कुछ करूंगी वो अपने आप नहीं, आपसे प्रेरणा लेकर, आपके छाया बनकर। मैं ज्ञान प्रकरण की उपासिका नहीं, मेरा निश्चल ज्ञान यही है कि पग पग पर आपका अनुगमन करते हुए आपकी साधना की सिद्धि बनूं। दूसरा प्रश्न है भुवन मोहिनी का, तो मैं आपको उलझन में नहीं डालना चाहती। अंतःकरण से केवल यही कह सकती हूँ कि उसका चरित्र उदात्त है, वो महान है। उसने मेरे लिए अपना सर्वस्व त्याग करने का व्रत लिया है। मैं अपने को उसकी चेरी समझूंगी, भले ही कहने को वो नर्तकी हो और मैं राजपुत्री। मैंने अपनी झोली उसके समक्ष फैलाई है। उसने उदारता पूर्वक मुझे वो सब कुछ दे डाला है जो एक नारी दूसरी नारी को नहीं दे सकती। इसलिए देव, मैं सदैव उसकी कृतज्ञ रहूंगी। उसकी छोटी बहन बनकर उसके अतुलित प्यार की भागिनी बनूंगी।
0: ज्ञात होता है कि राजकुमारी ने महानता के आदर्श भुवन मोहिनी से प्राप्त कर लिए हैं, और भुवन मोहिनी को परखने की दृष्टि भी प्राप्त कर ली है। मुझे अब कोई आपत्ति नहीं, किंतु इतना फिर भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भुवन मोहिनी की स्मृति को मेरे हृदय से उखाड़ फेंकने का प्रयास कभी नहीं होना चाहिए। अन्यथा मैं अपनी प्रियता प्रदान करने के स्थान पर केवल घृणा ही दे सकूंगा।
1: मुझे स्वीकार है, मैं बस आपके चरणों में स्थान पाना चाहती हूँ।
2: अरे उठिए उठिए राजकुमारी, आज से हम दोनों सगी बहन ही हैं। हम एक दूसरे के सुख दुख में समान भागीदार होंगी।
0: आज तो राजकुमारी का अतिथि सत्कार करना मेरा परम धर्म है। आज हम सब मिलकर एक प्रेममय सहभोज का आयोजन करें, और कल इसी समय हम सब कुरुक्षेत्र के मेले की ओर प्रस्थान करेंगे।
3: मित्र, आज इस पर्णकुटी में कुबेर और सुरेश की राजसभा का सुख प्राप्त हो रहा है। देव, यदि आज्ञा हो तो मैं भी अपनी सेवा द्वारा कृतकृत्य हो लूं।
0: क्यों नहीं अरण्यक, देखो आज इंद्रप्रस्थ की राजकुमारी तुम्हारे निर्वासित युवराज की अतिथि हैं। उनकी अतिथि सेवा के लिए उत्तम से उत्तम राजसी भोजन

0: बनवाओ। और हां, जो भी भूखा प्यासा अतिथि इधर से गुजरे, उन सबका भरपूर आतिथ्य करके दान दक्षिणा आदि देकर विदा कराओ।
1: जो आज्ञा युवराज।
2: अरण्यक,
3: बोलो सारथी।
2: हम लोग कब तक रहेंगे कुरुक्षेत्र के मेले में?
3: जब तक हमारे स्वामी चाहेंगे।
2: एक बात बताओ अरण्यक।
3: हाँ।
2: राजकुमार जी विवाह तो राजकुमारी जी के साथ ही करेंगे ना?
3: क्यों?
2: दो दो सौंदर्य स्वामिनियों के साथ हमारे स्वामी रमण कर रहे हैं। भुवन मोहिनी को लेकर राजकुमारी जी को कोई आपत्ति नहीं दिखती। समझ में नहीं आता कि युवराज के हृदय के समीप अधिक कौन है।
3: मैं बताता हूं। इस प्रश्न का उत्तर तो संभवतः राजकुमार के पास भी ना होगा। परंतु एक बात मैं बता दूं।
2: क्या?
3: राजकुमार जी को तुम उतना नहीं जानते जितना मैं जानता हूं।
2: इसीलिए तो तुमसे पूछा।
3: तुम देखते होगे, राजकुमार का मन इस धार्मिक मेले में आध्यात्मिक प्रवचनों को सुनने, साधु महात्माओं से विवेचना करने में अधिक लग रहा है।
2: हाँ, सही बात है।
3: इसका तात्पर्य क्या हुआ?
2: क्या हुआ?
3: ये कि राजकुमार जी भोग विलास के सरोवर में होते हुए भी इन सब से निर्लिप्त।
2: अरे हाँ, परंतु
3: वो देखो, तीनों लोग तैयार हो गए हैं। अब शीघ्रता करो।
2: चलो चलो चलो।
3: रथ तैयार है श्रीमान।
0: तो फिर चलो। देवियों, आप लोग तैयार हैं ना?
4: हाँ स्वामी। राजकुमारी जी, आइए रथ पर विराजिए।
5: अवश्य भुवन मोहिनी, आओ, तुम भी आओ।
4: जो आज्ञा। आइए स्वामी।
3: चलो सारथी।
0: अरण्यक, तनिक पता तो लगाओ, यहाँ भीड़ भाड़ कैसी है?
3: युवराज, और आपके साथ ये देवियां इस मेले में विशेष आकर्षण पहले ही बन चुके हैं। अब तो लोग मेला देखने की अपेक्षा आप लोगों के दर्शन के लिए अधिक इच्छुक हैं।
4: देव, आप चिंतित दिख रहे हैं।
0: कुछ विशेष बात नहीं है भुवन मोहिनी।
3: युवराज, इसी रास्ते से सम्राट यानी आपके पिताश्री निकल रहे हैं और माताश्री भी साथ में हैं।
4: अब क्या होगा?
0: धैर्य रखो, मैं देखता हूं।
4: राजकुमारी जी, आप क्यों चुप हैं?
5: ऐसा लगता है जैसे राजकुमार जी को मुझ में कोई रुचि ही ना हो।
4: ऐसा मत कहिए राजकुमारी, शीघ्र ही आप राजकुमार जी को समझ जाएंगी। उनके हृदयागार में आप ही सुशोभित हैं, विश्वास रखिए।
3: युवराज, पिता महाराज ने आपको देख लिया है, उन्होंने आपको बुलवाया है। उनके साथ महाराज आदित्य सेन भी हैं।
0: क्या करना चाहिए मुझे?
3: करना क्या चाहिए, वो देखिए, वो लोग स्वयं इधर आ रहे हैं।
6: पुत्र विजय शर्मा।
0: महाराज के चरणों में प्रणाम। प्रणाम महाराज आदित्य सेन।
7: चिरंजीवी भव, हमारी पुत्री कहाँ है?
3: वो रथ पर बैठी हैं, हम अभी उन्हें साथ सम्मान ले आते।
8: पुत्र।
0: माँ,
8: तुम क्यों हमें छोड़ के चले आए?
3: महाराज, आपकी भावी पुत्रवधू।
5: चरण स्पर्श पिताजी।
6: अरे आ पुत्री, मेरे हृदय से लग जा।
7: पुत्री, ये तुम्हारी भावी माँ है।
5: चरण स्पर्श माँ।
8: अति सुंदर महाराज आदित्य सेन, सचमुच आपकी पुत्री सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है।
4: प्रणाम सम्राट। प्रणाम साम्राज्य।
6: तुम वही नर्तकी भुवन मोहिनी हो ना?
7: हाँ सम्राट, हमने इसे राजा श्रेय दिया है, परंतु इसी ने भावी विवाह की पृष्ठभूमि तैयार की है।
6: युवराज, भावी सम्राट।
0: देव,
6: हम तुम्हें क्षमा करते हैं, अपनी धारा नगरी को लौटो। साम्राज्य की प्रजा अपने प्रिय युवराज और भावी सम्राट का कुशल क्षेम जानने के लिए उत्सुक है। और भुवन मोहिनी।
4: आज्ञा देव।
6: इन एकांत दिनों में तुमने अवश्य ही युवराज के प्रति अपनी सेवाएं समर्पित की होंगी, अतः तुम्हारा निर्वासन निषेध किया जाता है।

0: चलो तुम भी अपनी मातृभूमि के दर्शन लो। अब मैं शीघ्र ही अपनी पुत्र वधु को बुलाने के लिए पुनः इंद्रप्रस्थ आऊंगा और महाराज आदित्य सेन की हार्दिक आकांक्षा को पूर्ण करूंगा।
1: आ पुत्री, आ एक बार फिर से मेरे हृदय से लग जा। अरे तुम्हारे गले में ये हार, अर्थात मेरे विजय श्रवा ने तुम्हें पहले ही अपना मधुर प्रेमोपहार समर्पित कर दिया है। बोलो, विजय श्रवा के प्रति कृतकृत्य हो ना?
2: आपके चरणों की वरदायनी सेवा का अधिकार मेरे लिए बना रहे माँ।
1: ऐसा ही होगा पुत्री। युवराज।
3: आज्ञा माँ।
1: समस्त देश पर हूण जाति का आक्रमण आसन्न है, देखना अपने दायित्वों को। मेरे दूध की लाज रखना पुत्र, क्षत्राणी का दूध राष्ट्र सम्मान के बलिदान में मूल्य की सदैव अपेक्षा करता आया है। तुम्हें भी इस आसक्ति से निवृत्ति प्राप्त कर राष्ट्र रक्षा के पवित्र दायित्व का निर्वाह करना होगा। तुम्हारी नसों और धमनियों में भी उष्ण रक्त का प्रवाह होना चाहिए, जिससे छत्राणी के दूध की गौरव गरिमा बनी रहे।
3: ऐसा ही होगा राजमाता। भारत साम्राज्य का दूध समस्त राष्ट्र के गौरव की रक्षा का भार वहन करेगा। हूणों को विजय श्रवा की शक्ति पराजित करेगी।
0: युवराज, आज मैं वृद्ध और अशक्त हो गया हूं, परंतु मैंने राष्ट्र को तुम जैसा प्रतिनिधि समर्पित किया है। आज वंश और कुल के सम्मान की रक्षा का दायित्व मुझसे अधिक तुम पर आ पड़ा है। साम्राज्य की सेना अपने भावी सम्राट के अधिनायकत्व में उन समस्त जातियों को पराजित करेगी जो भारतीय वैभव के सपनों द्वारा आक्रांत हैं। किंतु सुना है कि हूण जाति एक बर्बर जाति है, जो समृद्धि और वैभव की प्राप्ति के लिए रक्त सागर का मंथन करके विजयश्री के साथ लौटना चाहती है। मैं चाहता हूं युवराज का प्रेम त्रसित हृदय शीघ्र संतुष्ट होकर राष्ट्र रक्षा के प्रश्न पर गंभीरतम विचार करे। महाराज आदित्य सेन,
4: कहिए सम्राट।
0: आप यथाशीघ्र विवाह का आयोजन करें, ताकि संस्कार से निवृत्त होकर युवराज राष्ट्र रक्षा के लिए तत्पर हों। मेरी तीर्थ यात्रा का भी यही उद्देश्य है कि कुरुक्षेत्र की इस अति प्राचीन रणस्थली में देश भर की प्रजा और खंड राज्यों के नरेश एकत्र होंगे और राष्ट्र रक्षा पर एक मन से हम सब लोग मिलकर निर्णय करेंगे।
3: सम्राट क्षमा करें, भारत का भावी सम्राट ये कभी नहीं चाहेगा कि जब राष्ट्र रक्षा की विकट घड़ी उपस्थित हो तब वो प्रणय बंधन में फंसकर विलासी कहलाए। सम्राट, मुझे माता के दूध की गौरवमयी परंपरा को राष्ट्र के प्रांगण में सदैव विकसित रखना है। मृत्युंजय के उपासक कभी भी विलास की तुच्छ वृत्ति को स्वीकार नहीं करेंगे। राष्ट्र की रक्षा के लिए मैं अगणित चंद्रहासिनी और राजकुमारियों के प्रेम संबंधों को बलिदान कर दूंगा।
2: पितृतुल्य सम्राट, मैं भी क्षत्राणी हूँ और चाहती हूँ कि अतीत काल की अन्य राज्य महर्षियों की भांति मैं भी युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करूं और भैरवी बनकर शत्रु दल का संहार करूं।
0: बेटी, जब तक क्षत्रिय की नसों में एक भी बूंद उष्ण रक्त प्रवाहित होगा, तब तक वो ये न चाहेगा कि राष्ट्र की वीरांगनाएं युद्ध स्थली में उपस्थित हों। तुम्हें ज्ञान नहीं होगा कि कामदेव सा अतुल रूप वैभव लिए ये हमारा पुत्र महान वीर और पराक्रमी भी है। विश्वास करो कि वो युद्ध में अवश्य ही हूणों को पराजित करेगा। फिर भी तुम जैसी वीरांगना पुत्र वधु पाकर मैं अवश्य गौरवान्वित होऊंगा।

अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से मैं धारावाहिक भुवन मोहिनी की 6वीं कड़ी। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मीडियम वेव 88.32 मीटर्स यानी 1594 किलो हर्ट्स पर, डीटीएच के ऑडियो चलन न्यूज़ ऑन एआईआर पर, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 5 बजने को है और हमारी शाम की सभा अब आरंभ होती है। सभा की शुरुआत में लीजिए सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। ईरान ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को ईरान की सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में विकसित मध्य प्रदेश विषय पर आयोजित कॉन्क्लेव में शामिल उद्योगपतियों से राज्य में मौजूद निवेश संभावनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज लोकभवन में जनजातीय विकास कार्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का मूल्यांकन मुख्यतः तकनीकी विषय है, इसलिए हितग्राहियों की प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आज वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर जबलपुर के नरई नाला में उनकी समाधि स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासी रानी दुर्गावती के बलिदान को सदैव याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर 27 जून को सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश समिट राजधानी भोपाल के रविन्द्र भवन में आयोजित की जाएगी। इस समिट में 3 विशेष सत्र होंगे। 2000 से अधिक प्रतिभागियों वाले

0: समिट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। और प्रदेश में मानसून की आहट शुरू हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में बालाघाट, छिंदवाड़ा और पांडुना के रास्ते प्रदेश में मानसून दाखिल हो सकता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं हमारे युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर का योगदान है।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी दोस्त अंशिका शर्मा और आप सुन रहे हैं युवाओं की आवाज़ युवाणी, एक ऐसा मंच जहां हम बात करते हैं युवाओं की, उनके सपनों की और उनके भविष्य की। दोस्तों, आज की हमारी चर्चा बहुत ही खास विषय पर है, नई शिक्षा नीति और युवाओं के अवसर। कहते हैं शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती है, तो वह रोशनी है जो इंसान के सोचने, समझने और आगे बढ़ने का रास्ता बनाती है। तो आइए इस सफ़र में हम समझते हैं कि नई शिक्षा नीति हमारे जीवन में क्या बदलाव ला रही है और इससे हमें क्या नए अवसर मिल रहे हैं। दोस्तों, शिक्षा का मतलब सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं होता, शिक्षा का मतलब है सोचने की क्षमता, सही निर्णय लेना और जीवन में आत्मनिर्भर बनना। नई शिक्षा नीति इसी सोच को आगे बढ़ाती है कि हर बच्चा अपनी रुचि के अनुसार सीख सके। दोस्तों, नई सोच और नए सपनों की शुरुआत से पहले आइए सुनते हैं गीत जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।

दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव है। इसका उद्देश्य एकदम सरल है, जैसे कि रटने की बजाय समझ पर जोर, विषयों की स्वतंत्रता और कौशल आधारित शिक्षा। अब छात्र सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि वे अपने हुनर के अनुसार आगे बढ़ सकेंगे। दोस्तों, भारत की शिक्षा व्यवस्था को अधिक व्यवहारिक, लचीला और गुणवत्तापूर्ण बनाना है। यह विद्यार्थियों के समग्र विकास पर बल देती है तथा उन्हें अपनी रुचि के और क्षमता के अनुसार विषय चुनने की आज़ादी प्रदान करती है। दोस्तों, इस शिक्षा नीति के अंतर्गत पारंपरिक 10+2 प्रणाली के स्थान पर 5+3+3+4 संरचना लागू की गई है, जिससे बच्चों के मानसिक विकास विभिन्न चरणों के अनुसार शिक्षा दी जा सके। प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है, जिससे बच्चों की समझ और सीखने की क्षमता में वो वृद्धि हो। दोस्तों, पहले की शिक्षा बहुत सीमित थी, लेकिन अब समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है। अब छात्र आर्ट्स के साथ साइंस पढ़ सकते हैं, कॉमर्स के साथ क्रिएटिव सब्जेक्ट ले सकते हैं और अपनी रुचि के अनुसार करियर बना सकते हैं। नई शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू विषय चयन है। अब छात्र विज्ञान, वाणिज्य और कला जैसी धाराओं तक सीमित नहीं रहेंगे, वे अपनी रुचि के अनुसार अनेक विषयों में से चुन सकेंगे। इससे उनकी रचनात्मकता और कौशल का विकास होगा। इस प्रकार नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों की रुचि, चयन और क्षमता को महत्व देकर उन्हें आत्मनिर्भर, कुशल और जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नई शिक्षा नीति युवाओं के लिए एक नया दरवाज़ा खोलती है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि क्या अवसर हैं, जैसे कि डिजिटल स्किल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप और रिसर्च। शिक्षा में बदलाव सिर्फ किताबों में नहीं होता दोस्तों, वे सोच में होता है और इसी सोच को मजबूत करता है यह गीत।

सोचता था कि अगर मैंने साइंस और मैथ्स नहीं लिया तो मैं कुछ नहीं बन सकती, लेकिन अब समझ आया कि हर फील्ड में अवसर हैं। नई शिक्षा नीति छात्रों को रटने से निकालकर समझने की ओर ले जाती है। वाकई में दोस्तों, यह एक सकारात्मक बदलाव है। कौशल आधारित शिक्षा अब शिक्षा का एक बड़ा हिस्सा बन गया है, जिसे हम कहते हैं स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट जैसे कि कोडिंग, डिजाइनिंग, कम्युनिकेशन और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। दोस्तों, आज हमारा भारत देश डिजिटल बन रहा है। इससे हम सभी युवाओं को कई अवसर मिल रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन नौकरी के अवसर, फ्रीलैंसिंग और वर्क फ्रॉम होम। जब हम स्किल्स और डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो मन में एक ऊर्जा और जोश भर जाता है। आइए सुनते हैं गीत

दोस्तों, ग्रामीण युवाओं के लिए भी सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति के अनेक लाभ हैं। नई शिक्षा नीति सिर्फ शहरों के लिए नहीं है, ये अब गांव के छात्रों के लिए भी है। दोस्तों, अब गांव के छात्रों भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, नई स्किल्स सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सरकार द्वारा महिलाओं के लिए भी बहुत अवसर हैं। इस नीति से लड़कियों के लिए भी नए रास्ते खुले हैं। वे अब साइंस, टेक्नोलॉजी और बिजनेस हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं। अब इस कार्यक्रम की जानकारी हम एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, एक छोटे शहर की लड़की ने ऑनलाइन स्किल सीखकर आज खुद का स्टार्टअप शुरू किया। यह दिखाता है कि अगर अवसर मिले तो युवा कुछ भी कर सकते हैं। हर बदलाव के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं दोस्तों, जैसे इंटरनेट की कमी, जागरूकता की कमी और संसाधनों की कमी। और इन समस्याओं का समाधान भी है, जैसे डिजिटल शिक्षा का विस्तार, सरकारी सहायता और जागरूकता अभियान। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि नई शिक्षा को बेहतर बनाने का, ताकि युवाओं का भविष्य संवर सके, जैसे नए कोर्स शुरू करना, स्किल इंडिया मिशन और डिजिटल क्लासरूम। दोस्तों, अवसर मिलना काफ़ी नहीं होता, उन्हें पहचानना भी ज़रूरी होता है। हम युवाओं को

मेहनत, धैर्य और सीखने की इच्छा। नई शिक्षा नीति हमें यह सिखाती है कि हर छात्र खास है, बस उसे सही दिशा की ज़रूरत है। और हाँ दोस्तों, आने वाले समय में भारत के युवा ग्लोबल लेवल पर काम करेंगे, नई तकनीक बनाएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। दोस्तों, नई शिक्षा केवल डिग्री नहीं है, यह जीवन बदलने का साधन है। नई शिक्षा नीति इसी सोच को मजबूत करती है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से हम एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जहां हर युवा को अपनी प्रतिभा निखारने और अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिले। आज 24 जून के इस विशेष दिन पर कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाए जा रहे हैं जो हमें प्रेरणा और सकारात्मक संदेश देते हैं। आज इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी मनाया जाता है। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि महिलाओं की भागीदारी और लीडरशिप समाज तथा विश्व को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके साथ ही इंटरनेशनल फेयरी डे भी मनाया जाता है जो कल्पना शक्ति, रचनात्मकता और नए सपने देखने की प्रेरणा देता है। नई शिक्षा नीति भी युवाओं में इसी रचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। आज ही कई देशों में सेंट जॉन्स डे भी उत्साहपूर्वक मनाया जाता है जो संस्कृति, परंपरा और सामुदायिक एकता का प्रतीक है। इन विशेष अवसरों का संदेश भी यही है कि ज्ञान, रचनात्मकता, सम्मान, अवसर और एकता के माध्यम से हम एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, एक ऐसे भारत की ओर जहाँ हर युवा अपने सपनों को सच कर सकता है। इस भावना को और मजबूत करता है यह गीत।

तो दोस्तों, आज की हमारी यह यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन आपकी यात्रा अभी शुरू हुई है। किताबों से बाहर निकलिए, सपनों को पंख दीजिए और अपने हुनर को पहचानिए, क्योंकि नई शिक्षा नीति सिर्फ सिस्टम नहीं बदलती, यह आपके सपनों को उड़ान देती है। मैं हूं आपकी साथी अंशिका शर्मा और आप सुन रहे थे युववाणी। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब समय है अंतराल का।
1: पुलिस
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा,
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

इसके साथ ही अंतराल का समय हुआ पूरा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर सोनू निगम की आवाज़ में अभी आपने मुझसे दोस्ती करोगे इस फिल्म का गीत सुना। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत था राहुल शर्मा का।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

सरफरोश फिल्म का गीत अभी आपने सुना आमिर खान अलका याग्निक के स्वर में। गीतकार थे समीर और संगीत था जतिन ललित का।

कुछ ना कहो इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना उदित नारायण कविता कृष्णमूर्ति के स्वर में। गीतकार थे जावेद अख्तर, संगीत था शंकर एहसान लॉय का।

पार्टनर फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसके लिए आवाज़ थी शान श्वेता पंडित, और इस गीत को लिखा था शब्बीर अहमद में, संगीत था साजिद वाजिद का। और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: इसके साथ ही अंतराल का समय हुआ पूरा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज सुबह अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया है कि ये कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के रविंद्र भवन में राज्य स्तरीय साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित इस विशेष अभियान का मुख्य नारा रुके सोचें फिर क्लिक करें रखा गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने साइबर जागरूकता बुकलेट और वीडियो का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने साइबर जागरूकता रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने आज लोकभवन में जनजातीय विकास कार्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का मूल्यांकन मुख्यतः तकनीकी विषय है, इसलिए हितग्राहियों की प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आज वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर जबलपुर के नरई नाला में उनकी समाधि स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने रानी दुर्गावती का स्मरण करते हुए कहा कि प्रदेशवासी रानी दुर्गावती के बलिदान को सदैव याद रखेंगे और अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर 27 जून को सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश समिट राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित की जाएगी। समिट में 3 विशेष सत्र होंगे। 2000 से अधिक प्रतिभागियों वाले इस समिट में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी शामिल होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनते हैं एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जय जोहार, जय हिंद। श्रोताओं आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं, शांत रहना कमजोरी नहीं, ये समझदारी की निशानी है, क्योंकि हर जवाब शब्दों से ही नहीं लेकिन व्यवहार से भी दिया जाता है। इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से हमारा आभार। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, महताब जाटव, मिराज जाटव और अल्ताफ जाटव। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू। जेल रोड कानपुर से सरफुद्दीन फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम कुटरिया। भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल। तो श्रोताओ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि हम हर बार कहते हैं इस बार भी कहेंगे कि जुड़े रहिए आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। और आइए अब चलते हैं आज की श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओ जहां तक गुफाओं की बात है, लगभग सभी अजंता और एलोरा की गुफाओं से परिचित हैं, लेकिन उमंग कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य है उन जानकारियों को उपलब्ध कराना जो लोक संज्ञान में कम है, लेकिन पुरातत्व और इतिहास

की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जी तो श्रोताओं, कल हमने बात की थी भीम बैठका की गुफाओं के बारे में, आज हम बात करेंगे कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। कुटुम्बसर की गुफाओं को भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाओं में गिना जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ स्थित हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं स्थित हैं छत्तीसगढ़ राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर। ये गुफाएं भूमि से लगभग 35 से 40 मीटर नीचे हैं। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं। लेकिन श्रोताओं, जब भी हम ऐसे स्थानों की बात करते हैं तो ये जिज्ञासा जरूर मन में आती है कि इनकी खोज कैसे हुई। तो आपको बता दें कि कुटुम्बसर गुफा का जनजातीय नाम गोपनसर था। सन 1951 की बात है, कुछ स्थानीय चरवाहे एक साही का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां ढेर सारी झाड़ियां थीं, पत्थर भी थे। जब उन्होंने झाड़ियों को थोड़ा हटाया तो क्या देखते हैं कि वहां एक बहुत बड़ी गुफा का प्रवेश द्वार है। जी, चरवाहे उस गुफा की बनावट देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वहां चट्टानों के आकार विचित्र थे। वे अद्भुत आकार के थे, जैसे किसी ने उन्हें तराश कर बनाया हो। तो आइए जानते हैं कि उन पत्थरों को तराशने वाला कौन था। श्रोताओं, यही तो खास और बड़ी अनोखी बात है कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। जब विशेषज्ञ यहाँ पर आए तो उन्होंने पता लगाया कि चट्टानों को तराशने वाली प्रकृति ही थी। यहाँ पानी हमेशा टपकता रहता है। पानी के लाखों वर्षों से टपकते रहने के कारण इन चट्टानों को आकार मिला। यहाँ की चट्टानें चूना पत्थर से बनी है। श्रोताओं, इन गुफाओं में कुछ आकृतियां तो ऐसी हैं जो किसी पशु, मुख्य रूप से हाथी, बाघ, विशाल मानव आकृति और शिवलिंग की तरह भी दिखाई देती हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, कैसे इन आकृतियों को प्रकृति ने लाखों वर्षों से पानी की बूंदें टपकाकर बनाया, अद्भुत है ना? जी, किसी ने लिखा है कि यदि प्रकृति को शिल्पकार के रूप में देखना है तो कुटुम्बसर की गुफाओं में जरूर जाइए। इन गुफाओं के ऊपर भूमि में कई भूमिगत जल के झरने हैं, जहां से निरंतर पानी की बूंदें गिरती रहती हैं। वैज्ञानिकों ने इन गुफाओं में अनेक दुर्लभ जीवों के जीवाश्म भी ढूंढे हैं। एक बात और आपको बता दें श्रोताओं, कि इन गुफाओं के अंदर हमेशा घुप अंधेरा रहता है। वहां जाने के लिए पर्यटक गाइड्स और शक्तिशाली बैटरियों वाले लैंप्स लेकर ही जाते हैं। अंदर पानी बहता रहता है, लेकिन एक बड़ी रोचक बात है इन गुफाओं की। आपको बताएं क्या है वो? वो ये कि यहाँ के पानी में जो मछलियां पाई जाती हैं वे अंधी होती हैं, देख नहीं पाती। यहाँ के अन्य जलज प्राणी भी देख नहीं सकते। लेकिन एक सवाल है श्रोताओं कि भला ऐसा क्यों है, ना ये बड़ी अजीब बात? जी हाँ श्रोताओं, वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ हमेशा अंधकार रहता है। इससे संभवतः मछलियों और जलज जीवों की आंखें तो हैं, लेकिन उनमें देखने की क्षमता का विकास नहीं हुआ, या फिर धीरे धीरे देखने की क्षमता समाप्त हो गई। एक सिद्धांत ये भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अंधकार में रहने के कारण उनकी आंखें पूर्ण विकसित नहीं हुई, लेकिन दूसरी इंद्रियां अधिक विकसित हो गईं। मछलियां पानी में कंपन, स्पर्श और रासायनिक संकेतों जैसे गंध इत्यादि के माध्यम से रास्ता और भोजन तुरंत पहचान लेती हैं। इसलिए श्रोताओं, कुटुम्बसर की मछलियों को दुनिया भर में ब्लाइंड केव फिशेस के नाम से भी जाना जाता है। और हाँ, इन गुफाओं की एक और बड़ी खास बात है, यहाँ के कुछ भागों में यदि फुसफुसा करके भी कुछ कहा जाए तो बड़ी दूर तक ये आवाज सुनाई पड़ती है। श्रोताओं, यहाँ पर कार्यकर्ता इको या गूंज का सिद्धांत। श्रोताओं, ये कहा जा सकता है कि ये गुफाएं वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के जंतु विकासवाद और भूविज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी भारत की एक और रहस्यपूर्ण और अनोखी गुफा कुटुम्बसर के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? आप हमें हमारे IVRS नंबर 8804405559 पर या ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर इस प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज के हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम। तो सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम लीव्स ऑन द ट्री आर फॉलिंग। श्रोताओं, अंग्रेजी का ये सुंदर गीत पतझड़ और वसंत के मौसमों के बीच की प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है और विशेषकर संदेश देता है कि हमें प्रकृति का अवलोकन

0: इस खूबसूरत गीत के बाद आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्स कपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
2: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को 100% चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
3: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
2: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
3: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
2: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
1: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना।
2: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
1: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जग तीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
2: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
4: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
2: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
4: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा, मुझे ये देखकर आश्चर्य बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये

जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है, उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।

0: और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है, उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
1: मुंबई से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए, जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
2: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
1: रांची आकर वे कुछ समय के लिए सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
2: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
3: आइए आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
0: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
3: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
0: जी मैं प्रस्तुत हूं।
3: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के 2 पदों की इसी समय सप्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
0: जी अवश्य।
1: फादर कामिल बुलके ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी। इस यूरोपीय श्वेत वर्णीय ईसाई पुरोहित को डॉक्टर वर्मा ने प्रारंभ में नौसिखिया समझा था, लेकिन जब उन्होंने व्याख्या पढ़ी तो
4: ओह अद्भुत। तो फादर, अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
0: धन्यवाद डॉक्टर धीरेंद्र, ये मेरा सौभाग्य होगा।
4: जी
1: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुलके ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
2: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुलके चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
1: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुलके ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
0: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति महोदय?
5: आइए आइए फादर बुलके। मुझे बताया गया है कि रामकथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
0: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
5: जी जी,
0: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
5: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
0: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही रामकथा की उत्पत्ति और विकास है।
5: जी,
0: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं रामकथा और तुलसी

0: की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
1: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर पुलके।
0: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
1: जी,
2: तो फिर क्या था? विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की सभा बुलाई गई और लंबे विचार विमर्श के बाद नियमावली में विधिवत परिवर्तन किया गया। फादर का ये अनुरोध मान लिया गया। भारत के शोध परिदृश्य में ये एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके द्वारा देवनागरी में शोध प्रबंध लिखने का रास्ता सबके लिए साफ हो गया और आदिवासी भाषाओं में भी पीएचडी स्तर तक पढ़ाई होनी शुरू हो गई।
3: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है।
0: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं हैं, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
2: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
3: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कम्बन द्वारा तमिल में रचित कम्ब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुलके को जानने लगी।
2: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुलके का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
0: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
2: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
3: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुलके ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
2: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुलके बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। उन्होंने लिखा था,
0: जब मैं अपने जीवन पर विचार करता हूं तो मुझे लगता है ईसा मसीह, हिंदी और तुलसीदास ये वास्तव में मेरी आध्यात्मिक साधना के 3 प्रमुख घटक हैं और मेरे लिए इन 3 तत्वों में कोई विरोध नहीं है बल्कि गहरा संबंध है। मैं ईसा मसीह का परम भक्त हूं, हिंदी मेरा अनुराग है और गोस्वामी तुलसीदास मेरी प्रेरणा।
2: कामिल बुलके की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। जब लोग उन्हें

0: इन फादर कहते तो वे किंचित संकोच से बोल उठते।
1: फादर अंग्रेजी शब्द है, यदि मुझे कामिल बाबा कहो तो सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
0: 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु शैया पर मात्र 2 पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
2: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
0: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
3: डॉक्टर कामिल बुल्के, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

अजनबी फिल्म का गीत अभी आपने सुना, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज़ में। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीत था राहुल देव बर्मन का।

प्यार का मौसम, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसके लिए आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर के, गीतकार थे मजरू और संगीत था आर डी बर्मन का।

अभिनेत्री फिल्म का गाना भी आपने सुना, जिसके लिए आवाज़ थी लता मंगेशकर की, गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: ये गीत था फिल्म फना से, जिसके लिए आवाज़ थी सोनू निगम, सुनिधि चौहान की, गीतकार थे प्रसून जोशी और संगीत था जतिन ललित का। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब समय है अंतराल का।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

इसके साथ ही अंतराल का समय हुआ पूरा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: ये आकाशवाणी है। अब आप मुकेश कुमार से समाचार सुनिए। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला में आज निर्माणाधीन गोदाम ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। घायलों का SSKM अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवा तथा स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा है कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वत नैनी ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिकार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार के बावजूद भारतीय नागरिकों को जारी नए परामर्श में अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने को कहा है। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत सैमसन ग्रीन और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की प्रशंसा की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक की। बैठक की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन

0: सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। श्री शाह इस अवसर पर मादक पदार्थ नियंत्रण के लिए वर्ष 2026 से 29 के लिए दृष्टि पत्र जारी करेंगे। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्रिपुरा में 96 सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए 211 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इस परियोजना से राज्य में 160 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण होगा। इन परियोजनाओं से राज्य की 96 बस्तियों को पहली बार हर मौसम में सुगम सड़क संपर्क प्राप्त होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने बेंगलुरु और मुंबई में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से जुड़े 9 ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई कल शुरू की गई। ये जांच राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फीमा के कथित उल्लंघन के मामले में की जा रही है। यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। वहीं इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया हर्जेगोवना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले कल रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

पहले बता दें आपको इस सभा के शेष कार्यक्रम रात 8 बजे सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में। 8:15 पर होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 9:30 पर होगा चर्चा का विषय जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। नाटक हतक रात 10 बजे आप सुन सकते हैं, जिसके लेखक हैं सआदत हसन मंटो, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी आप सुनेंगे, जिसमें आज आप सुनेंगे संगीता गोस्वामी का राग यमन में ख्याल गायन। और आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम ग्राम सभा आप सुन सकते हैं 7:21 पर। कल सुबह की सभा के कार्यक्रमों के बारे में हम आपको बता दें, 7:30 पर आप सुनेंगे सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। 8:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। 9:02 पर सुनिए फिल्म संगीत। 9:15 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में राम किशन चंदेश्री से गीत और भजन। नाटक कबूतरी आप सुनेंगे कल सुबह 9:30 पर, लेखक हैं सआदत हसन मंटो, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल। कल सुबह 10 बजे सुनिए जिले की चिट्ठी। 10:05 पर होगा कार्यक्रम गीत सागर। आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण आप सुनेंगे दिन में 11 बजे से। इसी समय आप सुन सकते हैं फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। दोपहर 12 बजे सुनिए कार्यक्रम आपकी फरमाइश। 12:30 पर संग्रहालय से इस कार्यक्रम में भुवन मोहिनी की 7वीं कड़ी। महिला कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 1 बजे, ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर का योगदान होगा। 1:30 पर कार्यक्रम लोक संगीत। 1:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर का योगदान होगा। दोपहर 2 बजे सुनिए फिल्म संगीत। 2:30 पर होगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। हमारी शाम की सभा की शुरुआत होगी 5:02 पर कार्यक्रम युवाणी से, ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर का योगदान होगा। 5:33 पर आप सुनेंगे

और कल शाम 6:30 पर ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के मध्य मैनचेस्टर में खेले जाने वाले महिला T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे कल शाम 6:30 पर। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य स्तरीय साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 का किया शुभारंभ। वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर जबलपुर में हुआ विशेष कार्यक्रम। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। और प्रदेश में अगले 48 घंटों में मानसून की दस्तक के आसार। आज शाम राजधानी भोपाल सहित आसपास के जिलों में तेज बारिश। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिक सुरक्षित, सुगम और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है। मंत्रालय के अनुसार प्राधिकरण ने विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग के 595 संवेदनशील स्थानों की पहचान की है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्रालय ने आज बताया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज सुबह अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों दलों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के रविन्द्र भवन में राज्य स्तरीय साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित इस विशेष अभियान का मुख्य नारा रुके, सोचे और फिर क्लिक करें रखा गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने साइबर जागरूकता बुकलेट और वीडियो का विमोचन भी किया। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में सतर्कता का संदेश फैलाने के लिए साइबर जागरूकता रथ

0: को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
1: आज ये 15 दिन का विशेष अभियान 10 संभाग 55 जिलों में 50,000 से अधिक गांवों में एक साथ चलेगा। साइबर का खतरा, ये वास्तव में डिजिटल राक्षस है जो बिना दस्तक दिए स्मार्टफोन कंप्यूटर के रास्ते से अपने घर के अंदर सेंधमारी करता है, डकैती करता है। और आजकल डिजिटल ठगी के भी रास्ते कितने आ गए, डीप फेक, फेक प्रोफाइल, हैकिंग, पता नहीं कितने प्रकार से। लेकिन सबका एक ही उत्तर है, सावधान ही सुरक्षा है और ये जानकर ही बचाव।
0: ये प्रदेशव्यापी साइबर जनजागरूकता 15 दिवसीय अभियान 8 जुलाई तक चलेगा। सुरक्षित डिजिटल व्यवहार इसका प्राथमिक उद्देश्य है, जिसके तहत आम जनता, विद्यार्थियों, युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को साइबर ठगी व ऑनलाइन धोखाधड़ी के प्रति जागरूक किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर 27 जून को सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश समिट राजधानी भोपाल के रविन्द्र भवन में आयोजित किया जाएगी। समिट में 3 विशेष सत्र होंगे। 2000 से अधिक प्रतिभागियों वाले इस समिट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। उद्योग आयुक्त दिलीप कुमार ने आज बताया कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले इस समिट में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप और मुख्य सचिव अनुराग जैन विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। उद्योग आयुक्त दिलीप कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भूमि आवंटन, भूमि पूजन, लोकार्पण तथा एमएसएमई, स्टार्टअप एवं स्वरोजगार लाभार्थियों को चेक भी प्रदान करेंगे। इस समिट में खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र तथा परिधान, अभियांत्रिकी क्षेत्रों के लिए एमएसएमई के लिए बायर सेलर्स मीट का आयोजन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एमएसएमई प्रदर्शनी व ईज ऑफ डूइंग क्लिनिक का उद्घाटन भी करेंगे। इस प्रदर्शनी में लगभग 50 स्टॉल लगाए जाएंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: आज ये 15 दिन
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर जबलपुर के नरई नाला में उनकी समाधि पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने रानी दुर्गावती का स्मरण करते हुए कहा कि प्रदेशवासी रानी दुर्गावती के बलिदान को सदैव याद रखेंगे। इससे पहले राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राजधानी भोपाल में लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में रानी दुर्गावती के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी, जिन्होंने संप्रभुता और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए मुगल आक्रमणकारियों के खिलाफ वीरतापूर्ण संघर्ष में अपने प्राणों का बलिदान किया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज लोक भवन में जनजातीय विकास कार्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का मूल्यांकन मुख्यतः तकनीकी विषय है, इसलिए हितग्राहियों की प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। निर्माण सामग्री एवं कार्य की गुणवत्ता की निगरानी के मानक मापदंड निर्धारित किए जाएं। राज्यपाल पटेल ने प्रदेश में सिकल सेल उन्मूलन अभियान की तीव्र गति से क्रियान्वयन पर हर्ष व्यक्त किया। बैठक में राज्यपाल को पीएम जनमन योजना के अंतर्गत 9 विभागों की 11 अधोसंरचनात्मक, 7 हितग्राही मूलक योजनाओं और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत 17 विभागों की 25 योजनाओं की प्रगति की जानकारी भी दी गई। प्रदेश को विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जाने और आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के साथ राजधानी भोपाल में विकसित मध्य प्रदेश विषय पर उच्च स्तरीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पारंपरिक रूप से किया। इस कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि राज्य सरकार मध्य प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश ने भी अपनी दीर्घकालिक विकास योजनाओं पर काम शुरू कर दिया है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में अगले 48 घंटों में मानसून के दस्तक देने के आसार हैं। राजधानी भोपाल समेत आसपास के जिलों में आज शाम अचानक बादल घिरने के साथ ही तेज बारिश शुरू हुई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसून की दस्तक बालाघाट, छिंदवाड़ा और पांडुना के रास्ते होने के आसार हैं। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर संभागों के अधिकांश जिलों में कहीं कहीं बारिश हुई है। अब रुक करते हैं खेलों की खबर का। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज को हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला जापान की सुमिरे नाकाडे और मियू ताकाहाशी से होगा। वहीं हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम व्हाइट के नेतृत्व में

जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कटनी निगम कार्यालय में पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 30 जून तक विशेष लोक कल्याण मेले का आयोजन किया जा रहा है। आगरमालवा जिले में 28 जून से 30 जून तक 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। खंडवा के शहरी क्षेत्रों के विभिन्न वार्डों में कल से 30 जून तक रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं। झाबुआ के शासकीय शहीद चंद्रशेखर आजाद महाविद्यालय में 1 जुलाई को जिला स्तरीय युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। शिवपुरी जिले में पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में आज जिला टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन किया गया। नीमच के शासकीय आईटीआई रामपुरा में आज जिला रोजगार कार्यालय द्वारा युवा संगम रोजगार एवं स्वरोजगार मेले का आयोजन किया गया। भारतीय स्टेट बैंक की एसीबी शाखा सीहोर ने एसबीआई स्मार्ट एग्री कस्टमर्स मीट का आयोजन किया, जिसमें करीब 75 प्रगतिशील किसान और कृषि उद्यमी शामिल हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य स्तरीय साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 का किया शुभारंभ। वीरांगना

बैंक की एसीबी शाखा सीहोर ने एसबीआई स्मार्ट एग्री कस्टमर्स मीट का आयोजन किया, जिसमें करीब 75 प्रगतिशील किसान और कृषि उद्यमी शामिल हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य स्तरीय साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 का किया शुभारंभ। वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर जबलपुर में हुआ विशेष कार्यक्रम, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। और प्रदेश में अगले 48 घंटों में मानसून की दस्तक के आसार, आज शाम राजधानी भोपाल सहित आसपास के जिलों में तेज बारिश। इस बुलेटिन में बस इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम सभा।

ग्राम सभा कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बौजियों को, काकी चाची हरों को, ककाजू हरों को और बाकी के सभी श्रोताओं को दो ही हाथ जोड़ के राधा बहन की प्यारी सी मुस्कान के संग राम राम पहुँचे। कैसे हो आप सब जने? वैसे हमें पता है अच्छे ही हुई हो। अच्छा भैया रो, आप और ने बा कहावत सुनी है कि नहीं? जैसी धरती बैसो अन्न और जैसो अन्न बैसो मन। अब हम जा बात काय कह रहे, काय से आजकल हर जगह एक बात सुनबे को मिलत है कि पहले की जमीन ज़्यादा उपज दे थती और बाकी अब उतनी नहीं देते, जबकि अब खाद दवाइयाँ और मेहनत सब कछु बढ़ गए है, फिर भी बेसो फायदो नहीं मिल रहा। तो भैया फिर कमी कितने हैं? सो भैया हम जइया समझावे की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी फसल के लाने मिट्टी को स्वस्थ हो बहुत ज़रूरी है। अब आप ही बताओ, अगर मिट्टी ही कमज़ोर हो जाए है तो फसल कैसे अच्छी हुई है? मनो हमें अपनी ज़मीन की, हमें अपने खेत की सेहत पर ध्यान देने पर है और ये बात को हल है प्राकृतिक खेती। और कई किसान भैया हरे ई तरफ बढ़ भी रहे हैं। काय बढ़ रहे हैं? काय से ही में रासायनिक चीजन की जगह गोबर, गोमूत्र, जैविक खाद और देसी तरीकन को इस्तेमाल करो जाते हैं। हालांकि शुरू में तनक ध्यान रखने पड़त है, लेकिन जैसी जमीन अपनी साथ देन लगत है, खेत अपनो साथ देन लगत है, सो लागत भी कम हो जाते है, अपनी सेहत और आबे बारी पीढ़ियन को भी सुरक्षित रखत है और मिट्टी जोन होत है अपनी बा उपजाऊ बनत है। मनो जा अपनी जो जमीन होत है, खेत होत है, ऊखो भी बचात है। कुल मिला के अपने संगे संगे ईखो अपना के अपनी धरती भी मुस्कुरा उठत है। सो भैया हम तो जई कहें कि प्राकृतिक जोन खेती है ऊखो अपनावें और स्वस्थ जीवन पावें। बाकी आज के कार्यक्रम में लोकगीतन की शुरुआत करत है सुधीर बाबू की गाय भई ई गणेश वंदना के संगे।

और अब आकाशवाणी भोपाल से आप और किलाने प्रस्तुत हैं बुंदेली समाचार। बुंदेली समाचारन के संगे हम हैं राधा चौरे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महान वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करी है। राज्यपाल पटेल ने लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में रानी दुर्गावती के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करी। उतई मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में जबलपुर के पास रानी दुर्गावती की समाधि स्थल नरई नाना में विशेष कार्यक्रम को आयोजन करोगा। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कही कि मातृभूमि की रक्षा के लाने वीरांगना रानी दुर्गावती को शौर्य, अदम्य साहस और रणकौशल देश के गौरवशाली इतिहास को स्वर्णिम अध्याय है, जो विशेष रूप से बेटियन के लाने प्रेरणादायक है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज भोपाल स्थित रविन्द्र भवन में राज्य स्तरीय साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 को शुभारंभ करो। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित ई विशेष अभियान को उद्देश्य नागरिकन को साइबर अपराधन से सुरक्षित रखवो तथा जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार को बढ़ावो देवो है। कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना भी उपस्थित रहे। अभियान के तहत आमजन, विद्यार्थियन, युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकन को साइबर ठगी, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डिजिटल सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं के प्रति जागरूक करोगा, जैसे कि वे सुरक्षित साइबर व्यवहार अपना पावें। राज्य वित्त आयोग के सदस्य आज भोपाल संभाग के दौरा पर हैं। आयोग नगरीय निकायन और पंचायती राज्य संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को लेकर जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से सुझाव ले रहे हैं। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया सहित सदस्य वीआईपी सर्किट हाउस में सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों के संग बैठक कर रहे हैं। आयोग की टीम संभाग आयुक्त कार्यालय में अधिकारियों के संग वृहद समीक्षात्मक बैठक कर रहे हैं। बैठक में निकायन की वित्तीय मजबूती, स्वच्छता, पेयजल और राजस्व स्रोतन में वृद्धि के उपायन पर चर्चा हुई है। देश के युवा नेतृत्व बारे 6 स्टार्टअप ने यूथ कोलैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज 2026 के 8वें संस्करण में जीत हासिल करी है। जा पहल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी इंडिया और सिटी फाउंडेशन द्वारा अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के सहयोग से चलाई जा रही है और टी हब फाउंडेशन द्वारा कार्यान्वित करी जा रही है। इस साल चैलेंज के लाने 28 राज्यों के स्टार्टअप से 350 से अधिक आवेदन प्राप्त भए। 50 उच्च क्षमता वाले स्टार्टअप को नेशनल स्प्रिंग बोर्ड प्रोग्राम के लाने चुनो गओ। अंतिम मूल्यांकन के बाद 6 स्टार्टअप को उनके उच्च प्रभाव वाले समाधानों के लाने चुनो गओ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही कि प्रदेश में रोजगार के क्षेत्र में सतत रूप से नवाचारों की आवश्यकता है। प्रदेश में धार्मिक, प्राकृतिक, पुरा धरोहर से संबंधित पर्यटन क्षेत्र समृद्ध हैं। काल मंत्रालय में कौशल विकास और रोजगार विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कही कि पर्यटकों को आवश्यक मार्गदर्शन के लाने गाइड की व्यवस्था को सशक्त बनावे और विभिन्न व्यंजनों को आनंद दिलवावे के लाने कार्य की व्यापक

0: संभावनाएं मौजूद हैं। युवाओं को बड़ी संख्या में इन कार्यों से रोजगार मिल है। कौशल विकास और रोजगार विभाग को पर्यटन विभाग से तालमेल स्थापित कर जो कार्य संभव है। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस 2026 पे सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश समिट शनिवार 27 जून को रविंद्र भवन भोपाल में आयोजित हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में सहभागिता कर रहे हैं। कार्यक्रम को आयोजन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा करो जा रहा है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप और मुख्य सचिव अनुराग जैन समिट में विशेष रूप से उपस्थित रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं खेल की। हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरा के लाने 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिला में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेल है। खैदेम शिलेमा चानू युवा टीम की कमान संभाल है, जबकि निधि और एंगल हर्षारानी मिंचखो गोलकीपर की जिम्मेदारी दी गई है। और अब बात करने लेते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून की आहट शुरू हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में बालाघाट, छिंदवाड़ा और पांडुर्ना के रास्ते से प्रदेश में मानसून दाखिल हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के 42 जिलों में तेज आंधी के संगे बारिश के आसार हैं। उतई, ग्वालियर, भिंड, मुरैना सहित कई जिलों में गर्मी को असर बनो रहे है। तो जे हते आज के बुंदेली समाचार।
1: बुंदेली समाचार।
0: भैया हरो, बदलत समय में खेती किसानी में भी आधुनिक तरीकन और तकनीकन और उन्नत उपकरणों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। जे तकनीकें ना केवल किसानन की लागत कम करबे में मदद करत हैं, बल्कि जल, उर्वरक और अन्य संसाधनन के कुशल उपयोग के संगे उत्पादन एवं लाभ बढ़ावे में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभात हैं। और जो सब कैसे होत हैं, जो आपको पता चल है आज की भेंटवार्ता में, जी को विषय है सटीक कृषि हेतु उन्नत उपकरणों की खेत बचाओ अभियान में भूमिका। जी के बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर दिलीप जाट, और इनसे बातचीत करी है अपनी पुष्पा सिंह और जी ने। सो चलो सब मिलके सुनाते हैं जब भेंट वार्ता।
2: किसान भाइयों बहनों, सटीक कृषि हेतु उन्नत उपकरणों की खेत बचाओ अभियान में भूमिका। किसान भाइयों, यह विषय कृषक भाइयों को सीधा जोड़ता है। खेत बचाओ, इसका अर्थ भी यही है, लागत बचाओ, मिट्टी बचाओ, पानी बचाओ, फसल बचाओ, और उन्नत उपकरण इसी के चार पहिए हैं। आज विज्ञान ने कृषक भाइयों को आईना दे दिया है, ड्रोन, सेंसर, अब खेत की हर जानकारी किसान भाइयों के हाथ में है। तो आज हम सटीक कृषि हेतु उन्नत उपकरणों की खेत बचाओ अभियान में भूमिका विषय पर चर्चा करेंगे, और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर दिलीप जाट जी। आप केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान नवी बाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर दिलीप जाट जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार। सर, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए, वर्तमान समय में खेत बचाओ अभियान की आवश्यकता क्यों है? किसानों के सामने कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियाँ हैं?
3: जैसा कि ये जून का महीना जो है, ये खेत बचाओ अभियान के तहत कृषि मंत्रालय एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से चलाया जा रहा है पूरे भारत वर्ष में। ये यहाँ प्रमुख मुख्य उद्देश्य इस प्रोग्राम का यह है कि वैज्ञानिक किसानों तक पहुंचे और किसानों को अलग अलग तकनीकी की जानकारी दे कि किस तरीके से वो अपने खेतों को बचा सके। बचाने से यहाँ आशय यही है कि जैसे निरंतर खेती में अलग अलग प्रकार के हम उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं, रसायनों का उपयोग कर रहे हैं, एक तरह की फसल कई वर्षों से हम लेते आ रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं मिट्टी की जो स्वास्थ्य है उस पर भी असर पड़ रहा है। आप देखेंगे काफ़ी खाद का उपयोग हम निरंतर करते जा रहे हैं, परंतु उसी के प्रपोर्शन में हमें उपज प्राप्त नहीं हो रही है। जल संसाधन हमारे पास सीमित है, उसका भी जल का भूस्तर भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए कि कैसे हम इन सब चीज़ों से अपनी खेती को बचाते हुए अच्छे तरीके से हम उत्पादन ले सकें। प्रायः देखा होगा कि जैसे हरित क्रांति के बाद हमारा उत्पादन तो बढ़ा है, परंतु कहीं ना कहीं हमने मिट्टी की सेहत काफ़ी बिगड़ चुकी है, कई तरह के खाद का उपयोग हम किए जा रहे हैं। तो ये कुछ बातें ऐसी है जिनका किसानों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ इसके लिए क्या उन्नत तकनीकियाँ हैं जिनके उपयोग किसान कर सकें ताकि आने वाले समय में उनकी खेती जो है निरंतर इसी अवस्था में बनी रहे, वो अधिक से अधिक उपज इससे प्राप्त कर सके। तो इस उद्देश्य

0: को ध्यान में रखते हुए ये 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान चलाया जा रहा है।
1: जी सर, हमारे किसान भाई समझ गए होंगे कि वर्तमान समय में खेत बचाओ अभियान की आवश्यकता क्यों है। अब बात आती है सटीक कृषि क्या है और यह पारंपरिक खेती से किस तरह अलग।
0: जिसे इस पूरे अभियान में अगर देखा जाए तो एक सटीक कृषि जो है वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सटीक कृषि का यहाँ पर आशय ये है कि हम अपने संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करें। खेती में प्रयोग होने वाले जैसे विभिन्न आदान है, जैसे कि हमें खाद की आवश्यकता होती है, हमें बीज की आवश्यकता होती है, हमें जल की आवश्यकता होती है, तो इसका सही मात्रा में, सही समय पर, सही जगह उपयोग, सही तरीके से, ये 4 प्रमुख इसके घटक होते हैं सटीक कृषि के। इन चारों का अगर हम पालन करें, जैसे हम बात करें कि खाद की, तो खाद की मात्रा कितनी होनी चाहिए, फसल के लिए उसकी आवश्यकता कितनी है, किस समय पे हम इसे दें और किस जगह पे दें, तो यही बातें लागू होती है खाद के लिए, जल के लिए, रसायन के लिए एवं अन्य प्रकार के उर्वरकों के लिए। तो इसका अगर सटीक तरीके से अगर खेती में हम प्रयोग करते हैं तो यही सटीक खेती है। साथ ही साथ किसी एक भूभाग की अगर हम बात करें खेत में, तो कई प्रकार की उसमें विभिन्नताएँ होती है। अगर हम 1 हेक्टेयर के खेत की अगर बात करें तो वो एक समान रूप से नहीं होता है। कहीं पर उसमें पहले से सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक होती है, कहीं पर कम होती है, उनकी मात्रा कम ज़्यादा होती है। तो इस विविधता की जांच करते हुए जहाँ पे कम आवश्यकता है वहाँ पे कम आदानों का उपयोग करें, जहाँ पे ज़्यादा आवश्यकता है वहाँ पे ज़्यादा का उपयोग करें, तो इस विविधता को देखते हुए उसके अनुसार ही अगर हम इनका अनुप्रयोग करेंगे तो यही सटीक कृषि है।
1: बिल्कुल, हमारे किसान भाई सटीक कृषि क्या है और पारंपरिक खेती से किस तरह अलग है, और आपने बहुत अच्छे से विस्तार से जानकारी हमारे किसान भाइयों को दे दी और हमारे किसान भाई समझ भी गए होंगे। अब बात आती है सटीक कृषि हेतु उन्नत उपकरण कौन कौन से हैं।
0: सटीक कृषि का जैसे हमने चर्चा की कि इसमें विविधताएं जो हैं उसको हमें पता करना है, तो इसको पता करने की कई वैज्ञानिक तरीके भी हो सकते हैं, परंतु हमें अगर खेत में उसी समय में जिस समय हमें इन संसाधनों का उपयोग करना है, इन आदानों का उपयोग करना है, हमें खाद वहाँ पर डालना है या फिर बुआई करना है, बीज का उपयोग करना है, रसायन का करना है, तो त्वरित हमें जाँच कैसे करके हम कैसे पता करें कि सही समय में ये किस मात्रा में हम वहाँ पर डालें इन उर्वरकों को या रसायनों को, तो इनको जाँच करने के लिए कई प्रकार की तकनीकियाँ है, जैसे आजकल AI की बात होती है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तो इससे आधारित कई तकनीकियां होती है जिनका उपयोग करके आप सही समय में, उचित समय में या उसी समय में जिस समय में हमें इस प्रकार के आदानों का खेती में प्रयोग करना है तब हम उनकी जांच कर सके। कई प्रकार के कृषि में सेंसर्स का भी इस्तेमाल होता है, जैसे हम मिट्टी की बात करें तो मिट्टी में कई सेंसर से हम पता कर सकते हैं कि मिट्टी में नमी कितनी है, उसमें किस प्रकार के तत्व है, तो सही समय में ये पता करके हम इनका उपयोग कर सकते हैं। आज ड्रोन आधारित कई तकनीकियां है जिससे कि हम फसल के स्वास्थ्य का पता कर सकते हैं, किस प्रकार की उसमें बीमारियां ये हम पता कर सकते हैं, उस क्षेत्र से कितना उत्पादन हम ले सकते हैं इसकी जानकारी हम ले सकते हैं। साथ ही आजकल रोबोटिक्स और कई नई नई तकनीकियां विकसित होती जा रही है, तो इस प्रकार की तकनीकियां जो है इनका उपयोग खेतों में करना जिससे कि हम अपने खाद की बचत कर सकें, बीज की कर सकें, पानी की कर सकें, तो ये इस प्रकार की कुछ तकनीकियां है सेंसर आधारित, ड्रोन आधारित, जिनका उपयोग हम सटीक कृषि के लिए कर सकते हैं।
1: जी सर, आपका मानना है सटीक कृषि के लिए उन्नत उपकरण बहुत से हैं, हमारे किसान भाइयों को उपयोग करना है
0: जी।
1: अब बात आती है जुताई व खेत को तैयार करने के लिए सटीक कृषि यंत्र कौन कौन से हैं।
0: जिसे खेत को तैयार करना या जुताई करना किसी भी फसल को की शुरुआत के लिए एक प्रारंभिक कृषि कार्य होता है। इस कार्य को करने के लिए हमारे पास कई प्रकार के पारंपरिक यंत्र भी उपलब्ध है, परंतु सटीक कृषि से हमें आवश्यकता है कि सबसे पहले तो वो समतल हो। अगर समतल होगी तो उससे होने वाला उत्पादन भी एक समान होगा तथा पूरे खेत को एक समान रूप से खाद की, बीज की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेजर लैंड लेवलर का उपयोग करते हैं। यह एक यंत्र होता है जो कि आपकी खेत को एक समतल रूप में तैयार करता है। इसके लिए लेजर लैंड लेवलर का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ अगर खेत को तैयार करने के बाद अब हमें आवश्यकता है कि अलग अलग प्रकार के हम टिलेज ऑपरेशन होते हैं जिससे कि हम जो जितने भी खेत में बड़े मिट्टी के ढेले हैं उनको छोटे ढेलों में बदलते हैं जिससे कि बुआई आसानी से की जा सके, तो इसके लिए हम अलग अलग प्रकार के, जैसे एक स्वचालित ट्रैक्टर का एक ऑटो स्टीयरिंग सिस्टम होता है। इसकी खासियत यह होती है कि इसको अगर हम ट्रैक्टर के साथ इसको अटैच करें समान रूप से, क्योंकि ये GPS आधारित एक तकनीक होती है
1: जी।
0: इसका फायदा क्या होगा आप ये देखिए कि जैसे सामान्य अगर ट्रैक्टर को चलाने वाला जो ऑपरेटर है, अगर वो एक लाइन में टिलेज करते हुए अगर जाएगा और दोबारा वापस आएगा तो वो कहीं ना कहीं 10-15% हिस्सा ऐसा होगा जिसमें दोबारा ये काम होगा, मतलब ओवरलैपिंग होगी। इस ओवरलैपिंग

0: को हम ऑटो स्टेयरिंग सिस्टम के माध्यम से 10 से 15% की जगह 1 से 2% पे ला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें एक हेक्टेयर खेत में जहाँ पे जितने समय की आवश्यकता हो रही थी, जितने संसाधन हम उपयोग में ला रहे थे, वो 10 से 15% की वहाँ पे बचत हो जाती है। तो एक ऑटो स्टेयरिंग सिस्टम का हम उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि एक समान कतारी में बुआई होगी, उसके बाद हमने भूमि को तैयार कर दिया। अभी हम और नवाचार की अगर बात करें तो इसमें हम इस प्रकार की तकनीकों पर भी काम कर रहे हैं कि खेत में अगर मिट्टी के ढेलों का आकार अलग अलग है तो उसमें चलने वाला एक रोटावेटर एक यंत्र होता है, उसकी गति को हम ढेलों का फोटो, हम सामान्य कैमरा से फोटो लेके रियल टाइम में चलते हुए ही हम रोटावेटर की गति को परिवर्तित करते हैं, जिससे कि बड़े ढेलों को वो ज्यादा स्पीड से चल के तोड़ता है, छोटे ढेलों को कम स्पीड से चल के तोड़ेगा। तो इस प्रकार के ये कुछ नवाचार है जो खास करके खेत को तैयार करने के लिए या टिलेज जो हम ऑपरेशन जिसको बोलते हैं प्राय, उसके लिए इन यंत्रों का उपयोग कर सकते हैं।
1: जी, आपका कहना है सर कि सटीक कृषि यंत्र से हमारे किसान भाई जुताई बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सर, सटीक कृषि यंत्र से बुवाई कैसे कर सकते हैं, हमारे किसान भाई बिल्कुल जानने के लिए उत्सुक होंगे।
0: बुवाई अगर हमें सटीक कृषि यंत्रों से करना है तो जैसे कि सटीक कृषि के कुछ प्रमुख हमने बातें की थी कि सही गहराई में बीज का डालना बहुत जरूरी है, वह सही मात्रा में। तो इसके लिए न्यूमेटिक प्लांटर एक यंत्र होता है जो कि एक एक बीज को समान दूरी पे समान गहराई में आसानी से बुआई की जा सकती है उसके माध्यम से। तो न्यूमेटिक प्रिसीजन प्लांटर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही कई अन्य तकनीक ऐसे होती है जैसे कि इंक्लाइंड प्लेट प्लांटर भी एक यंत्र होता है जिसके माध्यम से हम बराबर दूरी पे बीजों को हम लगा सकते हैं। क्योंकि सटीक कृषि के अंतर्गत हमें इन संसाधनों का बचाव करना है या इनकी बचत करना है तो यह आवश्यक है कि पौधों की दूरी बराबर हो। तो हम जो भी इन यंत्रों के माध्यम से बुआई करते हैं या प्लांटिंग करते हैं जैसे कि, तो इसके लिए भी वेजिटेबल ट्रांसप्लांटर होते हैं। तो इस प्रकार के सटीक यंत्र है जिनके माध्यम से आप बराबर दूरी पे आप बीजों को लगा सकते हैं। इससे बीज की बचत तो होती है, साथ ही साथ सभी पौधों को एक समान जगह मिलती है अच्छा ग्रोथ करने के लिए, उनकी वृद्धि के लिए।
1: जी सर, उर्वरक प्रयोग में सटीक कृषि यंत्रों की भी भूमिका है क्या?
0: जैसे देखते आ रहे हैं कि कई बार उर्वरकों का प्रयोग जो है असंतुलित रूप से हो रहा है, जैसे कि जहां पे आवश्यकता नहीं है वहां पर भी हम अधिक उर्वरकों का उपयोग करते जा रहे हैं। नतीजा उसका यह हो रहा है कि हमारी जो भूमि है वो और अधिक कड़क होती जा रही है। प्रायः आपने देखा होगा कि पहले हम सिर्फ हल चलाने के बाद अगर बखर चलाते थे तो हमारी जो खेत है वो बड़े अच्छे तरीके से तैयार हो जाता था, परंतु आजकल हल बखर चलाने के बाद भी हमें यंत्रों को 4 से 5 बार चलाना पड़ता है, उसके बाद हमें रोटावेटर चलाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हम जो काम पहले 2 बार में हो रहा था उसको हम 5 से 6 बार कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि हमने इतना खाद का उपयोग किया है कि अब वो मिट्टी उस लायक नहीं बची है कि वो कम से कम संसाधनों से तैयार हो सके। तो इसके लिए हमें आवश्यकता है कि उर्वरकों का उचित मात्रा में सही तरीके से उपयोग किया जाए। तो इसमें सटीक कृषि के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो ड्रोन आधारित कई कैमरा होते हैं, इनके माध्यम से हम ये आकलन कर सकते हैं कि पौधों को कितने खाद की आवश्यकता है। एक यंत्र होता है स्पेडमीटर, स्पेडमीटर के माध्यम से हम पौधों में क्लोरोफिल कंटेंट का पता कर सकते हैं। अगर ये क्लोरोफिल कंटेंट अगर उसमें अधिक है तो हमें उसको खाद देने की आवश्यकता नहीं है, अगर कम है तो उसमें हमें देने की आवश्यकता है। कितना देने की आवश्यकता है, इस प्रकार के भी कई प्रयोग किए गए हैं जिनके माध्यम से आप ये पता कर सकते हैं कि अगर हमारा स्पेड की मीटर का माप इतना है तो हमें कितना खाद उसमें देना है। साथ ही कई यंत्र ऐसे इमेज आधारित भी है, NDVI कुछ मीटर भी होते हैं, उनके माध्यम से भी आप निकाल सकते हैं कि हमारी फसल किस अवस्था में है और हमें इसे कितना खाद देना है।
1: जी सर, सटीक कृषि हेतु किस तरह की सिंचाई प्रणाली अपनाई जाती है?
0: सटीक कृषि के अंतर्गत अगर आजकल हम ड्रिप प्रणाली का उपयोग करें या फवारा या स्प्रिंकलर प्रणाली का उपयोग करें तो इसके माध्यम से कम 30 से 40% पानी की बचत कर सकते हैं। इसमें एक और तकनीक है सेंसर आधारित, सेंसर जो है वो आपकी जो भी खेत है मिट्टी के अंदर एक सेंसर लगा होता है जो कि ये बताता है कि अब आपकी मिट्टी को या आपकी फसल को सिंचाई की आवश्यकता है या नहीं। इससे कुछ और बढ़ के भी सिस्टम है IoT आधारित, आजकल हम सुनते हैं कि AI व IoT का काफी प्रयोग हर क्षेत्र में हो रहा है, उसी का प्रयोग खेती में भी हुआ है। IoT के माध्यम से आप चाहें तो खेत पर नहीं भी है, अगर आप घर पर भी है तो अपने स्मार्टफोन के माध्यम से भी आप अपने पंप को ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसमें जो सेंसर लगे होते हैं वो आपको रियल टाइम में ये बताते हैं कि अभी आपकी मिट्टी में नमी कितनी है और इस फसल को अगर आवश्यकता है तो वो ऑटोमेटिक भी ऑन हो सकते हैं। तो इस प्रकार के जो तकनीकी आए खास करके सिंचाई के लिए ये सटीक कृषि के अंतर्गत, इनका उपयोग किसान भाई अगर करेंगे तो जल की बचत होगी।
1: जी, बहुत फायदा भी होगा। सर, फसल कटाई गहाई में सटीक कृषि यंत्र कैसे सहायक हैं?
0: सबसे प्रमुख तो ये होता है कि हमारी फसल कितनी होने वाली है इसका पूर्वानुमान लगाना। तो फसल कटाई और गहाई के लिए फसल की उपज का आकलन करना, कुछ समय पहले, तो उसके लिए हमारे पास ड्रोन आधारित तकनीकियाँ भी है।

0: इसमें कितनी आपकी फसल का उत्पादन होना है। तो एक इस तकनीक का उपयोग करेंगे तो आपको एक पूर्वानुमान लग जाएगा। साथ ही बगीचों के लिए भी इस प्रकार की तकनीकी है जहाँ पे बागान किसान भाइयों के पास है
1: जी।
0: एक और तकनीक होती है जिसमें कि फसल की यील्ड मॉनिटर करना, ये एक GPS आधारित तकनीक होती है। और साथ ही जैसे आपकी कंबाइन हार्वेस्टर का हम उपयोग करते हैं फसल को काटने के लिए, तो कंबाइन हार्वेस्टर जैसे जैसे फसल को काटती जाती है और प्रति वर्ग क्षेत्रफल जो आपका है उससे क्या उत्पादन आता जा रहा है वो रियल टाइम में उसका आकलन करती रहती है। और साथ ही वहाँ पे एक GPS लगा होता है तो आपको अलग अलग जगह पे ये पता चल जाता है कि हमारा एक हेक्टेयर या आधा हेक्टेयर की जो भूमि है उसके अलग अलग हिस्से में उत्पादन कितना मिल रहा है। तो ये हमें सहयोग करती है अगली फसल लेने के लिए। तो हम एक मैपिंग भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें कम उपज प्राप्त हुई है तो अगले वर्ष या अगली फसल के लिए हम वहाँ पर पहले से प्रबंधन कर सकें।
1: जी सर, श्रोताओं बात सीधी है, पुराना जमाना गया, अब खेत बोलेगा, सेंसर बताएगा और ड्रोन करेगा और मुनाफा आपके हाथ में होगा। किसान भाइयों, सटीक खेती करोगे तो खेत भी बचेगा और आय भी बढ़ेगी। डॉक्टर साहब, आपने हमारे कृषक भाई बहनों के लिए ज्ञानवर्धक जानकारी दी, उचित सलाह दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो भैया हरो, अब आपने जाने सटीक कृषि हेतु उन्नत उपकरणों की खेत बचाओ अभियान में भूमिका के बारे में। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर दिलीप जाट और इनसे बातचीत करी हती अपनी पुष्पा सिंह और जिज्जी ने। तो आप और अनहेजा जानकारी कैसी लगी हमें अपने पत्रन के माध्यम से ज़रूर के बताइयो, पतो आप और जानते ही हो। और अब से सुन लेते हैं अनरथ लाल बैरसिया के सुरों में जो प्यार और सुलोक गीत।

भैया बहनों, जैसो कि हम आप सब जने जानते हैं कि खेती में समय पर बुआई, सिंचाई, निराई, गुड़ाई और कटाई के जो काम होते हैं उनको बहुत ही महत्व होते हैं। मानो समय की बचत, लागत में कमी और उत्पादन में बढ़ोतरी, ये तीनों ही बातें हर किसान की प्राथमिकता होते हैं। लेकिन कई बार मजदूरन की कमी, बढ़त भई लागत की वजह से किसानन को कई कठिनाइयों को सामने करना पड़ा थे। और ये बात को ध्यान में रखत भय सरकार द्वारा कृषि यंत्रीकरण उपमिशन चलाओ जा रहा है, जी को उद्देश्य है खेती को आसान, कम खर्चीलो और अधिक लाभकारी बनावो। ई के तहत किसानन हे ट्रैक्टर, रोटावेटर, सीड ड्रिल, मल्टी क्रॉप प्लांटर, रीपर, हार्वेस्टर, पावर वीडर और ऐसे करीब अन्य कई आधुनिक कृषि यंत्रण पर सरकार द्वारा निर्धारित नियमन के अनुसार अनुदान उपलब्ध कराओ जाते हैं, जिसे खेती के काम कम समय पर पूरे होते हैं, उत्पादन लागत घटत है और फसल की उत्पादकता भी बढ़त है। मनो उद्देश्य होते हैं कि छोटे और सीमांत किसान भी आधुनिक तकनीक को लाभ उठा पावे। अच्छा, जिन किसानन के लाने व्यक्तिगत रूप से मांगे कृषि यंत्र खरीद वो संभव नहीं हो पात, सो उनके लाने कस्टम हायरिंग सेंटर और फार्म मशीनरी बैंक जैसी सुविधाएं सोई उपलब्ध हैं, जितने किसान आवश्यकता पर भी पे किराए पे कृषि यंत्र ले सकते हैं। तो अगर आप उन्हें भी ये योजना को लाभ लेबो चाहते हो तो अपने जिला के कृषि विभाग, कृषि अभियांत्रिकी विभाग या पास के कोनो भी किसान कल्याण एवं कृषि विकास कार्यालय से संपर्क कर सकते हो। इसके अलावा योजना से जुड़ी जानकारियां कृषि विभाग की वेबसाइट और संबंधित पोर्टल पे भी उपलब्ध रहते हैं। सो किसान भैया, हम तो जय कहे हैं कि जब अपन है इतनी सुविधाएं मिल रही हैं, आप उन्हें भी आधुनिक कृषि यंत्रण को अपनाओ, खेती को सरल बनाओ और अपनी आय सोई बढ़ाओ है। बाकी मनोरंजन के लाने आपकी ग्राम सभा में लोकगीत हैं, सो उनको आनंद लो। सो सुनत है राम कुमार प्रजापति और साथियों के सुरों में जो जैविक खेती गीत।

और अब हम अपने किसान भैया बहनों को खेती किसानी से जुड़ी ज़रूरी सलाह सोई दे देवे। भैया रो आगामी मौसम को देखत भय आप और अनहे सोयाबीन मका और अरहर की उन्नत किस्मन के बीजन की व्यवस्था करबे की सलाह दी गई है। उद्यान की फसलन की बात करबे तो उनमें पुष्पन और प्रत्यारोपण अवस्था चल रही है, सो ये देखत भय सलाह दें कि नए स्थापित बागन में मृत पौधन की जगह स्वस्थ पौधा लगा के गैप फिलिंग ज़रूर कर लेवें। और अब अपने ढोर बछे हुए की सोई बात करने लेते हैं तो भैया हरो धूल भरी आंधी गरज चमक बिजली गिरवे के दौरान और ओलावृष्टि के टाइम पे पोल्ट्री शेड की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखबे। गाय बकरियां और नवजात पशुओं को कृमिनाशक तथा बकरियां है पीपीआर रोग से बचावे के लाने टीकाकरण अवश्य करा लेवे। पशुअन है दिन के टाइम पे छायादार जगह पे रखबे, ठंडो और साफ सुथरो पानी पियावे, संगे रोज पर्याप्त हरो चारो खनिज मिश्रण और संतुलित आहार सोई देते रहें, जैसे कि उनकी उत्पादकता भी बनी रहे और स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो भैया हरो चाहती आप और इनके लाने खेती किसानी से जुड़ी जरूरी सलाह। और अब सुने लेते हैं गणपत सिंह यादव और साथियों के सुरों में गाई भैया चेतावनी।

तो भैया हरो जो तो हतो आज को ग्राम सभा कार्यक्रम। अब घड़ी की सुइयां इशारों कर रही हैं कि चलबे की बिरिया हो गई है। लेकिन आप है आज को जो कार्यक्रम कैसो लगो जरूर के बताइयो अपनी चिट्ठियन के माध्यम से पत्रन के माध्यम से। उसे तो पतो आप और जानते ही हो फिर भी एक बार बताएं देते हैं। ग्राम सभा कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी श्यामला हिल्स भोपाल और पिन कोड है 4620002। और अब जावे

से पहले काल के कार्यक्रम भी आपको बता दें, मैं काल सवेरे 6:45 पे डॉक्टर मीना यादव से सुने कृषि चर्चा, विषय रहे सतत कृषि के विकास में समेकित पोषक तत्व प्रबंधन। और अब सो ग्राम सभा सुनने वाले सभी किसान भैया भौजियों को, काकी चचू चाची हरों को और बाकी के सभी श्रोताओं को राधा बहन की एक बार फिर हाथ जोड़ के प्यारी सी मुस्कान के संगे राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम सभा। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक संकट पर केंद्रित 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत जितेंद्र कुमार त्रिपाठी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अम्बरीश सक्सेना।
2: आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक और आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और वैश्विक चुनौतियों पर। और इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं श्री जितेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, जो कि पूर्व राजदूत हैं। ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में तमाम विषयों पर चर्चा हुई और ब्रिक्स के जो भी सदस्य देश हैं उनके बीच में कैसे सहयोग बढ़ाया जाए और खास तौर से जो सुरक्षा के मसले हैं, जिस तरह से वैश्विक स्थितियां बदल रही हैं आज के जमाने में, ऐसे हर राष्ट्र के सामने सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया है। तो ब्रिक्स के जितने भी देश हैं उनके बीच में किस तरह से सहयोग बढ़ाया जाए जिससे कि आतंकवाद पर काबू पाया जा सके, साइबर सुरक्षा की चुनौतियों का सामना किया जा सके और अन्य क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर जो भी समस्याएं हैं उनका निदान ढूंढा जा सके। तो सबसे पहले मैं त्रिपाठी जी आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हुई और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ जो विचार विमर्श किया, उसके मुख्य बिंदु आपके अनुसार क्या है?
3: देखिए, ये पहली बार था ब्रिक्स के इतिहास में जबकि ब्रिक्स के सुरक्षा अधिकारियों की बैठक में सुरक्षा का आयाम बड़ा किया गया, विस्तार दिया गया, इसका स्कोप बढ़ा दिया गया। पहले जब सिक्योरिटी की बात होती थी तो सिर्फ यही होता था कि सिक्योरिटी का मतलब की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, तो एक देश की सेना दूसरे पे हमला न करे, उनसे सुरक्षा, या ज्यादा से ज्यादा टेररिज्म से या टेररिस्ट एक्टिविटीज से जो कि बाहर से स्पॉन्सर होती है, पोषित होती है बाहर से, उनके खिलाफ। लेकिन इस मीटिंग में इसका स्कोप बढ़ा करके काफी कुछ कर दिया है, क्योंकि इसमें ये सिक्योरिटी चैलेंज जो है जिस पे ये बहस की गई, जिस पे वार्तालाप किया गया, विचार विमर्श हुआ, वो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंज, ट्रेडिशनल पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों के अलावा वो एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, सप्लाई चेन सिक्योरिटी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो अभी टेररिस्ट नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं उससे सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी और क्लाइमेट इंड्यूस इंस्टेबिलिटी, मतलब जो मौसम में चेंज आ रहा है, पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहा है उससे जो असुरक्षा की भावना या अस्थिरता की भावना आ रही है, इससे एनर्जी सिक्योरिटी सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सारे देशों के लिए, पूरे विश्व के लिए। खासतौर से जब ये दिखा कि ईरान और अमेरिका के युद्ध में ऊर्जा का आवागमन कितनी बुरी तरह से प्रभावित हुआ, ऊर्जा का आयात निर्यात, और उससे कई देशों में बहुत बड़ी समस्याएं हुई, तो एक तो ये। दूसरा, फूड सिक्योरिटी। आज जहां कुछ तथाकथित धनी देश अधिक उत्पादन को सिर्फ दाम पे कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए दूध नालियों में बहा दिया जाता है या फसलें जला दी जाती है, वहीं दूसरी ओर अफ्रीका के कई देशों में और जगहों पे लोग अभी भी खाने बिना कई जगह भुखमरी की स्थिति। तो ये जो इम्बैलेंस है, जो असंतुलन है, इसको दूर करने का यही एक उपाय है कि हम फूड सिक्योरिटी के बारे में कुछ करें, सप्लाई चेन सिक्योरिटी, इन दोनों ही मामले में। फिर

0: जो टेररिस्ट नेटवर्क अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर, यूएवी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, इनके खिलाफ लड़ने की भी आवश्यकता है। साइबर सिक्योरिटी, जो साइबर स्पेस का गलत उपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, साइबर स्पेस में आप जाके उनकी सीधी खबरें आप प्रसारित करा रहे हैं, जिससे और ऐसे भी कंटेंट आप वो करा रहे हैं ताकि लोग टेररिस्ट एक्टिविटीज के प्रति ज्यादा झुकाव या रुझाव हो। ये सब चीजें इसमें अभी सम्मिलित की गई है एक बार, और इस तरह से इसका सिक्योरिटी चैलेंजेस का दायरा बढ़ा।
1: जी, यहाँ पे त्रिपाठी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने जिक्र भी किया सप्लाई चेन का, क्योंकि जो भी युद्ध की स्थिति बनती है, और जैसे आपने कहा भी ईरान और अमेरिका का जो युद्ध हुआ वो हमारे सामने है, कि किस तरह से जो देश किसी भी रूप में इस युद्ध में शामिल नहीं थे प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, लेकिन सब पे प्रभाव पड़ा, हमारी जितनी भी सप्लाई थी ऊर्जा की वो सारी बाधित हो गई। तो जब हम ब्रिक्स के देशों के बीच में सहयोग की बात करते हैं, तो ये जो सप्लाई चेन की समस्या है उसका ब्रिक्स के सहयोग से किस तरह से उसका समाधान ढूंढा जा सकता है?
0: देखिए, मेरे विचार से ब्रिक्स के सहयोगी देशों या ब्रिक्स के सदस्य देशों को ये चाहिए कि वो ऐसा तरीका इनके ढूंढे कि अगर कहीं पर इनस्टेबिलिटी हो, अस्थिरता हो, या फ्लैश पॉइंट्स हो जहां पर युद्ध होने की संभावना हो या युद्ध हो रहा हो, वहां से गुजरने वाले जहाजों या वहां से गुजरने वाली सप्लाई को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए। देखिए, ये प्यास लगने पर कुआं खोदने वाली बात नहीं, यान युद्ध समाप्त हो गया है जहां तक हमें उम्मीद, लेकिन फिर भी हमें इसके लिए तैयारी करनी चाहिए कि अगर भविष्य में कहीं कुछ ऐसा होता है तो हम अल्टरनेट सप्लाई चेन की व्यवस्था करें, ताकि ऐसा होते ही हम दूसरे रास्तों से सामान का, गुड्स का, एनर्जी का, ऊर्जा का आवागमन करा सकें।
1: इसके अलावा त्रिपाठी जी, जैसे सुरक्षा की हम बात करते हैं और सारे जो ब्रिक्स के सहयोगी देश हैं उनके बीच में आपसी तालमेल की बात करते हैं सुरक्षा को लेकर, लेकिन मैं फिर से ईरान को संदर्भ के रूप में प्रस्तुत करके मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि जैसे भारत के या ब्रिक्स के अन्य देशों के जो शिप्स हैं या उनपे जो हमारे नाविक तैनात है, इस तरह के मामलों में ब्रिक्स के देश किस तरह से आपस में ऐसा तंत्र विकसित कर सकते हैं कि वहां पर हमारे शिप्स को या उनमें सवार नाविकों को सुरक्षा प्रदान की जा सके?
0: देखिए, इसमें एक वो बिंदु जिस पर सुरक्षा अधिकारियों की मीटिंग में विचार विमर्श किया है, वो इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने ये कहा है कि ब्रिक्स की लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी, जो कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने वाली जो एजेंसी, उनको आपस में कोऑर्डिनेट करना चाहिए, समन्वय करना चाहिए, ताकि वो टेररिज्म को काउंटर कर सके, टेररिज्म को, साइबर रिस्क को, इसको एक सम्मिलित रूप से, एक संयुक्त रूप से मिल करके इसका सामना किया जा सके। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी, और इसी के संदर्भ में यह है कि यह अब हमें देखा जाना चाहिए कि जब भी कभी ऐसी समस्या है, जब भी किसी देश पर साइबर अटैक हो, टेररिस्ट अटैक हो, या यूएवी का अटैक हो, या सप्लाई चेन बाधित हो, उस वक्त के लिए हमें ये कोशिश करते रहना था, एक कोई संगठन बनाए या कोई एजेंसीज का एक कोऑर्डिनेटिंग पॉइंट बनाए, एक कॉन्टेक्ट पॉइंट बनाए, जहाँ की ऐसी स्थिति में तुरंत सारे देशों को खबर दी जा सके और तुरंत उनकी एजेंसी जो है वो चालू हो जाए, वो एक्टिव
1: जी
0: हो जाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो किसी भी क्षेत्र में हो रहे आतंकवाद से खत्म करने के लिए, उनका सामना करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पुनर्स्थापित करते हैं कि हम प्रतिबद्ध हैं कि किसी भी स्थिति में, किसी भी स्वरूप में अगर आतंकवाद हो तो उसका हम सामना करेंगे। ये सब बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने ये भी कहा है, ब्रिक्स के जो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी 21-22 मई में, और जो एक मीटिंग हुई थी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर 8 और 9 जून को दिल्ली में इसी साल, उस पर भी विचार किया है। तो अब ये आगे अपरिहार्य हो जाता है कि इन चीजों पे जो विचार हुआ है इसका तत्काल ही कुछ रिजल्ट आना चाहिए, कुछ परिणाम आना चाहिए। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी इंगित किया है कि हमें अब प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पे ज्यादा जोर देना चाहिए, हो सकने योग्य है ऐसे समाधानों पर ज्यादा जोर देना चाहिए, ताकि हम इस पे काम जल्दी से कर सकें।
1: जहाँ तक त्रिपाठी जी साइबर सुरक्षा की अगर हम बात करें, क्योंकि साइबर के खतरे काफी ज्यादा हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमें किस तरह का एक डिजिटल नेटवर्क तैयार करने की जरूरत है जिसमें आसानी से कोई सेंध ना लगा पाए, और ये ऐसा फूल प्रूफ सिस्टम हो जहाँ पर हम किसी भी तरह

0: के साइबर हमले को रोक सकें और सूचनाओं के आदान प्रदान से बाकी जितने भी सदस्य देश हैं ब्रिक्स के उनको इस साइबर खतरों से हम बचा सकें, इसके लिए क्या और अतिरिक्त करने की जरूरत है आपके अनुसार?
1: जी देखिए, इसके लिए ये भी कहा गया है कि हमें AI ह्यूमन सेंट्रिक बनाने और AI गिवन सिक्योरिटी रिस्क जो है उसको खत्म करने के लिए तुरंत ही हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा। हम यूनिफाइड एफर्ट करेंगे, मतलब एक संयुक्त प्रयास सम्मिलित रूप से हम करें ताकि जैसे ही किसी देश के ऊपर कोई अटैक हो, साइबर अटैक हो, वो अन्य सभी सदस्य देशों को तुरंत ही सावधान कर सके कि देखिए ऐसी समस्या आई है और अपने नागरिकों से कह दीजिए कि ये प्लेटफॉर्म ना खोले या ये चीज ना खोले इंटरनेट पे, नहीं तो इससे सिक्योरिटी को सुरक्षा को ये समझौता हो सकता सुरक्षा खत्म हो। जैसे नेवी में होता अर्ली वार्निंग सिस्टम,
0: जी
1: नेवी में या सुनामी में, यहाँ पर हमारे यहाँ कुछ ऐसा अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए। हालांकि वार्निंग तो यहाँ हम अर्ली तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन जैसे ही कहीं किसी भी देश में ऐसे खतरे को महसूस किया जाता है तुरंत समस्त देशों में इसको प्रचारित कर देना चाहिए ताकि खतरा कम से कम हो सके।
0: त्रिपाठी जी, प्रधानमंत्री ने जो ब्रिक्स के सलाहकार आए हुए हैं उनसे बातचीत में इस बात का जिक्र भी किया कि कैसे ग्लोबल साउथ के बीच में एक सामंजस्य बनाने की स्थिति है जिससे कि पूरी दुनिया में समावेशी माहौल तैयार किया जा सके और जिसमें पूरी दुनिया के जो नागरिक हैं उनको हर तरह की सुविधा और सुरक्षा मुहैया कराई जा सके और सभी लोग मिलकर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ें। तो यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं तो मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ के सामने कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जिनका हमें मिलकर सामना करना है और इस दिशा में खास तौर पर ब्रिक्स के देश क्या कर सकते हैं?
1: देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो मेरे विचार से ग्लोबल साउथ के सामने जो है वो ये है कि ग्लोबल नॉर्थ की दादागिरी। दूसरी चुनौती ये है कि ग्लोबल साउथ की बात विश्व के प्लेटफॉर्म पर जनरली आमतौर पर नहीं सुनी जाती। इसलिए इसी के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि भारत जो है अब एक तरह से ग्लोबल साउथ का अघोषित प्रवक्ता बन चुका है और ये उसके लिए एक बड़ी अच्छी स्थिति है कि वो एक पुल के तौर पे ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की बातें, उनके कंसर्न, उनकी चिंताएं वहां तक प्रेषित करने में समर्थ है, क्योंकि भारत पिछले 9 साल से G7 की समिट में भी बुलाया जाता रहा है, तो अपनी इस स्थिति का उपयोग करके भारत ये काम कर सकता है। तीसरी चीज ये है कि ग्लोबल साउथ की जो समस्या है ये वातावरण से संबंधित है, वातावरण में जो परिवर्तन हो रहा है उसके लिए जो भी तरीके या जो भी तकनीक अपनाई जाएगी उस तकनीक को फ्री में लोगों को मुहैया कराया जाए। इसके साथ ही साथ ये कि नई टेक्नोलॉजी, नई तकनीक कृषि के क्षेत्र में हो, एनर्जी के क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, नई तकनीक भी जल्दी से जल्दी मुहैया कराया जाना चाहिए। विश्व अभी अभूतपूर्व जल संकट से जूझ रहा है, ये हालांकि सस्टेनेबल गोल में है लेकिन इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जहां वेस्ट जो है वो बहुतायत से पीड़ित है वहां हमारे यहाँ अभाव से पीड़ा है।
0: अंत में मैं त्रिपाठी जी एक सवाल फिर से सुरक्षा से संबंधित आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि इस विषय में भी चर्चा हुई कि कैसे हम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं ब्रिक्स के देशों की, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो कानून का अनुपालन कराएं और जो सूचनाओं का आदान प्रदान है कानून को लागू करने से संबंधित या इंटेलिजेंस से संबंधित, इसमें आदान प्रदान को कैसे और हम प्रगाढ़ और सुदृढ़ कर सकते हैं?
1: देखिए, मेरे विचार से तो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज का अपना एक छोटा ग्रुप होना चाहिए, वर्किंग ग्रुप, जिसकी रेगुलर मीटिंग हो और ऐसी व्यवस्था हो कि कहीं भी अगर ऐसी कोई बात हो तो तुरंत ही उनको सूचित किया जाए, वो और लोगों को सूचित करें कि आप यहाँ ऐसा अटैक होने वाला है या हमने ऐसी इमेजरी देखी है कि आपके यहाँ कुछ जहाज या किसी उससे होगा, या हमने ये देखा है कि सुनामी आने वाला है, हमने देखा है कि बाढ़ आने वाली है, ये चीजें भी जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती, या ये देख के करें कि कहीं टेररिस्ट अटैक की योजना तो नहीं बन रही है, या कहीं अगर किसी सदस्य देश की लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी में ये उसको पता लगा कि हाँ हमारे यहाँ से कुछ लोग दूसरे देश में आतंकी कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं, तो तुरंत और देशों को सावधान करना बहुत जरूरी है। इसी की वजह से ये जरूरी है कि एक लगातार निर्बाध और सेफ, पूरी तरह से सुरक्षित चैनल इन देशों की सुरक्षा एजेंसियों के बीच में हो, हॉटलाइन की तरह जैसे कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में होती है, ताकि निर्बाध तुरंत ही वो जानकारी प्रेषित की जाए।

0: जी त्रिपाठी जी, चलते हैं अब कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और जैसा कि ब्रिक्स की जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक है उसमें जो मुख्य बातें हुई आतंकवाद से संबंधित और साइबर सुरक्षा और अन्य वैश्विक चुनौतियों से संबंधित, आपने उसके बारे में न सिर्फ महत्वपूर्ण जानकारी दी बल्कि उन विषयों की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित कराया, जैसा कि आपने कृषि की बात की, जल संकट की बात की और किस तरह से ब्रिक्स के बीच में सहयोग को बढ़ाकर इन समस्याओं का सामना किया जा सकता है जिससे कि हम एक बेहतर विश्व बना सकें। आपका इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक संकट पर केंद्रित 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत जितेंद्र कुमार त्रिपाठी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अम्बरीश सक्सेना।
2: सुर्खियों में
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

तेरी कसम, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसके लिए आवाज़ थी अमित कुमार, लता मंगेशकर के, गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत था आर डी बर्मन का।

किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आपने डार्लिंग डार्लिंग इस फिल्म का गीत सुना, जिसके लिए गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत था आर डी बर्मन का।

किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज़ में अभी आपने ये वादा रहा इस फिल्म का गीत सुना। गीतकार थे गुलशन बावरा, संगीत था आर डी बर्मन का।

ये गीत था फिल्म प्रियतमा से, जिसके लिए आवाज़ थी किशोर कुमार की, गीतकार थे योगेश और संगीत था राजेश रोशन का।

ये गीत था फिल्म बातों बातों में, जिसके लिए आवाज़ थी आशा भोसले अमित कुमार की। और इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब समय है अंतराल का।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
4: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
5: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
3: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
4: आकाशवाणी है ना,
6: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
4: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
3: शाम सुहानी हो,
7: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
4: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
3: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
4: सफर में
3: आपके साथ
4: आकाशवाणी।

इसके साथ ही अंतराल का समय हुआ पूरा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is clearly our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
3: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
1: That Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
0: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
2: We had 26 delegates from
3: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो, इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देश भर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएँ तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
4: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिक

0: को मलबे की ढेर से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज SSKM अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना, NDRF, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। काल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
1: अरुणाचल प्रदेश के की पन्योर जिले के याजाली स्थित पोसा में मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होजपोटिन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। SDRF, NDRF और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
2: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
1: भारतीय नौसेना के जहाज उदयगिरि और कवरत्ति दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चिन मिन शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चिन मिन शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में INS कवरत्ति पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अम्बरीश सक्सेना।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर 94.66 पर बंद हुआ।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जोगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेस और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत,

बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Five people killed after under-construction godown crashes in Kolkata, rescue efforts in full swing. Heavy rain triggers flash floods in Arunachal, high alert issued in Assam. And in FIFA World Cup, Canada to take on Switzerland in a Group B match at Vancouver tonight. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने अमरीकी तिजारती नुमाइंदे सफीर जेमिसन ग्रेयर के साथ तिजारती मुजाकरात की पेशरफ्त का जायजा लिया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने सियोल में जनूबी कोरिया के अपने हमनसब शोहयून के साथ मीटिंग की और आलमी चैलेंजों के तनाजुर में भारत जनूबी कोरिया ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया। ओमान ने आबनाए हुरमुस के जरिए एक आर्जी बहरी राहदारी खोलने का ऐलान किया है। कोलकाता में एक जेर तामीर गोदाम के मुनहदिम होने के हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए हैं। इमदादी कार्रवाइयां तेजी के साथ जारी हैं। अरुणाचल प्रदेश में शदीद बारिश के सबब अचानक सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई। आसाम में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और फीफा वर्ल्ड कप में आज रात वैंकूवर में ग्रुप बी के मैच में कनाडा का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने अमरीकी तिजारती उमूर के नुमाइंदे सफीर जेमिसन ग्रेयर और उनके वफद के साथ आज सुबह सिलसिलेवार मीटिंगें की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि मीटिंगों में भारत और अमरीका के दरमियान जारी तिजारती मुजाकरात की पेशरफ्त का जायजा लिया गया और दोनों मुल्कों के दरमियान इक्तिसादी शराकतदारी को मजीद गहरा करने के मौके के इम्कान की तलाश की गई। उन्होंने सफीर ग्रेयर की क्यादत और बातचीत को एक तामीरी समत अदा देने की फाल कोशिशों की सताइश की। भारत और मुत्तहदा अरब अमारात ने नई दिल्ली में स्ट्रेटेजिक दिफाई शराकतदारी के फ्रेमवर्क के तहत दिफाई ताउन की तरक्की में पेशरफ्त की गरज से आज एक मीटिंग की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत दिफा ने मुत्तला किया कि मीटिंग की मुश्तरका सदारत बैनुल अक्वामी ताउन के ज्वाइंट सेक्रेटरी अमिताभ प्रसाद और मुत्तहदा अरब अमारात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। पोस्ट में मजीद कहा गया है कि तबादला ख्याल में दिफाई सनती शराकतदारी को वसत देने, इख्तरा को फरोग देने, जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करने और बहरी सलामती में इजाफा करने पर तवज्जो मरकूज की गई। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कहा कि मौजूदा आलमी चैलेंजों के दौर में भारत और जनूबी कोरिया के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना नहायत अहम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुश्तरका अकदार और बाहमी एतमाद रखने वाले मुल्कों को एक दूसरे के साथ ज्यादा करीबी ताउन करना चाहिए। सियोल में जनूबी कोरिया के वजीर खारजा शोहयून के साथ मीटिंग के आगाज में अपने खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि मौजूदा बैनुल अक्वामी हालात काबिल एतमाद शराकतदारों के दरमियान ताउन को पहले से ज्यादा अहम बना रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने आज शाम जनूबी कोरिया के कौमी सलामती के डायरेक्टर वी संगलेक से भी मुलाकात की। बाद में सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि दोनों फरीकों के दरमियान आलमी हालात और वाकयात और भारत बहरुल काहिल खित्ते से मुतालिक अहम स्ट्रेटेजिक उमूर पर मुफीद और नतीजा खेज बातचीत हुई। ओमान ने स्ट्रेटेजिक एतबार से अहम आबनाए हुरमुस के जरिए आर्जी बहरी राहदारी को खोले जाने का ऐलान किया है। ये इकदाम तिजारती बहरी नकलो हमल की बहाली और इस बहरी बहरान को कम करने की जानेब एक अहम कदम करार दिया गया है, जिसके बाइस खलीज में हजारों समुद्री कारकुन फंसे हुए थे। ओमानी हुकूमत के मुताबिक ये मनसूबा अक़्वाम मुत्तहदा की बैनुल अक़्वामी बहरी तंजीम आईएमओ के तावुन से तैयार किया गया है, ताकि इलाकाई तनाज़ात से पैदा होने वाली कई माह की रुकावटों के बाद आबी गुजरगाह से जहाज़ों की महफूज आमदरफ्त को यकीनी बनाया जा सके। बैनुल अक़्वामी बहरी तंजीम के मुताबिक खित्ते में 11,000 से ज्यादा बहरी कारकुन फंसे हुए हैं और जिन्हें मरहलावार तरीके से निकाला जाएगा और आमदरफ्त के मनसूबे के तहत मदद फराहम की जाएगी। تہران میں واقع بھارتی سفارتخانے نے ایران میں سیکیورٹی کی صورتحال میں بہتری کے مدنظر بھارتی شہریوں کے لیے سفر سے متعلق نظر ثانی شدہ ایڈوائزری جاری کی ہے۔ سفارتخانے نے حالیہ مثبت حالات و واقعات اور مجموعی صورتحال میں بہتری کے تناظر میں بھارتی شہریوں کو ایران کے سفر کے بارے میں سنجیدگی سے غور کرنے کا مشورہ دیا۔

0: किया है। मजीद तफसील हमारे नामानिकार से।
1: एडवाइजरी के मुताबिक भारतीय शहरियों को आइंदा इत्तला तक ईरान के गैर जरूरी सफर से गुरेज करने का मशवरा दिया गया है। सफारतखाने ने कहा है कि जो भारतीय शहरी इस वक्त ईरान में मुकीम हैं या नागुजेर वजूहात के बिना पर ईरान का सफर करना चाहते हैं वो इंतहाई एहतियात बरतें, सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखें और मकामी हालात से बाखबर रहें। सफारतखाने ने शहरियों को हिदायत दी है कि वो मोतबर जराए से वहां के हालात व वाकयात पर नजर रखें और मकामी हुकाम की जानिब से जारी करदा हिदायत पर अमल करें। ईरान में मौजूद तमाम भारतीय शहरियों और नए आने वालों को जल्द अज जल्द सफारतखाने में अपनी मालूमात दर्ज कराने का भी मशवरा दिया गया है। इसके अलावा

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
2: नमस्कार श्रोताओं, हर साल देश में कुछ ऐसी प्रतिभाओं और ऐसे प्रेरणादायी बच्चों को आप राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करते हुए देख पाते हैं, जिन्होंने देश में अपनी वीरता से, अपने समाज सेवा से और तमाम क्षेत्रों में अपने प्रेरणादायी कामों से देश को प्रेरित किया है। तो इस वर्ष भी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो आज हम कार्यक्रम में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के महत्व, इसकी नामांकन की प्रक्रिया पर हम विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे और बातचीत करेंगे, और साथ ही हम पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं और जो नामांकित होकर जिन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ था उन बच्चों से भी उनकी कहानियां सुनेंगे। तो आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूँगा कार्यक्रम में। हम सबसे पहले तो स्वागत करेंगे महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
3: सबसे पहले मुझे आपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी प्रेरणादायक पहल के बारे में बात करने के लिए यहाँ मेरा आना अत्यंत में मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।
2: जी, इस बार का जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है उसके नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा हमारे जो देश भर के सुनने वाले परिवार हैं, बच्चे हैं, उनको जानकारी दें और बताएं कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का मकसद क्या है, किस तरह से इस बार का ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो पूरी प्रक्रिया है ये इस बार भी विशेष है।
3: जी, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जिसको हम लोग शॉर्ट में PMRBP भी बोल सकते हैं, 5 से 8 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इस आयु के, उनके लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और यह पुरस्कार 6 श्रेणियों में दी जाती हैं। ये श्रेणियां हैं बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इन 6 श्रेणियों में जो बच्चे उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त करते हैं उनको हम लोग इस पुरस्कार के माध्यम से सम्मानित करते हैं। और यह पुरस्कार हमारे युवा नागरिकों के साहस, प्रतिभा और योगदान को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया है।
2: जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस बार की जो प्रक्रिया है नामांकन की वो किस तरह से, हमारे आप सुनने वालों को बताना चाहेंगे उसके बारे में, और क्या क्या योग्यताएं या क्या क्राइटेरिया है पूरा।
3: जो हमने आपको पूर्व में बताया कि 6 श्रेणियां आइडेंटिफाई की गई हैं, तो इसमें जो एक्सीलेंट अचीवमेंट्स होते हैं इन 6 फील्ड्स में से कोई भी फील्ड में अगर किसी बच्चे का एक अत्यंत ही मतलब उत्कृष्ट उन्होंने अगर कोई कार्य किया हो, काम किया हो, तो वो उसको दर्शाते हुए हमारी जो आवेदन की प्रक्रिया है उसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
2: जी, तो हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे ये 6 श्रेणियां रखी गई हैं, इन श्रेणियों को हमने देखा है कि जो अब इन श्रेणियों के होने से एक विविध तरह के प्रतिभाएं हमारे सामने पेश होती हैं हर साल। तो इन श्रेणियों को जिस तरह से अब 6 किया गया है और अलग अलग श्रेणियां हैं, तो उनके बारे में भी हमारे सुनने वालों को हम चाहेंगे कि आप विस्तार से बताएं कि कौन कौन सी श्रेणी है और किस तरह से इन श्रेणियों से अलग अलग प्रतिभाओं के जो बच्चे हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत हो पाते हैं।
3: देखिए, जैसे पहली जो श्रेणी है बहादुरी, बहादुरी का मतलब अंग्रेजी में ब्रेवरी शब्द यूज करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपनी जान की बाजी लगा के दूसरों को बचाते हैं। ऐसे हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं और पिछले वर्ष भी उत्तर प्रदेश से और अन्य राज्यों से भी कई ऐसे उदाहरण आए थे जिसमें 2 बच्चे तो पोस्टह्यूमस मतलब जिनका देहांत हो गया था और उनको मरणोपरांत ये मतलब अवार्ड दिया गया था, तो उन बच्चों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अन्य बच्चों को बचाया था। एक यूपी का बच्चा था जिसने जो है उसके पिताजी को एक मगरमच्छ ने पकड़ रखा था, वो एक पानी के स्रोत में अपने पिताजी को उन्होंने जो है बचाया था। ये तो मैंने बहादुरी की बात की। सामाजिक सेवा की बात करें तो पिछले वर्ष एक केस आया था जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान

0: एक हमारा बच्चा, वो हमारे जवानों को अपनी सेवाएं दे रहा था। तो सामाजिक सेवा का ये बहुत ही अत्यंत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसे ही एनवायरनमेंट के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में भी लोगों ने कई सारे ऐसे उत्कृष्ट कार्य किए हैं, और आज आपने जिन बच्चों को शामिल किया है वो भी इसके बारे में और आपको उदाहरण स्वरूप बताएंगे। खेल की अगर हम बात करें, स्पोर्ट्स की, तो वैभव सूर्यवंशी का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा,
1: जी जी
0: और वो नित्य नए नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। पिछले साल हम लोगों ने वैभव सूर्यवंशी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया था। पांचवी
1: जी
0: जो कैटेगरी है, कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति मतलब आर्ट एंड कल्चर। इसमें भी पूर्व के वर्षों में हम लोग कई बच्चों को सम्मानित कर चुके हैं, और इसमें किसी भी प्रकार की प्रतिभा हो सकती है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। इसी प्रकार जो लास्ट कैटेगरी होती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हमारे बच्चे बहुत आगे जाके काम कर रहे हैं, इवन AI से रिलेटेड, और इस
1: जी
0: प्रकार की भी एंट्रीज आ रही हैं। तो कुल मिला के इन 6 एंट्रीज में, 6 जो मतलब श्रेणियां रखी गई हैं, इसमें काफी बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ के बच्चे आ रहे हैं और उनकी हमारे पास नॉमिनेशंस आ रही हैं।
1: जी आपसे सर हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये भी एक बड़ा फोकस रहता है कि जो प्रतिभावान बच्चे हैं वो देश के कोने कोने से आएं, दूर दराज गांवों से आएं, और ऐसे वर्गों से आएं जो वंचित हैं, हाशिए पर हैं, दिव्यांग हैं। तो इस बार भी क्या इन्हीं बातों पर फोकस होगा नॉमिनेशन के वक्त, कि देश के अलग अलग कोनों से, दूर दराज के इलाकों से भी जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाए?
0: अवश्य। देखिए, हम लोगों का एक प्रयास ये भी रहता है कि हम भारत के हर कोने से, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट हो, सारे रीजन से हम लोगों का तो ये भी प्रयास रहता है कि यथासंभव मतलब हर जोन और हर राज्य से भी हम बच्चों को शामिल कर सकें। हम लोग हर साल 20 से 25 बच्चों को सम्मानित करते हैं। तो प्रयास यही रहता है कि एक तो भारत के हर एक कोने से बच्चे आए, दूसरा ये भी है कि जो बच्चे आर्थिक परिस्थितियों से, जिनके पेरेंट्स उतने वेल टू डू नहीं हैं, मतलब जो गरीबी से जूझ रहे हैं, जो कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, तो प्रयास ये रहता है कि हर प्रकार के, हर वर्ग के, और विशेषकर वैसे बच्चे जो कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं, उनके योगदान को हम लोग जो है उनको सराहा जाए और उनको ज्यादा से ज्यादा, बड़ी से बड़ी संख्या में सम्मानित किया जाए।
1: बिल्कुल। और हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारे परिवार वालों और बच्चों के मन में ये प्रश्न होगा कि जब बच्चे नॉमिनेशन के लिए खुद का आवेदन करेंगे, तो इसमें हम देख रहे थे कि दो प्रक्रिया है, कि एक थर्ड पार्टी नॉमिनेशन और सेल्फ नॉमिनेशन। तो इसके बारे में भी आप कुछ हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगे कि इन दोनों प्रक्रियाओं को रखने का मकसद क्या है, क्योंकि इसमें ये भी है कि बच्चा खुद से भी आवेदन कर सकता है, या किसी संस्था या परिवार या कहीं और से भी उसकी प्रतिभा का आवेदन किया जा सकता है।
0: जी, नॉमिनेशन के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि
1: जी
0: नॉमिनेशन ऑलरेडी 1 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है और 31 जुलाई तक नॉमिनेशंस होंगे। और इसके लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in,
1: जी
0: इसके माध्यम से आवेदन किया जा सकता है, और यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। जो आपने मूल प्रश्न पूछा था कि कैसे नामांकन किया जा सकता है, कैसे नॉमिनेशंस किए जा सकते हैं, तो बच्चा स्वयं भी अपना नामांकन कर सकता है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसे होती है कि बच्चे को उतनी जानकारी नहीं होती, तो कोई संस्था भी उनके बिहाफ पे, उनके पेरेंट्स या कोई भी रिश्तेदार या कोई भी संस्था उनके बिहाफ पे भी नॉमिनेशंस कर सकती हैं।
1: जी जो ये प्रतिभावान बच्चे हैं, इनकी निश्चित रूप से अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिभाओं को हम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जरिए समझ पाते हैं। तो मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि आवेदन के बाद की प्रक्रिया क्या रहती है, जब उनका चयन हो जाता है इस पुरस्कार के लिए, उसके बाद की प्रक्रिया के बारे में भी आप अगर हमारे सुनने वालों को बता सकें।
0: देखिए, जब बच्चे का चयन हो जाता है तो एक बात ये रहती है कि थोड़ी सी गोपनीयता का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम
1: बिल्कुल
0: किसी बच्चे को जिस दिन पुरस्कार देने का दिवस होता है उससे पहले ही उनके नाम सार्वजनिक ना हो जाएं, तो थोड़ा सा हमको ये ध्यान रखना होता है। तो जिन बच्चों का चयन होता है, 2 से 3 दिन या 4 दिन पूर्व हम संबंधित जिले के कलेक्टर साहब को बताते हैं, और वहाँ के जो कंसर्न कलेक्टर साहब होते हैं वो फिर उस बच्चे से, उस बच्चे के परिवार से संपर्क करते हैं, और उन बच्चों को, वो जहाँ भी हो, देश के जिस भी कोने में हो, उनको हम बकायदा हवाई जहाज के माध्यम से, या आसपास के बच्चे हों
1: जी
0: तो मतलब बाय रोड भी वो आ सकते हैं।

0: तो उनके आने, उनके लाने, ले जाने, ठहराने वो सारी व्यवस्थाएं करते हैं, और उनके साथ उनके पेरेंट्स या परिवार का कोई एक सदस्य भी आ सकता है, तो उनको बकायदा हम जहां भी पुरस्कार दिया जाता है, मोस्टली दिल्ली में ही होता है, तो हम उनके लिए पूरी व्यवस्था करते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो उनका चयन होने के पश्चात उनको इन्फॉर्म करने, उनको कम्युनिकेट करने के साथ साथ उनको उस स्थान से दिल्ली लाने और दिल्ली से वापस छोड़ने और यहाँ पे ठहरने, और कार्यक्रम जहां भी हो, चाहे राष्ट्रपति भवन में हो या विज्ञान भवन में हो या अन्य किसी स्थल पे हो, हम पूरी व्यवस्था करते हैं ताकि उनको किसी प्रकार से कोई कठिनाई ना हो और वो उस पुरस्कार को ग्रहण कर सके।
1: बिल्कुल सर, क्योंकि इस राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में हम सभी जानते हैं कि बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक, स्कूलों, संस्थाओं की भी बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि वो अपने आसपास असाधारण बच्चों को तलाश सकते हैं। तो अंत में हम आपसे उन स्कूलों, अध्यापकों और जो शिक्षक हैं या परिवार हैं, अभिभावक हैं या पूरा समाज है, उसके लिए आप कुछ अपील करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे कि वो अपने आसपास किस तरह से बच्चों को तलाश सकते हैं और उसके लिए नामांकन कर सकते हैं 31 जुलाई से पहले पहले, जैसे कि ऐसे बच्चे जो असाधारण हैं, जिन 6 श्रेणियों की हमने बात की, उन 6 श्रेणियों में अगर किसी भी तरह की उनमें ऐसी असाधारण प्रतिभा दिखाई देती है जो इस पुरस्कार के लिए बहुत ज़रूरी है या इस पुरस्कार के लिए खरी उतरती है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे और कुछ आप बताना चाहेंगे अंत में?
0: देखिए, इस पुरस्कार के बारे में इसका पर्याप्त प्रचार प्रसार हो, इसके लिए हम लोग न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट्स देते हैं। इसके अलावा रेलवेज पे भी हमारी एक पट्टी चलती है ताकि उसका प्रचार प्रसार हो सके। इस बार भारतवर्ष के समस्त कलेक्टर्स को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को मैंने स्वयं डीओ लेटर लिखा है और उनसे निवेदन किया है कि जो भी बच्चे उनके जिले में हों, आसपास में हों, उनके बारे में नॉमिनेशंस भेजें। इसी के साथ साथ हमने ऑनरेबल गवर्नर्स, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, इसके अलावा माननीय जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इसके अलावा जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी जो महिला एवं बाल विकास की संस्थाएं हैं, जैसे आंगनवाड़ी हैं और अन्य संस्थाएं हैं, सारे स्कूल्स में, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से सारे स्कूल्स में, और अन्य सारे विभाग, जो भी महत्वपूर्ण विभाग हैं जहां से हमें एंट्रीज प्राप्त हो सकती हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय संगठन हो, नवोदय विद्यालय संगठन हो, समिति हो, तो हमने इस बार प्रयास ये किया है कि हमारी इस योजना या इस पुरस्कार के बारे में पूरे भारतवर्ष में इसका प्रचार प्रसार हो ताकि ज्यादा से ज्यादा एंट्रीज आ सकें। तो मैं समस्त भारतवर्ष के समस्त नागरिकों से और बच्चों के अभिभावकों से, उनके जो टीचर्स हैं स्कूल के, उन सबसे यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आपको कोई भी बच्चा ऐसा अगर आपके ध्यान में आता है, आपके संपर्क में आता है, जिसमें प्रतिभा है, और मैं कहना चाहूंगा यहाँ कि भारतवर्ष में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि उस प्रतिभा को तराशने की जरूरत है, तो हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि आपको कोई भी ऐसा बच्चा जो उत्कृष्ट कार्य करता हुआ दिखे, मिले या आपके संपर्क में आए, उनके जो नॉमिनेशंस हैं आप जरूर उनके नॉमिनेशंस करें ताकि बड़ी से बड़ी संख्या में हमारे पास नॉमिनेशंस आएं ताकि हम इन बच्चों को पुरस्कृत कर सकें।
1: बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर, आपके जो भी बातें हैं निश्चित रूप से हमारे देश भर के विभिन्न श्रोताओं तक पहुंची होंगी, और इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे ऐसे परिवार या बच्चे ज़रूर आगे आएंगे जो नामांकन करना चाहते हैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की इस संस्करण के लिए। आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे आगे भी, आगे आने वाले अवसरों पर ज़रूर बातचीत करना चाहेंगे और जानकारी लेना चाहेंगे विभिन्न गतिविधियों पर महिला और बाल विकास मंत्रालय की। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: थैंक यू सो मच।
1: जी। अब हम कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में उन प्रेरणादायी कहानियों को सुनते हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को दिखाया है, देश के लिए बहुत बड़ा अमूल्य योगदान दिया है, समाज को अपनी कारनामों से प्रेरित किया है। हमारे साथ सबसे पहले जुड़ी है शिवानी हसुरू, जो एक 17 वर्षीय एक पैरा एथलीट है, और दिव्यांग होना उनके लिए कोई बाधा नहीं है। जैवलिन, शॉटफुट थ्रो, इन सभी में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने मेडल्स जीते हैं। तो शिवानी, बताएं अपनी कहानी हमारे सुनने वालों को, आप कहाँ से आती हैं और किस तरह से आपने अपनी छोटी सी आयु में पैरा एथलीट होने का इतना बड़ा गौरव हासिल किया है।
2: मेरा नाम शिवानी है, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ
1: जी
2: और मैं पैरा एथलीट हूँ, शॉटपुट जैवलिन करती हूँ। तो मेरे को पहले बचपन से ही मेरा हाथ नहीं है, तो
1: जी
2: पहले बचपन में

0: फील होती थी लाइक मेरे को हाथ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी ऐसा। अभी मैं नवोदय स्कूल में पढ़ती थी, 6 से लेकर 12 तक। बचपन में बहुत को बहुत लोग बहुत कुछ बोला है कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तेरे को हाथ नहीं है वैसा। तो मम्मी पापा ने एक ही बात बोला है कि हम तो बड़े करेंगे, तुम कुछ भी मत बोलो, हम है इसके साथ, ऐसा बोल के मेरे को साथ दिया है। ऐसे मेरे को बचपन से हॉस्टल में भेजा है कि मेरे को लाइक आदत पढ़ने के लिए, विदाउट हैंड करने के लिए जो भी। फिर मैं नवोदय स्कूल में गई हूँ 6 से लेकर 12 तक।
1: जी
0: फिर
1: जी
0: एक हैदराबाद में आदित्य मेहता फाउंडेशन है, जिसमें ओनली सारा एथलीट्स को सपोर्ट करते हैं। उसमें मेरा डिफरेंट डिफरेंट गेम्स में मेरा बेस्ट लिया था, तो मेरा शॉट पुट जावलिन में अच्छा था। तो मेरे को ट्रेनिंग देते हैं, साथ में कंपटीशन भी देते हैं। वैसे मैं शॉट पुट जावलिन में स्टेट नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक गई हूँ, इंडिया के लिए 4 गोल्ड मेडल लाई हूँ। और ऐसे मेरे पास अभी अभी तक 19 मेडल्स है, उसमें से 16 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज है। और मैं ये बहुत कुछ करना चाहती हूँ, ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना
1: बिल्कुल
0: चाहती हूँ आगे से।
1: बिल्कुल, हमारी बहुत शुभकामनाएं शिवानी आपके साथ। जिस तरह से आपने अपनी छोटी सी उम्र में पैरा एथलीट होने का एक बड़ा अवसर हासिल किया और साथ में आपने बहुत सारे मेडल्स जीते हैं, तो ये मेडल्स की झड़ी आपके लिए लगातार बनी रहे। और आपसे बस ये भी मैं जानना चाहूँगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका एक्सपीरियंस कैसा था, क्या कैसा मन में उत्साह था, इसके बारे में भी हमारे सुनने वालों को बताएं।
0: कभी भी मैं टीवी में देखती थी नरेंद्र मोदी जी को और मैम को, द्रौपदी मुर्मू मैम को, मैं सोचती थी इतना बड़े लोगों से मैं कब मिलूंगी, ऐसा सोचती थी। फिर सोचा भी है कि मैं कभी नहीं मिल पाऊंगी, ऐसा ही सोची थी। पर मैं लाइक बहुत खुश हूँ ये अवार्ड मिला है। उधर जाके सर से, पीएम नरेंद्र मोदी जी से बात करना, उनसे इंटरेक्ट करना, ये सब कुछ मेरे को सपना जैसा लगा, पर वो सच था, बहुत अच्छा लगा।
1: जी बहुत धन्यवाद शिवानी, बहुत शुभकामनाएं आगे के आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। अब हम जुड़ रहे हैं एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व से, और हम सभी जानते हैं कि ये सभी बच्चे हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आयशी प्रिशा बोरा, इन्होंने छोटी सी 14 साल की उम्र में एक यंग इनोवेटर होने का गौरव हासिल किया। साइंस और इनोवेशन की कैटेगरी में इन्हें ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान मिला, और इन्होंने खास तौर पर सस्टेनेबल फार्मिंग और वेस्ट रिसाइकलिंग के नए नए तरीके खोजे हैं। तो चलिए इनसे ही जानते हैं कि कैसे ये एक यंग इनोवेटर होते हुए सस्टेनेबल फार्मिंग और जो रिसाइकलिंग है और जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको लेकर काम कर रही हैं। बहुत स्वागत है आयशी आपका।
2: नमस्कार सर, थैंक यू सर।
1: जी तो बताएं अपने बारे में, आपको सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी प्रोफाइल से ही लग रहा है कि इन्वायरमेंट से बहुत प्यार है और हम सभी को होना भी चाहिए, तो बताएं कि किस तरह से आपके मन में इस तरह की बातें आती हैं। जैसा कि हम आपने सुनने वालों को बता भी रहे थे कि जो सस्टेनेबल खेती है या जो वेस्ट रिसाइकलिंग है, ऐसे इस इन सब चीज़ों पर काम करने को लेकर कैसे प्रेरणा आती है।
2: मेरा मेन मोटिव यही होता है कि मैं जितना हो सके उतना अपनी मदर अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकूं। सस्टेनेबिलिटी मेरे हिसाब से एक जरूरत बन चुकी है आज के समय में, so that's why I work on these stuff and yeah, I want to work further on it, making more sustainable products and whatever I can do.
1: जी तो बहुत इंटरेस्टिंग आपके इनोवेशन है आयशी। ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगे कोई ऐसा आपका कोई सपना है कि अपना स्टार्टअप हो, आगे आपकी कोई कंपनी हो, आपके प्रोडक्ट्स राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के जो वेस्ट मटेरियल के प्रोडक्ट्स हैं वो बिकें, तो कुछ ऐसा सोचा है आपने?
2: Right now, I will be completely honest. I don't know about startups and all, but as of today, what I'm trying to focus on is to come up with the most sustainable solution to all these societal problems. And if future I get the chance to implement them in real life, definitely I'm very eager to do that. But right now, I am just focusing on building the solutions. And as of now, I am trying to focus on my studies also as I am a 10th grader this year.
1: साथ में आपसे भी वही सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव कैसा था, एक्सपीरियंस कैसा था, क्या आपके मन में एक्साइटमेंट था, उसके बारे में भी आप बताएं।
2: It was something that I never dreamed of. And even today, आज भी मैं शब्द नहीं ढूंढ पा रही हूँ मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ। बहुत अच्छा लगा, लाइक it's something

0: the little Aishi inside me was very happy and excited for. And I don't know how to explain it, to be honest.
1: थैंक यू सो मच आयशी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अपने एक्सपीरियंस, अपने इनोवेशंस के बारे में हमारे सुनने वालों को बहुत डिटेल में बताया। थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सर।
1: अब हमारे साथ एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व हैं, एक और हमारे साथ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेता पिछले साल के जुड़ रहे हैं, वंश तयाल। वंश तयाल ने अपने जीवन में किसी भी तरह के मिसिंग को, किसी भी तरह के लॉस को लॉस नहीं समझा
0: बिल्कुल
1: और आज वो एक बहुत बड़े यूथ लीडर हैं और एक केयर गिवर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्हें सराहना मिली है, तो वंश को हम जोड़ना चाहेंगे। वंश, अपने बारे में बताएं थोड़ा सा। हम सभी जानते हैं कि आपका परिवार नहीं है, माता पिता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपने अपने जीवन में किसी भी तरह की रुकावट को महसूस नहीं किया और आज आपने इस लॉस को उबारते हुए एक बहुत बड़े यूथ लीडर के तौर पर उभर कर सामने आने का खुद को मौका दिया। बताएं अपने बारे में कुछ।
0: तो ये मौका मिले बहुत एक कठिन समय रहा, जब तक मेरे माता पिता नहीं थे, लेकिन बहुत रिश्तेदारों का सपोर्ट नहीं था, बहुत कठिन समय रहा मेरे लिए, बहुत ही आगे मूव ऑन कैसे करना है, कैसे खड़ा होना अपने पैरों पे, बहुत मुश्किल था लाइफ में, है ना, कि अब तो हिम्मत हार गई थी कि क्या ही करेंगे, कहाँ जाएंगे, अकेला हूँ, क्या करूंगा, ऐसे रह जाऊंगा। बहुत मुश्किल, रिश्तेदारों ने भी सपोर्ट नहीं किया बिल्कुल भी, कुछ नहीं बना। फिर थोड़ा होप हुई एक, फिर होम में आया मैं, चिल्ड्रन होम में आया चंडीगढ़ में, फिर देखा वहां पर एनवायरमेंट, देखा लगा ना, कुछ 4-5 महीने लगे, हुआ थोड़ा सा बैकअप आया, धीरे धीरे सपोर्ट आया, वहाँ के स्टाफ ने काफी सपोर्ट किया मुझे इस बात के लिए। उसके बाद फिर एक छोटा सा बच्चा आया, मतलब बहुत छोटा बच्चा था, स्पेशल बच्चा, लाइक सेरेब्रल पाल्सी थी उसको, मतलब वो चल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था, तो उससे काफी इंस्पायर हुआ, काफी मोटिवेट हुआ उस बच्चे से मैं, कि हाँ चलो बहुत छोटा है, और उसको बच्चे को उनके माँ बाप ने छोड़ दिया, उसको भी हाँ उसकी हालत ऐसी है, तो मतलब फिर भी मैं रिलायबल हूँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, कि कुछ भी कर सकता हूँ। तो आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम कि हाँ ही कैन डू, वाले ही कैन सर्वाइव, तो मैं तो क्या ही हूँ, मैं तो फिर भी अपने काफी बड़ा हूँ, 12-13 साल का था उस टाइम, तो काफी अच्छा मौका था मेरे लिए, मैंने काफी इंस्पायर होके मैंने सोचा कि इसको वॉलंटियर सर्विस दूंगा, और काफी जिस होम में मैं रहता था तो काफी स्पेशल बच्चे भी रहते थे वहाँ पे, तो उन सबकी हेल्प करना, हेल्प आउट करके, मतलब उन सबकी मदद करके, और उस बच्चे को मैंने काफी ना एक हील्स टूडे की, वो चल भी सकता है, खा भी सकता है, बोल भी पा रहा है आराम से, तो काफी था ये समय। फिर धीरे धीरे नॉमिनेशन का पता लगा कि हाँ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का भी नॉमिनेशन हो जाता है सोशल वर्क में, तो मेरे सुपरिटेंडेंट सर थे मिस्टर ललित अरोड़ा, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया, काउंसलर मिस्टर प्रदीप ठाकुर थे, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया कि हाँ करो करो, तो फिर उन्होंने दोनों ने इकट्ठे मिलकर फॉर्म वगैरह भरा मेरा।
1: बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपने इतनी छोटी सी उम्र में अपने जीवन के अनुभव से जो समाज सेवा का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, ये बहुत सच में सराहनीय बात है। हम आपसे और जानना चाहेंगे कि फ्यूचर में जिस तरह से हम भी जानते हैं कि देश भर में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके परिवार नहीं है, उनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं, क्या आपने सोचा है फ्यूचर में कि आप कैसे अपने इस समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाना चाहेंगे?
0: जैसे कि मेरा एक स्कोप है इन फ्यूचर में कि मैं एक अच्छा पढ़ाई करके साइकोलॉजिस्ट बनूं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और जितनी करीबी से मैंने मुसीबतों को देखा है वो मैं चाहता हूँ कि वो लोग ना देख पाए, कि वो युवा पीढ़ी ना देख पाए, जो बच्चे हैं वो ना देख पाए, उनका साथ में अपनी सोशल सर्विस कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, और सबकी हेल्प आउट करना चाहता हूँ, कि जितनी मेरे से हो सके, मतलब सेल्फ होके वो मैं हेल्प करना चाहूंगा उनकी।
1: बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं वंश आपके लिए हमारी कि आप इस तरह से अपने समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जुड़ते हैं सुमन सरकार से। सुमन सरकार एक तबला वादक हैं, छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत सारे मंचों पर अपने तबला वादन का परफॉर्मेंस दिया है और साथ में इनका एक और काम है कि ये जो ऐसे बच्चे जो म्यूज़िक के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ट्रेनिंग, उनको फ्री ट्रेनिंग की भी इन्होंने कोशिश की है, तो ऐसे भी समाज सेवा का ये काम कर रही हैं। बहुत स्वागत है सुमन आपका।
2: सर आपको बहुत धन्यवाद।
1: तो सुमन, बताएं कि कैसे आपके मन में म्यूजिक को लेकर ये इंटरेस्ट आया था, क्योंकि आपको कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आप अपनी प्रतिभा के बारे में हमारे सुनने वालों को बताएं।
2: तो सर देखिए, मेरा जर्नी जो शुरू हुआ था 3 साल की उम्र में ही शुरू हो गया था, जब मैं एकदम छोटा था, तो तभी मैं ये तबला को, मतलब आसपास के जब कुछ चीजों को बजाने की कोशिश करता था, मेरे फादर का जो बहुत सपना था वो थोड़े शास्त्रीय संगीत का चर्चा करेंगे, मेरे परदादा जो थे वो श्रीखोल बजाते थे, तो मेरे फादर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए ये सपना पूरा नहीं हो पाया, तो उसी हिसाब से उन्होंने मेरे अंदर ये सपना देखना शुरू किया। तो
1: जी
2: जब मैं 3 साल का उम्र का था,

0: तभी मेरे पापा ने ये नोटिस किया कि बच्चे के अंदर ताल का कुछ ज्ञान है, तो मेरे फादर ने शिक्षा चालू कर दिया था मेरे गांव में। मेरे प्रथम गुरु का नाम है श्री पोबेड कुमार सरकार, उनसे मैं सीखना चालू किया। तो वहां से जानने शुरू हुआ, तो फिर चलते चलते जब मेरा उम्र 7 साल का हुआ तो मेरा फर्स्ट चेस प्रोग्राम था, कंपटीशन था, तो मैं बहुत डरता था तब स्टेज पे सबके सामने बजाने के टाइम। तो मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया, गुरु का आशीर्वाद तो रहता ही है।
1: बिल्कुल
0: तो इसी हिसाब से लाइफ में फर्स्ट जब कंपटीशन दिया तो उसमें मैं फर्स्ट हुआ। मेरा उम्र तब 7 साल का था, मैं तब फर्स्ट हुआ। तो जो जजमेंट में था उन्होंने बोला कि मेरे फादर को उन्होंने एडवाइस दिया कि बच्चे को और ऊपर ले जाओ और अच्छे गुरु के पास ले जाओ। तभी से मैं कोलकाता के गुरु से सीखने लगा, श्री उज्जवल भारती से। तभी से मेरा जर्नी, ये जो शास्त्रीय संगीत का जर्नी है, तभी शुरू हुआ। धीरे धीरे ये बढ़ता रहा, मैंने रियाज करता, हमारा तो पूरा ही रियाज पे चलता है ये शास्त्रीय संगीत। मैं पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये शास्त्रीय संगीत का जो प्यार मेरे अंदर बढ़ता रहा
1: जी। और ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे, जो आपकी कोशिश है कि आप फ्री ट्रेनिंग दें जो संगीत सीखने वाले बच्चे हैं उनको, उसके बारे में भी बताएं किस तरह का ये आप काम कर रहे हैं।
0: आज के जो जनरेशन है वो सिर्फ एडुकेशन पे भागता है, तो मेरा एक ही कहना है कि एडुकेशन के साथ साथ ये जो शास्त्रीय संगीत व हमारा कला संस्कृति जो है, इसमें भी बहुत बड़े बड़े सम्मान पा सकते हैं। यही मेरा वार्ता रहेगा समाज के अंदर, जो पद्मश्री पद्मभूषण बड़े बड़े जो सम्मान है वो शास्त्रीय संगीत में भी मिल सकते हैं।
1: बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत बधाई भी कि पिछले साल आपने जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये सम्मान हासिल किया। थैंक यू सो मच सुमन।
0: थैंक यू सर।
1: अब हम जुड़ रहे हैं अर्णव अनुप्रिया महर्षि से। इनका जो एक AI पावर्ड रिहैबिलिटेशन सॉल्यूशन है दिव्यांग लोगों के लिए, वो बहुत चर्चा में है, उसने इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्निशन हासिल की है। तो आइए उनके इस सॉल्यूशन के बारे में उनसे जानते हैं, और साथ में जो पिछले साल राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो सम्मान मिला है उसके बारे में भी उससे हम बातचीत करते हैं। अर्णव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे श्रोताओं को सबसे पहले अपनी इनोवेशन के बारे में बताएं कि किस तरह से आपने AI के जरिए एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की।
2: मेरा जो AI सॉल्यूशन है उसका नाम फेयर चांस है, जिसका फुल फॉर्म है फाइन मोटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड रिहैबिलिटेशन चांस। ये उन दिव्यांग लोगों के लिए बना है जिनके उंगलियों की जो ताकत रहती है वो बहुत कमजोर रहती है, उसके रिहैबिलिटेशन के लिए बना है, जैसे पैरालिसिस पेशेंट्स, सेरिब्रल पॉल्सी पेशेंट्स। ये जो AI इनोवेशन है, ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कोई भी साधारण लैपटॉप या स्मार्टफोन पे चल जाता है, और इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको एक लाइव असेसमेंट मिलता है, एक लाइव आउटपुट मिलता है कि आप कितना अच्छा आपके उंगलियों के मूवमेंट्स कर रहे हो।
1: आपसे आखिर में मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान है उसको हासिल करके आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या मन में था, उसके बारे में भी अपना एक्सपीरियंस बताएं।
2: यही पुरस्कार के माध्यम से मेरे जो ये काम है इसको एक क्रेडिबिलिटी मिली है कि सचमुच का ये असली, मतलब सचमुच का काम कर रहा हूँ जो एक्चुअली दूसरे दिव्यांग लोग और दूसरे पेशेंट्स के काम में आ सकता है।
1: जी, आपके लिए बधाइयां भी इस पुरस्कार के लिए। धन्यवाद आप जुड़े हमारे साथ इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, जिस तरह से इस पूरे कार्यक्रम में हमने महिला और बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजित कुमार जी से चर्चा की राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में, हमारे श्रोताओं को बहुत सी जानकारियां नामांकन से लेकर इस पुरस्कार के मकसद के बारे में जरूर हासिल हुई होंगी। और साथ में कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में हमने पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित कुछ प्रेरणादायी बच्चों से बात की, तो उनके अलग अलग कहानियों को सुनकर भी बहुत सारे सुनने वाले जो बच्चे हैं, परिवार हैं, वो प्रेरित हुए होंगे कि जो 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक इस साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, अगर किसी श्रेणी में उन्होंने कोई ऐसा कारनामा किया है, कोई छुपी हुई प्रतिभा है, तो जरूर वो सामने आएंगे और नामांकन करेंगे। आप सभी का कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: चर्चा का विषय है।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए नाटक हतक, जिसके लेखक हैं सादत हसन मंटो, प्रस्तुत करता है राकेश ढोंडियाल।
1: प्रस्तुत है सादत हसन मंटो का लिखा नाटक हतक, प्रस्तुत करता है राकेश ढोंडियाल।

0: कार वाला सुन।
1: आया, क्या लाऊं सुगंधी?
0: दो चाय ला, एक में पानी कम और एक में पानी ज्यादती। और देख, दो पान, एक पूना सादा और एक देसी काला।
1: बस,
0: अरे बस बस, जल्दी ला।
1: लाया।
2: क्या नाम है तेरा?
0: सुगंधी।
2: सुगंधी, तेरी इस खोली में तो बुरी बुरी बास आती है। छी छी छी, कैसे रहती है तू यहाँ पर?
0: अरे तो ले दो ना सेठ, कोई अच्छा सा फ्लैट।
2: फ्लैट पर तेरा धंधा तो यही रहेगा, इसकी बुरी बास तो आती ही रहेगी। सुगंधी, अच्छा नाम है, खुद भी बहुत अच्छी है, पर तू ये क्या धंधा कर रही है? अच्छा, क्या भाड़ा है इस खोली का?
0: 18 रुपए और मेरा भाड़ा है 10 रुपए, जिसमें से 2.5 दलाली के ले जाता है।
2: शर नहीं आती तुझे अपना भाव बताते? मालूम है तू मेरे साथ किस चीज का सौदा कर रही है और मैं तेरे पास क्यों आया हूँ? छी छी छी, तेरा भाड़ा 10 रुपए और जैसा तू कहती है 2.5 रुपए दलाली के, बाकी रहे 7.5। रहे ना 7.5?
0: हाँ 7.5।
2: 7.5 रुपए में तू मुझे ऐसी चीज देने का वादा कर रही है जो तू मुझे दे ही नहीं सकती, और मैं ऐसी चीज तुझसे लेने आया हूँ जो मैं ले ही नहीं सकता।
0: तो फिर तू यहाँ आया किस लिए है सेठ?
2: आया किस लिए हूँ? दरअसल बात यह है कि तूने आज तक सोचा ही नहीं, मुझे तो कोई भी औरत चल जाएगी, पर सोचने की बात यह है कि क्या मैं तुझे जचता हूँ? सुगंधी, तू बहुत भोली है, पगली, तेरा मेरा नाता ही क्या है? बस ये 10 रुपए जिनमें से 2.5 दलाल ले जाएगा और बाकी इधर उधर बिखर जाएंगे, ये 10 रुपए तेरे और मेरे बीच बज रहे हैं। तेरा मन कुछ और सोचता है और मेरा मन कुछ और।
0: हाँ, ये तो तूने खरी बात कही है।
2: तो क्यों ना कोई ऐसी बात करें कि तुझे मेरी जरूरत हो और मुझे तेरी। पगली, दुनिया में रुपया ही सब कुछ नहीं है, प्रेम के दो सच्चे बोल अगर तुझसे कोई बोल जाए तो देख क्या होता है। अच्छा, क्या भाड़ा है इस खोली का?
0: क्या कहा?
2: मैं कहता हूं ये धंधा छोड़, ऊना में हवलदार हूं, परमेश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, महीने में एक बार आया करूंगा 3-4 दिन के लिए। ये तेरी नाक को क्या हो गया है? इतनी लाल क्यों है?
0: लाल है क्या?
2: ओहो, मतलब तुझे पता ही नहीं। सच्ची तो है, तुझे बताने वाला कौन है? तेरी माँ होती, तेरा बाप होता, तेरा, अरे कहीं जुकाम ना हो जाए तुझे। ठहर, मैं तेरे लिए दवा लाता हूँ। कोई डॉक्टर है आजू बाजू?
0: अरे छोड़ो, चिंता ना करो माधो, ये तो कुछ भी नहीं, अपने आप ही ठीक हो जाऊंगी।
2: क्या कहा, अपने आप? अरे ये नंगी तस्वीरें तूने अपने सिरहाने क्यों लटका रखी है? छी छी छी, देख मेरे होते हुए ये सब यहां पर नहीं रहेगा, मैं तुझे और तस्वीरें ला दूंगा। और ये घड़ा कितना मैला है, कब का पानी भरा है इसमें? और ये चीथड़े, ये चिंदियां, कितनी बुरी बास आती है इनमें। अरे उठाकर बाहर फेंक इनको, तेरा जी नहीं घबराता?
0: अरे रहने भी दो ना।
2: क्या रहने दूं, साला हर जगह कचरा पड़ा है, तुझे किन नहीं आती? क्या भाड़ा है इस खोली का?
0: 18 रुपए।
2: पूना पहुंचते ही मनी ऑर्डर कर दूंगा। अच्छा, कोई नौकर वोकर है तेरे पास? कंघी भी टूटी हुई है, तभी तो तेरे बालों का सत्यानाश हो रहा है रे। कितना दुख होता है मुझे, यही घर जिसका तू क्या भाड़ा देती है तू इस घर का? पता है ये घर जिसमें हर जगह कचरा पड़ा है ना, बड़ा सुंदर हो सकता है। अरे हो क्या सकता है, अब होगा, तू देखती रहे क्या होता है। पुणे में हवलदार हूं, महीने में एक बार आया करूंगा 3-4 दिन के लिए। अब ये धंधा छोड़ और इज्जत आबरू के साथ रहे। और ये साला कुत्ता,

0: चुप रह मोती, दिखता नहीं अपना आदमी है।
1: फांसी दे दे साले को। खुजला खुजला कर साले ने एक बाल नहीं रखा है अंग पर। बीमार है और तुझे भी बीमार करेगा।
0: अरे पड़े रहने दो यहीं, अच्छा हो जाएगा सेठ।
1: अच्छा क्या होगा, खैर तू कहती है तो रह साला यहीं पर, और भी कही है तेरी रोटियां तोड़ने वाले। सच तो यह है कि तेरा दिल बड़ा ही अच्छा है। तू किसी जानवर को भी दुख नहीं दे सकती, पर मुझे बड़ा दुख होता है ये सोचकर कि आज तलक किसी ने भी तेरे इस गुण को पहचाना नहीं। सुगंधी, अब सुगंधी क्या भाड़ा है इस खोली का?
0: 18 रुपए है सेठ।
1: पूना पहुंचते ही मनी ऑर्डर कर दूंगा मेरी जान।
0: माधो
1: तो अब मैं जाता हूं, फिर आऊंगा मेरी जान।

0: ऐसा लगता है मैं इस हवलदार को वर्षों से जानती हूँ। आज तक किसी ने मुझे नहीं बताया था कि मेरा भी एक घर है जो स्वर्ग बन सकता है। स्वर्ग? सुगंधि, क्या कभी तुझसे किसी ने ये कहा था? देख तो, आज तेरी नाक कितनी लाल हो रही है। ठहर, मैं तेरे वास्ते दवा लाता हूँ। माधो, माधो जरूर मुझसे प्रेम करता है। प्रेम?
1: प्रेम? हाँ, साला यहाँ पे जो कोई आता है ना, वो यही कहता है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। सब जानती हूँ प्रेम क्या बला है।
0: अरे बाबा, हमारे बाप का क्या जाता है, बोलने दो झूठ उनको। हम कब उनसे सच बोलती हैं कांता? अरे ये धंधा ही साला ऐसा है, उनको भी झूठ बोलना पड़ता है, हमें भी झूठ बोलना पड़ता है। पर कांता, हमें झूठे जीवन में अगर कोई सच्चा बोल सुनाई दे तो कितना आनंद आता है ना।
1: अरे पर सच्चा बोल भी तो सच्चा बोल नहीं है
0: ना। हो, पर थोड़ी देर के लिए तो आनंद आ ही जाता है भाई। कागज के फूल में भी अगर पास होना तो मैं उसे उठाकर अपने जूड़े में लगा लूं। जिन्हें सच्चे गहने पहनने को नहीं मिलते, वे झोल चढ़े झूठे गहनों से ही अपना मन परचा लेती हैं। कांता, अगर इस दुनिया में झूठी और सच्ची चीजों के साथ ऐसी चीजें न होती जो थोड़ी देर के लिए सच्ची मालूम होती हैं, तो ये जीवन बहुत ही कठिन हो जाता।
1: हे, ये तो आज कैसी बातें करे लिया?
0: कोई छेड़ गया है मेरे हृदय के तार, रोम रोम में नींद सी रच गई है। आ, मेरी गोद में आ जा, तुझे लोरी देकर सुलाऊं।
1: तेरा दिमाग तो नहीं फिरेला है? हाँ?
0: आ कांता, मेरी गोद में आ जा, मैं तेरे कान हौले हौले थपथपाऊंगी, धीरे धीरे लोरी दूंगी, तू भी सो जाएगी और मैं भी।

0: तुमने सिर दर्द के मारे फटा जा रहा है।
1: बाम लगाओ बाम। मेरे सिर में जब ज्यादा पीने से दर्द हुआ करता है तो मेरी बीवी मुझे बाम ही लगाया करती है। सारे माथे पर ये तेज बास वाली बाम चुपड़ दिया करती है और मैं सो जाया करता हूँ। मेरी बीवी बड़ी अच्छी है सुगंधी, बड़ी अच्छी है मेरी बीवी। ये साला कुत्ता क्या कर रहा है तेरे पलंग के नीचे?
0: चुप कर बे, मेरे सिर में वैसे ही बहुत दर्द हो रहा है।
1: मैं म्युनिसिपैलिटी का दरो

0: ऐसे कुत्ते को गोली मार देना चाहिए। मेरे पास धुनाली बंदूक है, किसी दिन साले को ढेर कर दूंगा। अच्छा अब मैं जाता हूँ, मेरी बीवी मेरी राह देख रही होगी सुबंदी। अबे चुप, बाम लगा बाम, और बाम लगा कर सो जा। खबरदार जो भौंका, मेरी बीवी बड़ी अच्छी है सुगंधी, जब मैं ज़्यादा पी जाता हूँ तो वो मेरे माथे पर भी बाम लगाया करती है, पर आज तो मैंने ज़्यादा नहीं पी। क्यों सुगंधी? अरे ये साला तेरा तोता कैसा है? आ तोते गर्दन कहाँ है तेरी? सुगंधी ये कैसे जानवर पाल रखे हैं तूने? साला कुत्ता है तो उसके बदन पर एक बाल नहीं है। साला ये तोता, अरे उसकी गर्दन कहाँ है?
1: अरे वो सो गया है।
0: सचमुच सो गया है? मैं तेरे पास और ठहरता सुगंधी, पर मुझे अपनी बीवी का ख्याल है, मेरा इंतजार कर रही होगी। बाम लगा बाम और सो जा, सो जा मेरी जान।
1: हाँ सो जाऊंगी सेठ।
0: बाम लगा बाम, माथे पर लगती है तो ऐसा मालूम होता है टीन का पतरा जड़ दिया है किसी ने। टीन ठंडा होता है ना सुगंधी?
1: क्या है सेठ?
0: रुपए ले लिए है ना तूने?
1: रुपए? हाँ हाँ हाँ ले लिए हैं, मुझे अब नींद आ रही है।
0: सो जा सो जा, बाम मल और सो जा, मैं जाता हूँ, मेरी बीवी मेरी रात देख रही होगी, बड़ी अच्छी है। साली गर्दन ही गायब है, हद हो गई। दरवाजा बंद कर लीजो अंदर से सुगंधे।
1: मुआ जाने का नाम ही नहीं लेता था और मेरा सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। ओह बाम मल ही लेती हूँ। माथे पर सचमुच टीन का पत्रा जड़ दिया है। 2 बज गए। कितना दर्द है, पर आंखें हैं फिर भी नींद से बोझिल हो रही।

0: कौन? रामलाल?
1: तुझे सांप सूंघ गया था क्या? हैं? एक घंटे से बाहर खड़ा दरवाजा ठोक रहा हूं, तू कहां मर गई थी? अंदर कोई और तो नहीं है?
0: नहीं।
1: फिर तूने दरवाजा क्यों नहीं खोला? ऐसे धंधा हो चुका, घोड़े बेचकर सो जाती है, कोई बाहर खड़ा खड़ा सूख जाए साला। अरे अब तू मेरा मुंह क्या देखती है? झटपट ये धोती उतार और वो फूलों वाली साड़ी पहनकर पाउडर वाउडर लिपस्टिक लगा और मेरे साथ चल। बाहर मोटर में बैठा एक सेठ तेरा इंतजार कर रहा है। अरे चल चल एकदम जल्दी कर।
0: रामलाल आज मेरा जी अच्छा नहीं है।
1: क्या कहा? जी अच्छा नहीं? साला जी अच्छा नहीं था तो पहले ही कह दिया होता ना।
0: अब वो बात नहीं है रामलाल, ऐसे ही मेरा जी अच्छा नहीं, बहुत पी गई मैं आज।
1: ऐश करती ऐश। अच्छा थोड़ी बची हो तो ला, हम भी गला तर कर लें।
0: बचाई होती तो ये मुआ सिर में दर्द ही क्यों होता। देख रामलाल, वो सेठ जो बाहर बैठा है ना, उसे यहीं लेकर आ जा।
1: अरे वो जेंटलमैन आदमी है, जेंटलमैन, यहाँ आने से घबराता है। अरे तू आदमी को तो पहचान लिया कर।
0: कह देना कि घर में नहीं है।
1: मैं सब जानता हूँ, तू ये नखरे क्यों कर रही है? वो साला पुणे का हवलदार जब से तेरे पास आने लगा है तेरा मिजाज ही बिगड़ गया है। 7 साल से ये धंधा कर रहा हूँ, तुम छोकरियों की सारी बातों की खबर रहती है मुझे। सुगंधी अपना धंधा बर्बाद ना कर, तेरे अंग के कपड़े भी उतार कर ले जाएगा ये तेरा पुणे का हवलदार। क्या देता है तुझे है? साला फोकट में ऐश कर रहा है।
0: अरे तू उसकी बात छोड़ ना, चलती हूँ ना मैं तेरे साथ, रुक।
1: तुझे उस साले ने मना किया तो मत जा।
0: अरे मना ही किस बात की, मुझे भी कुछ रुपयों की जरूरत है। वो साथ वाली मद्रासिन अपने मुल्क में जा रही है, बेचारी के पास एक ढेड़िया भी नहीं है।

0: दुखी है वो। भाई अपने खर्च के लिए तो मेरे पास रुपए हैं, पर उसके लिए ही कुछ कर दूं। चल
1: हैं? यूं सिर झाड़ मुंह फाड़ साथ चल पड़ेगी क्या? अरे जरा मुंह पर छींटा मार पानी का, पाउडर वाउडर लगा, अपनी फूलों वाली साड़ी पहन ले।
0: अच्छा चल आती हूँ।
1: इस दीवार पर पहले 3 तस्वीरें थी, अब 4 हो गई। पर साला जरूर ये तेरा पुणे का हवलदार होगा। अरे वाह रे मेरे हवलदार, ऐसा लगता है साला तोप के मुंह के सामने बैठा है और फट पड़ेगा। अरे सुगंधी, अच्छा जल्दी कर, अब ये तो तेरा वो म्यूनिसपालिटी का दरोगा है ना, और ये बीड़ी वाला सेठ, और ये, अरे वाह, ये फूलों वाली साड़ी तुझ पर खूब फबती है। चल चल अब जल्दी, चल चल चल।
0: ठहर, मैं एक डोगा पानी का पी लूं, प्यास लगी है।
1: अरे कमती पिया कर। अच्छा चल अब चल।
0: चल, पिछला पहर है रात का।
1: अरे कोई पहर हो, अपना काम है जाना। क्यों?
0: हाँ, ठीक है।
1: देख वो मोटर खड़ी है नुक्कड़ पर, तू अब यहां खड़ी हो जा, मैं बात कर लूं। हैं?
2: कितना इंतजार करवाया, कहां है छोकरी?
1: सुगंधी, ए सुगंधी, इधर आ, सेठ जी बुलाते हैं।
2: क्यों, ठीक तो है ना?
1: अरे सेठ, बैटरी जलाकर देख लो, बैटरी जलाकर।
2: ड्राइवर, लाइट मारो छोकरी पर। ये छोकरी लाया तू? ड्राइवर चुप।
0: ये क्या हुआ?
1: पसंद नहीं किया तुझे?
0: पसंद नहीं किया मुझे?
1: हाँ
0: सेठ, ओ सेठ, सेठ, अरे जरा मोटर रोक अपनी, मोटर रोक अपनी, सेठ मोटर रोक अपनी, सेठ जरा मोटर रोक अपनी।
1: सुगंधी सुगंधी सुगंधी, क्या हो गया तुझे है? सुगंधी
0: चला गया मेरे मुंह पर, तू कर चला गया मुझे, फटकार कर तुत्कार कर चला गया।
1: मेरा वक्त भी खराब किया साली।
0: ये छोकरी लाया है तू? ये चुड़ैल, ये छछुंदर।
1: सुगंधी चल चल अब घर, चल चल।
0: 10 रुपए और ये छोकरी, खच्चर क्या बुरी है? रामलाल, रामलाल तू एक बार इस सेठ को पकड़कर मेरे सामने ला, एक बार, फिर वो बैटरी की रोशनी मेरे मुंह पर मारे और हो करे, मैं उसका मुंह नोच लूंगी, उसके सिर का एक एक बाल उखाड़ डालू, टांगों से पकड़कर मोटर से बाहर घसीटू और धड़ाधड़ मुक्के मारना शुरू कर दू, और जब जब थक जाऊं तो, जब जब थक जाऊं तो रोने लग जाऊं।
1: सुगंधी क्या हो गया तुझे?
0: ये सच है रामलाल कि अब मेरा वो पहले सा रंग रूप नहीं रहा, पर मेरी जवानी बिल्कुल तो नहीं ढल गई है ना? मैं ऐसी बुरी भी तो नहीं हो गई हूं ना कि लोग मेरे मुंह पर थूक दे?
1: तुझे बुरा किसने कहा है?
0: तेरे उस मोटर वाले सेठ ने। जी चाहता है उसे ऐसी गाली दूं, पर गाली देने से क्या होगा? मेरे सामने हो तो मैं उससे सिर्फ एक बात कहूं, कपड़े फाड़ कर उसके सामने खड़ी हो जाऊं और कहूं, क्या कहूं क्या ना कहूं कुछ समझ में नहीं आता, मेरे सारे बदन में उसकी हूं ने हलचल मचा दी है रामलाल। मैंने उसका क्या बिगाड़ा था जो उसने मेरा अपमान किया? मोटर आ गई रामलाल।
1: ये तो सामने वाली दुकान का बोर्ड खड़का है, तेरे कान बज रहे हैं सुगंधी।
0: मेरे कान बज रहे हैं? सचमुच मेरे कान बज रहे हैं? मुझ में क्या बुरा

0: अरे रामलाल बता बता, मैंने आज तक किसी बुरी शक्ल वाले को अपने घर से धुतकारा है? मेरे बिस्तर पर, मेरे हाथों पर, मेरे मुंह पर ये लोग उल्टियां करते रहे। मुझे घिनाती थी पर कभी मैंने उनको मालूम होने दिया? बोल बोल
1: भाई, मैं तो चला।
0: वो मोटर एक बार फिर आ जाए, सिर्फ एक बार, सेठ मेरे मुंह पर बैटरी की रोशनी मारे, मुझे दुत्कारे, पर थोड़ा सा मौका दे कि मैं उसे जवाब तो दे सकूं। क्या जवाब देगी तू सुगंधी? एक बार फिर आए, ये क्या रट लगा रखी है तूने? चल घर चल, ठंडे पानी का एक डोंगा पी और बाम लगाकर सो जा। सेठ और उसके मोटर की ऐसी की तैसी, सेठ और उसके मोटर की ऐसी की तैसी, चल घर चल। इस समय

0: घर चल, ठंडे पानी का एक डोंगा पी और बाम लगाकर सो जा। सेठ और उसके मोटर की एसी की तैसी, सेठ और उसके मोटर की एसी की तैसी। चल घर चल, इस समय कोई मुझसे एक बार कह दे, सुगंधी तू तो बहुत अच्छी है। किसी के कहने ना कहने से कुछ नहीं होता सुगंधी, तू तो है ही अच्छी। चल अब घर चल। ये ताला किसने खोला? कौन? माधो?
1: वाह, आज तूने मेरा कहना मान ही लिया ना। सुबह की सैर तंदुरुस्ती के लिए बड़ी अच्छी होती है। रोज इसी तरह सैर को जाया करे तो तेरी सारी सुस्ती यूं दूर हो जाएगी, यूं। अच्छा, विक्टोरिया गार्डन तक तो तू होके आई होगी ना, क्यों?
0: आज मैं तेरी ही राह देख रही थी माधो।
1: अच्छा, मेरी राह देख रही थी तू? तुझे मालूम था कि मैं आने वाला हूँ?
0: मैंने रात को तुझे सपने में देखा था।
1: हाँ?
0: उठी तो कोई भी नहीं था, सो जी ने कहा चलो कहीं बाहर घूम आए, और
1: मैं आ गया ना। भाई वो किसी ने कहा है ना, दिल को दिल से राह है, एकदम ठीक। अच्छा, ये सपना तूने कब देखा था?
0: कोई 4 बजे होंगे।
1: 4? हाँ, और मैंने कितने बजे देखा था? हाँ, 2 बजे, जैसे तू फूलों वाली साड़ी, अरे वाह, बिल्कुल यही साड़ी पहने मेरे बाजू में खड़ी है। और तेरे हाथों में क्या था? हाँ तेरे हाथों में रुपयों से भरी थैली थी।
0: थैली?
1: हाँ थैली। तूने वो थैली मेरी झोली में रख दी और कहा, माधो तू चिंता क्यों करता है रे, अरे लेता क्यों नहीं, तेरे मेरे पैसे कोई दो हैं क्या? ये सुनकर सुगंधी मेरी जान की कसम एकदम टिकट कटाकर इधर चला आया। क्या सुनाऊं सुगंधी, बड़ा लफड़ा हो गया है, बैठे बिठा एक केस में फंस गया हूं।
0: केस? मतलब जेल वेल का डर तो नहीं है ना?
1: 20-30 रुपए हो तो इंस्पेक्टर की मुट्ठी गर्म करके छुटकारा मिल सकता है। लेट जा आराम से। हाँ, तेरे पैर दबा दूं, सैर की आदत ना हो तो थकान तो हो ही जाया करती है ना, इधर मेरी तरफ पैर करके लेटना।
0: अब तू मुट्ठी चापी छोड़ माधो, मेरा तो दिल धक धक करने लगा है, सीधी बात सुना मुझे बस। अब 20-30 क्या, 100-150 भी खर्च हो जाए ना तो कोई बात नहीं। वापस कब जाएगा तू?
1: दोपहर की गाड़ी से, ज्यादा देने की जरूरत नहीं, 50 से काम चल जाएगा।
0: अरे 100 ले जा।
1: 100?
0: हाँ हाँ, इधर हट, मुझे उठने दे। 50 कहे थे ना तूने माधो?
1: अच्छा, तस्वीरों के पीछे छुपा कर रखा है माल पानी। ये किसका फोटो देखकर हंसी इतनी जोर से तू?
0: इस म्युनिसिपैलिटी के दरोगा की। माधो जरा थोबड़ा तो देख इसका, कहता था एक रानी मुझ पर आशिक हो गई थी। रानी कचरा उठाने आएगी ना तो मेरे इस राज्य को भी ले जाएगी अपनी टोकरी में। और इस साले का यहाँ क्या काम है? नहीं, भोंडी शकल का कोई भी आदमी अब यहाँ नहीं रहेगा। क्यों माधो?
1: अरे ओह।
0: और ये घनचक्कर।
1: अरे ये मेरा फोटो? ओ ओ। अच्छा किया, मुझे भी अपना फोटो बिल्कुल भी पसंद नहीं था।
0: अच्छा, तुझे अपना ये फोटो पसंद नहीं था? और अपनी अपनी सूरत तो बहुत पसंद होगी, क्यों? ये तेरी पकौड़ा जैसी नाक, ये तेरा बालों भरा माथा, सूजे हुए नथुने, मुड़े हुए कान, वो तेरे मुंह की बॉस, वो तेरे अंग का मैल। बड़ा बड़ा सुंदर जवान है ना तू, पुणे में हवलदार, महीने में 2-3 दिन मेरे घर आता है।
1: सुगंधी, मुझे ऐसा लगता है तूने

0: फिर अपना धंधा शुरू कर दिया है। देख आखिरी बार कहता हूँ, मान जा मेरा कहना, नहीं तो पछताएगी। इज्जत आबरू के साथ रहे यहीं पर। इस महीने का खर्च पूना पहुंचते ही मनी ऑर्डर कर दूंगा। क्या भाड़ा है इस खोली का?
1: 18 रुपए भाड़ा है सुना, और 10 रुपए मेरा भाड़ा। और तुझे तो मालूम है ना, 2.5 रुपए दलाली के, बाकी रहे 7.5। रहे ना 7.5। पगले, तेरा मेरा नाता ही क्या है?
0: सुगंधी,
1: कुछ भी नहीं, बस बस ये 10 रुपए जो तेरे और मेरे बीच बज रहे हैं, आ दोनों मिलकर कुछ ऐसी बातें करें कि तुझे मेरी जरूरत हो और मुझे तेरी। क्या है रे भाड़ा तेरे यहां से पुणे का? तेरी नाक इतनी लाल क्यों हो रही है सुगंधी? और तूने अपने बालों का क्या सत्यानाश कर रखा है?
0: सुगंधी, मेरी टोपी।
1: चुप, टोपी कहता है इसे? ये तो चीथड़ा है, कितना बास मारती है। फेंक इसे उठाकर बाहर।
0: सुगंधी,
1: क्या भाड़ा है रे यहाँ से पुणे का? परमेश्वर का दिया सुगंधी के पास बहुत कुछ है। पुणे की हवलदारी छोड़, क्या तुझे ये धंधा करते लाज नहीं आती? यहाँ आ, मेरे साथ इज्जत आबरू के साथ रहे। क्या भाड़ा है तेरे यहाँ से पुणे का?
0: सुगंधी,
1: सुगंधी के बच्चे, तू आया किस लिए है यहाँ? मौर रहती है तेरी इस खोली में जो तुझे 50 रुपए चुपके से दे देगी? या तू कोई ऐसा गबरू जवान है जो मैं तुझ पर आशिक हो गई हूँ? कमीने कुत्ते, मुझ पर रोब काटता है भिख मंगे? तूने अपने आप को समझ क्या रखा है? चोर, उचक्के, लफंगे, बदमाश, सुअर।
0: सुगंधी, क्या हो गया है तुझे?
1: उल्लू के पट्टे, तू होता कौन है मुझसे ये पूछने वाला? चल चल, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, दूर हो मेरी नजरों के सामने से, जा निकल, निकल यहाँ से।
0: मेरी टोपी है।
1: पड़ी रहने दे यहीं। पूना पहुँच, तू पूना पहुँच, मैं इसे मनी ऑर्डर कर दूंगी।

मोती आ जा मेरे पास, हम दोनों सो जाएं। आ मेरे पास, आंखें चश्मे गंगा जल के क्यों दुख देती है निंदिया, नैन रसीले मल के सोचा।

0: हतक। अभी आप सादत हसन मंटो का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। भूमिका सहित कलाकारों का परिचय इस प्रकार है। सुगंधी स्वास्तिका चक्रवर्ती, हवलदार माधो स्मित मेहता, पड़ोसन दिव्या पवार, दारोगा राकेश जैमिनी, रामलाल इरफान सौरभ और मोटरवाला सेठ अरविंद सोनी। इस नाटक के प्रस्तुतकर्ता थे राकेश ढौंडियाल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र पर तैयार किया गया।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए आप सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे राग यमन में संगीता गोस्वामी से ख्याल गायन।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में संगीता गोस्वामी से राग यमन में ख्याल गायन। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में

0: एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठक की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is clearly our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के दौरान के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार के मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वे सुरक्षित रूप से उतरा। मंत्रालय ने बताया कि घटना की सूचना न देने के मामले में संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और विमान चालक दल के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। घायलों का इलाज सरकारी SSKM मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कोलकाता नगर निगम घटना की रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि हादसे की विस्तृत जानकारी कल विधानसभा में दी जाएगी। गुजरात के भुज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आज AI आधारित स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट से पहले वाहन का पंजीकरण, प्रशिक्षण वीडियो देखना, फोटो स्कैनिंग और RFID सेंसर लगाना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बनेगी। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा ना करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।